0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: पता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti.
4: लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सुप्रभात. घर ही मिलाते चलिए. सुबह के ठीक 5 बजे हैं. इट्स टाइम टू राइज एंड शाइन.
0: वेक अप विद द सन एंड द साउंड ऑफ फन.
3: आरएम2
0: रेडियो मस्ती.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musty.
2: Well, wishing you all once again a lovely, lovely good morning to all our wonderful listeners. Suprabhat aap sabhi ko. Definitely, it's time to rise and shine. Aur kehte hai na ki early to bed, early to rise. Make your body healthy and wise. Agar aap jaldi sone jayenge, tabhi to aap jaldi uth payenge. Aur ye bahut hi zaruri hai. And kabhi kabhar apni routine ko thoda sa इसमें बदलाव लेकर आने के लिए 5 मिनट 10 मिनट पहले उठ जाना अच्छी बात होती है. क्या है ना कि आपको ही टाइम मिलता है खुद को वक्त देने के लिए, और साथ में थोड़ा ठहराव ज़िंदगी में बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अगर आप टाइम पे उठते हैं तो ऐसे में आपको रश करना पड़ता है, कभी कभी टाइम लग जाता है रेडी होने में, या फिर अगर आप बच्चे लोगों को संभालते हैं तो बच्चों के साथ साथ आपका पूरा जो टाइम है वो निकल जाता है. तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट खुद को टाइम

0: देने के लिए, और ये तो बार बार हम आपको याद दिलाने के लिए आ ही जाते हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपको इस बात का एहसास कराने में कि यू आर इम्पोर्टेंट एज वेल. सो चलिए यहाँ पर आपको पैम्पर करने के लिए ऑफ कोर्स 5 से लेकर 6 बजे तक लेकर आए हैं खूबसूरत पुराने गीतों का कारवा, एंड आपको एक बार फिर से मौका मिल रहा है टू रिवाइव सम ब्यूटीफुल गोल्डन मेमोरीज फ्रॉम द गोल्डन एरा. एंड साथ में 6 बजे के बाद ऑफ कोर्स हम कुछ मिक्स गाने चलाएंगे आप लोगों के लिए, और इस आवर के दौरान आपका डेली हॉरोस्कोप भी लेकर आएंगे. सो स्टे राइट कनेक्ट. It's a wonderful, wonderful, lovely morning out there. और काम पे आ रही थी तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी. आपके यहाँ मौसम कैसा है? Do let us know on 5499-1294. Don't forget, it's your rise and shine जहाँ पर दिव्या का साथ है सुबह के 7 बजे तक.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Well, दोस्तों 5:21 हो चुके हैं. कभी ऐसा होता है ना कि सुबह सवेरे जब हम उठते हैं we feel less motivated, तभी हम आते हैं आपको थोड़ा बहुत encouragement देने के लिए and to let you know that you can definitely do it. और कभी ऐसा भी होता है कि हम बस कोशिश करते रहते हैं और एक दिन हम हार मानने लग जाते हैं और तभी miracles do happen. और साथ में best तभी होता है जब आप क्विट नहीं करते हैं. यस, जब भी आप थक जाते हैं ना, लर्न टू रेस्ट बट नेवर क्विट. क्योंकि जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं तभी आपके साथ वो हो जाता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो. सो बस सुबह सवेरे उठें एंड अफर्म कि यू आर रेडी फॉर सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ. और देखिए कमाल. वेल, चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस हम तक ज़रूर पहुँच रहे हैं. एंड किसी ने हमें कहा है हेलो नीतू जी. आज नीतू नहीं बल्कि दिव्या साथ दे रही है. शीला जी आप है लिस्पे हौसले बुशे से. थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड. गुड मॉर्निंग. प्लीज रिक्वेस्टिंग द नेक्स्ट गाना फॉर धीरज, आयुष, विदिशा, अश्विन, ज्योति एंड हराक फैमिली ऑफ मोदालबे. हेलो रेडियो मस्ती टीम, गुड मॉर्निंग. अनु आप है पिछराफे से. वॉन्ट टू विश योर बेटी प्रिंसा अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आज 10 साल की हो गई है. सो प्रिंसेस प्रिंसा को वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से भी. विश इज कमिंग फ्रॉम मामा अनु, पापा मिथुन एंड दीदी परी की तरफ से. उनको बहुत बहुत सारा प्यार. गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती टीम. नेक्स्ट गाना गुजरात फॉर अब्दुल एंड सारा बानू. आपको भी हैव अ गुड गुड डे अहेड. एंड एज यूजुअल वी हैव सरोज, राजन, पूनम, मोनिका, पल्लवी ऑफ काठुबोन कनेक्टेड विद अस. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है. प्यार का दर्द थोड़ा मीठा होता है, थोड़ा प्यारा होता है, लेकिन दर्द तो होता है. बट प्यार का बेस्ट पार्ट यही होता है कि

0: आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाते हैं और ज़िंदगी और भी हसीन और भी खूबसूरत बन जाती है। चलिए 5:35 होने को है। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए बहुत ही प्यार से। कुछ और आपके मैसेजेस की ओर हम ज़रूर बढ़ेंगे। Well, we have the next gana जो हम बहुत ही प्यार से dedicate करेंगे for all your student of secondary college from Kumar Debichan of Perebeat, teacher of design and technology. Thank you so much for your sweet words. सुबह सवेरे आप लोग इतना प्यार बरसाते हैं कि we feel really very special. Good morning, Radio Masti team. Divya and Divya, hope you're well. बिल्कुल ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच। जस्ट वांट टू विश बेटा करम अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मामा ईश्वर, फ्रॉम पापा ईश्वर, मामा प्रिया ऑफ मुसलमान सैत एंड्रे, एंड आपके प्यारे बेटे को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत सारा प्यार। एंड यहाँ पर किसी ने हमें विश किया है हैप्पी वेंसडे। गुड मॉर्निंग दिव्या जी, हाउ आर यू एंड आर एम टू टीम। थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। एंड नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर ब्रदर विकास बीपन एंड बजन फैमिली, आपकी बहन है। और साथ में वी हैव सिस्टर स्वीटी एंड भारती, हेमलता बजन, आप है पॉइंट ऑफ पीमा से, आपको भी शुभ दिन। थैंक यू सो मच। एंड कुछ ही देर में हम लेकर आ रहे हैं आपके डेली होरोस्कोप। स्टे वाइट कनेक्टेड।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: Well, चलिए बढ़ते हैं आपके डेली होरोस्कोप की ओर। शुरुआत करेंगे एरीज के साथ। मेष राशि, कार्यक्षेत्र में नए और शानदार अवसर मिलेंगे। धन लाभ के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। अति उत्साह में आकर कोई गलत निर्णय बिल्कुल ना ले। टोरस वृषभ राशि, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अटके हुए काम पूरे होंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे। निवेश के लिए अच्छा दिन है और मानसिक शांति का अनुभव होगा। सेहत सामान्य रहेगी और दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। जेमिनी मिथुन राशि, नौकरी और बिजनेस में व्यवस्था बढ़ेगी। पैतृक व्यवसाय में लाभ होगा। धन का आगमन अच्छा रहेगा लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। आंखों या सिर दर्द की समस्या हो सकती है। आपको आराम की ज़रूरत है और महत्वपूर्ण कागजों पर बिना पढ़े दस्तखत बिल्कुल ना करें। कैंसर कर्क राशि, कार्यक्षेत्र में आज आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। जमीन या प्रॉपर्टी के मामलों में सावधानी बरतें, घाटा हो सकता है। माता पिता की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है और आज विवादों से दूर रहें और अपनी वाणी पर संयम रखें। लियो सिंह राशि, सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में मन मुताबिक मुनाफा होगा और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। और इसके अलावा जो फिटनेस अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए।

0: और आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे, अपने अहंकार को काम के आड़े ना आने दे वरना आप फंस सकते हैं। वर्गो कन्या राशि, आपकी प्रबंधन क्षमता यानी कि मैनेजमेंट स्किल्स की तारीफ होगी, सहकर्मी आपकी बात मानेंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, पुरानी चिंताएं दूर होंगी और पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, खान पान पर आपको पूरा ध्यान देना होगा और आज योजना बनाकर काम करने से बड़ी सफलता मिलेगी। लिब्रा तुला राशि, दूर रहने वाले लोगों या विदेशी संपर्कों से करियर में लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव कम होगा और स्वास्थ्य में सुधार आएगा, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले बड़ों की सलाह जरूर ले। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, धन लाभ में अच्छे अवसर मिलेंगे, रुका काम गति पकड़ सकता है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका है और इसके अलावा गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी योजनाओं पर जितना हो सके आप इसको किसी के साथ शेयर ना करें। सजिटेरियस धनुराशि, मित्रों और करीबियों के सहयोग से बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है, आमदनी अच्छी रहेगी लेकिन घरेलू चीज़ों पर खर्च बढ़ सकता है, शारीरिक रूप से एक्टिव रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी और अपने बजट को ध्यान में रखकर ही खर्च करें। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, टीम वर्क से काम करने पर बड़ी सफलता मिलेगी, सहकर्मियों का साथ मिलेगा, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेन देन में सावधानी रखें, पुरानी बीमारी में राहत मिल सकती है और दिन अच्छा रहेगा, आज किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें। एक्वेरियस कुंभ राशि, भाग्य का सितारा बुलंद है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, अचानक धन लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक और शारीरिक रूप से आप खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, आज के दिन का पूरा लाभ उठाएं और आलस्य का त्याग करें। पाइसेस मीन राशि, नौकरी और व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करना फायदेमंद रहेगा, निवेश के मामले में आज का दिन आपको बड़ा लाभ दे सकता है, थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है और आपका नींद पर्याप्त नहीं है तो जितना हो सके ट्राई टू हैव सम पावर नैप्स, और भावुकता में आकर कोई भी व्यावसायिक निर्णय ना ले। सो ये था आपका डेली होरोस्कोप, हैव अ गुड गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।
1: योर डेली होरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती, wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: radio, radio.

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: your musty.
1: North, South,
0: 103.5,
1: East, West,
0: 96.4,
1: Center,
0: 99.4.
2: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty.
3: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आस्था से। नमस्कार।
4: नमस्कार, 6 बजे की समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कुछ अहम खबरें जिन्हें हम विस्तार देंगे 6:30 बजे के समाचारों में। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। अब दूसरे सेमीफाइनल में आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। इस मुकाबले को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। मॉरिशस में कल फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। फ्लोरियाल स्थित फ्रांस के राजदूत के सरकारी निवास पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति धर्म गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और कई गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। इस दौरान दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध हों और सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय सभा में कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने प्लास्टिक की बोतलों पर 2 रुपए के एक्साइज ड्यूटी को लेकर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को लागू होने वाले इस टैक्स से मिलने वाली आय पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं में उपयोग की जाएगी। साथ ही सरकार ने अगले 10 वर्षों में प्लास्टिक पॉल्यूशन फ्री मॉरिशस के लिए एक रोड मैप तैयार करने की घोषणा की। आज सुबह पेलग्रैन ट्रियानो लिंक रोड का उद्घाटन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सेंट जॉन और M1 मोटरवे पर यातायात का दबाव कम होगा। उधर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ा। अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्षेत्र में ईरानी ठिकानों पर नए हमले शुरू किए हैं, जबकि ईरान ने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
4: पूर्व से आ रहे अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान है कि आज सुबह और दोपहर बाद भी रह कर देश के पूर्व और सेंट्रल प्लाटू पर बरसात होगी और ऊंचाइयों पर धुंध भी छाई रहेगी। ऊंचाइयों और हवाई ढलानों पर शाम को भी मौसम कुछ खराब ही रहेगा। रात को ऊंचाइयों पर वर्षा जारी रहेगी। हवा उत्तर उत्तर पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 22 से 24, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 7:45, सूर्यास्त 5:46 पर होगा।
0: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musty. Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2.
2: Radio Musty.

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि रोज़ाना सुबह लेके आती है रोशनी और ये रोशनी सबके मन पे पड़े यही हम प्रार्थना करते हैं दुआ करते हैं। सुबह के 6:07 हो चुके हैं। विंटर सीजन में थोड़ी देर से अभी सूरज की किरणें हम पर पड़ती हैं बट इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर आउटसाइड। आपके यहाँ मौसम कैसा है हम ज़रूर जानना चाहेंगे और 5499-1294 वैसे काफ़ी सुबह से आपके मैसेजेस हम तक पहुँच रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोग सुबह सवेरे रेडियो मस्ती के साथ जुड़ जाते हैं बस हमारे गीतों को सुनने के लिए एंड आपके मैसेजेस भेजने के लिए। इट मींस अ लॉट फॉर अस। थैंक यू सो मच वंस अगेन दिल से। हाय दिव्या, गुड मॉर्निंग। अनु फ्रॉम वेल डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना टू फ्रेंड्स ललिता कुमारी रेणुका रजनी सुरेखा के लिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग दिव्या। सरिता जी, आप है गुडलैंड से, ईश्वर आपको हर बुरी नज़र से बचा कर रखे, शुभ दिन आपको। दैट्स अ वेरी स्वीट मैसेज फ्रॉम योर साइड सरिता जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते रेडियो मस्ती टीम, साधना मुकेश ऑफ लालमाची जो इस वक्त हमें सुन रही है। गुड मॉर्निंग सभी RM2 टीम एंड आप का बर्थडे है आज। सो पिछित्र भैया की किस्मावती जी का बर्थडे है 69 years। एक सुंदर सा गाना जरूर आपके लिए हम चलाएंगे। एंड चलिए वी हैव हमारी प्यारी सी टीना जी, सुप्रभात आपको भी एंड टू ऑल द अर्ली मॉर्निंग राइजेस। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड आई जस्ट होप कि आप भी फिट एंड फाइन हैं, एंजॉयिंग द शो। इट्स रियली वेरी कोल्ड आउटसाइड। नेक्स्ट गाना जाएगा टू यू एंड योर स्वीट फैमिली एज वेल एंड आपको भी हम कहेंगे हैव अ नाइस डे एंड आपको भी बोंकू आज। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर। ज़रूर हमें आप बताइएगा कि आपके यहाँ मौसम कैसा है और अगर आप लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे आपको बोंको आज इफ़ यू ऑलरेडी ड्राइविंग या फिर आपने ऑलरेडी बस पकड़ लिया है। तो चलिए उम्मीद करते हैं दैट यू विल बी हैविंग अ ग्रेट ग्रेट म्यूजिक

0: जर्नी अहेड, बस हमारा साथ देते रहिए टिल 7 AM, जहां पर दिव्या का साथ है इन योर राइज एंड शाइन।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musti.
3: 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3. 2, 1, let's start the fun.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: Definitely love will find a way. And कहते हैं ना कि जहाँ चाहें वहाँ राह है. Where there is a will, there is a way. अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा तो सच में नहीं हो पाएगा. ये सब आपके माइंड से और आपके दिल से शुरू होता है. वैसे कहते हैं ना कि everything starts with you and within you. अगर आप अपने अंदर से आपको पता है कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं और आपकी कैपेसिटी आपको खुद पता है तो डेफिनेटली आप यू ऑलरेडी हाफ वे देयर. बस यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ. चलिए यहाँ पर कुछ और आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे. गुड मॉर्निंग दिव्या खुशबू हियर. नेक्स्ट गाना गोज़ आउट फॉर हबी चंदन. आपकी बेटियां हैं सोनाली शनाया एंड शानवी ऑफ लवोंचिया. हाय रेडियो मस्ती टीम. किशन रघुनाथ आप हैसुगी नाम से. नेक्स्ट गाना जाएगा वाइफ माला के लिए. दो बेटियों के नाम जिया और रिया के नाम भी. नमस्ते. आपका जो बड़ा भाई है संजय जी वो 60 इयर्स की हो गए हैं आज. बेस्ट विशेस फ्रॉम वाइफ लक्ष्मी, मम्मा, बेटी नेहा माइल एंड पोती केली. बेस्ट विशेज फॉर हिज वेडिंग एनिवर्सरी एज वेल फ्रॉम चिंगायानी फैमिली ऑफ रोशनुआ. और हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत सारा प्यार. छाया सुकोई आप है पिलखा सेबास्टोपोल से. हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं. आई जस्ट होप दैट यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू रेडियो मस्ती एज वेल. आप खाना बनाते बनाते हमारे गीतों को एंजॉय कर रही हैं. कोई बात नहीं, बस आपको हम विश करेंगे बो कुहार. कुछ मिठाई आप तैयार कर रही हैं काम पर लेकर जाने के लिए. एंड योर सॉन्ग्स आर मेकिंग आप योर स्वीट्स इवन स्वीट दैट्स रियली नाइस. उंडे बना रही हैं आप, दैट्स रियली नाइस. तो आपको एक वंस अगेन बुकवाज. एंड नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर योर हबी सुबिराज, बेटा श्रेयश, बेटी शैवी, सुकोई फैमिली ऑफ पिलखाएं. ऑल्सो फॉर योर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स, स्पेशली हमारी टीम के लिए. थैंक यू सो मच छाया जी. एंड चलिए अगला गाना हम खास तौर से डेडिकेट करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो निकल पड़े हैं काम पर जाने के लिए इस ठंड वाले मौसम में. सुबह सवेरे उठना इट्स really not easy, लेकिन I know कि हमारे गाने made it look easier. And बस ऐसे ही I just hope कि दिन भर आप हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि हर एक गाने के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत एनर्जी मिलने वाला है. चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर. एंड ये गाना हमें लेकर जाएगा 6:30 के समाचार बुलेटिन की ओर. ज़रूर अगर वक्त ने इजाज़त दी तो एक बार हमारी और आपकी मुलाकात होगी.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: के ठीक 6:30 बज रही है। बुधवार 15 जुलाई की सुबह 6:30 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली, अब उसकी नजर विश्व चैंपियन बनने पर है। दूसरे सेमीफाइनल में आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। इस मुकाबले को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। मॉरिशस में फ्रांस का राष्ट्र दिवस आधिकारिक रूप से मनाया गया। दोनों देशों के मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। जॉन मिक मार्टिंगेल की मौत से जुड़ी न्यायिक जांच के तहत बोबासैं केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया गया। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने प्लास्टिक की बोतलों पर लगाए जाने वाले 2 रुपए के एक्साइज ड्यूटी को लेकर स्पष्टीकरण दिया। सरकार ने प्लास्टिक पॉल्यूशन फ्री मॉरिशस के लिए 10 वर्षीय रोड मैप की भी घोषणा की। बेलग्रानो लिंक रोड का आज उद्घाटन। सरकार का कहना है कि इस नई सड़क से यातायात सुगम होगा और जाम की कमी आएगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा। नए सैन्य हमलों और जवाबी कार्रवाई के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही प्रभावित। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। विश्व कप फाइनल का टिकट अब स्पेन के नाम हो गया है। डालास में खेले गए सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर शानदार अंदाज में अपनी दावेदारी पेश की। पूरे मुकाबले में स्पेन ने गेंद पर शानदार नियंत्रण बनाए रखा। मजबूत रक्षा और तेज आक्रमण के दम पर फ्रांस को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। अब सबकी नजरें फाइनल पर टिकी हुई हैं, जहां स्पेन विश्व चैंपियन बनने से सिर्फ एक जीत दूर है। तो विश्व कप के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाली मुकाबले को लेकर उत्साह चरम पर। फुटबॉल प्रेमी इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। समर्थकों से उनकी राय ली गई है, किस टीम की होगी जीत, क्या रहेगा स्कोर और किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट। आइए जानते हैं प्रशंसकों की राय।
1: On était Argentine, les Morons étaient des petits, les Haines, la Toile, tout le monde était, tout. Mon frère.
2: On était, parce que nous suivons la première ligue dans Maurice, comme d'habitude. Après, mon équipe, Manchester United, ben, il y a beaucoup de fans, l'équipe qui supporte la Ligue Angleterre. Mais à travers ça, nous supportons l'Angleterre. Ben, vous pensez, du point de football des Haines, on travaille en Angleterre. À cause du travail, un peu tough. Quand l'équipe est dans le football là, ben, on sait comment dire, nous, il y a l'ambition qu'il y a de football. Nous là, et nous comptons que le football. Ben, nous pas que tout match, mais on était le plus supporté toujours.
3: Mon pays supporte l'Angleterre. Quand le match est là, le pays, quand on comprend le football. Après, même 90 minutes, drôle. Prolongation, après espérons l'Angleterre.
4: Moi, l'Angleterre, mais c'est moi, on dit qu'il y a un DN. Et après, sur 20 jours, sur 20 expériences, sur beaucoup DN.
5: Aujourd'hui, c'est la guerre pour ça. Que l'Angleterre, si vous faites bien, Kane, tout ça là. Mais c'est moi, maman, Gauthier, Lionel Messi. Parce que ça se fait là, pas pour retrouver l'idée d'un lifetime en cours là. C'est même fini là. Comment on finit là, football fini là. C'est moi, il y a un entre man. Ben, Mbappé, Haaland, l'animalia, Lamine Yamal. Mais c'est moi, Lionel Messi là, lui, quoi, ma camarade, un cousin.
0: मॉरिशस में कल फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस आधिकारिक रूप से मनाया गया। इस अवसर पर फ्लोरियाल स्थित फ्रांस के राजदूत के सरकारी निवास पर एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति धर्म गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, सरकार के सदस्य, राजनयिक समुदाय तथा मॉरिशस में रह रहे फ्रांसीसी समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अपने संबोधन में फ्रांस के राजदूत फ्रेडेरिक बोंटन ने मॉरिशस और फ्रांस के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की मॉरिशस

0: यात्रा और इस वर्ष फ्रांस अफ्रीका समिट में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम की भागीदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री को 10 और 11 नवंबर को फ्रांस में आयोजित होने वाले पेरिस पीस फोरम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। सुनते हैं फ्रांस के राजदूत को।
1: Cette visite a donné à voir ce qui constitue à mes yeux la force singulière de la relation entre nos deux pays, l'amitié et la confiance. Nos deux pays savent que, face aux défis du climat, des océans, de la sécurité ou du développement, aucune nation ne peut prétendre agir seule. L'avenir nous donnera, j'en suis certain, de nouvelles occasions d'avancer ensemble, Monsieur le Premier ministre. Et vous êtes d'ailleurs invité à participer au mois de novembre prochain au Forum de Paris pour la paix. Dans la période que nous traversons, le mot paix pourrait presque sembler fragile ou désuet. Je crois au contraire qu'il faut le prononcer avec force. La paix n'est pas la naïveté, elle n'est pas le renoncement. Elle suppose de la volonté, du courage et de la constance. Elle suppose surtout que des États qui partagent une même conception du dialogue et du respect du droit continuent à se mobiliser ensemble.
0: जॉन मिक माउटिंगेल की मौत से जुड़े न्यायिक जांच के तहत कल बोबासिन केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया गया। जिला मैजिस्ट्रेट डेनी विलियन और डीपीपी के प्रतिनिधियों ने उस सेल का दौरा किया जहां 8 सितंबर 2024 को जॉन मिक माउटिंगेल की मौत हुई थी। इसके अलावा मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण स्थानों जिनमें कंट्रोल रूम भी शामिल हैं का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि जॉन मिक माउटिंगेल को 29 अक्टूबर 2022 को एसएसओ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। एक यूक्रेनी यात्री मरिया पेरेसुल्किना ने उसे उस व्यक्ति के रूप में पहचान की थी जिसने उसे 44 मिलियन रुपए से अधिक मूल्य के तरल मादक पदार्थ से भरी दो बोतलें दी थी। इस न्यायिक जांच की अगली सुनवाई 21 जुलाई को रोजिल जिला अदालत में होगी। राष्ट्रसभा में कल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने प्लास्टिक की बोतलों पर लगाए जाने वाले 2 रुपए के एक्साइज ड्यूटी को लेकर कई महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिए। सांसद चेतन बाबूलाल के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से लागू होने वाले इस टैक्स से 2026-2027 के दौरान लगभग 135 मिलियन रुपए की आय होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि 38 प्रकार की वस्तुओं को इस टैक्स से छूट मिलेगी। इस समय डेयरी प्रोडक्ट्स, शिशुओं का भोजन, कुकिंग ऑयल, बटर, शहद और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस टैक्स से मिलने वाली राशि कंसोलिडेटेड फंड में जमा होगी, किसी अलग पर्यावरण फंड में नहीं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2.5 बिलियन रुपए क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी फंड में ट्रांसफर किए जाएंगे जबकि 3.5 बिलियन रुपए विभिन्न मंत्रालयों की पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए दिए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री ने सांसद बाबूलाल के एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया कि प्लास्टिक की बोतलों पर 2 रुपए का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी 38 श्रेणियों के उत्पादों पर लागू नहीं होगा क्योंकि इसका आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है और फिलहाल इनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
3: The House may wish to note that there's already a climate and sustainability fund to support national initiatives to protect, manage and invest and as well restore our natural ecosystems and combat the effects of climate change. For the financial year 2026-2027, government will transfer 2.5 billion rupees from the consolidated fund to the climate and sustainability fund. There is presently a scheme operated by the Mauritius Revenue Authority which provides for a financial incentive to be granted to exporters and local recyclers of waste PET bottles to encourage the removal of waste plastic bottles from the waste stream. Under this scheme, exporters of waste PET bottles are refunded an amount of 15 rupees per kilogram of waste PET bottles exported and local recyclers an amount of 30 rupees per kilogram of waste PET bottle which are recycled locally. Given that the excise duty will be extended to cover plastic bottles, the refund scheme will also be extended to cover waste public plastic bottles to be exported or recycled, whether they are subject to excise duty or not.
2: सांसद दोहयाउन ने नफरत भरी भाषणों की निगरानी और रोकथाम, विशेष रूप से ऑनलाइन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। प्रधानमंत्री ने इस

0: cohesion. Government remains resolute in its determination to preserve the unity of our nation and to assure that Mauritius continues to be peaceful, inclusive, and a harmonious society. Any new measure must remain proportionate and consistent with the constitutional protection for freedom of expression.
1: सांसद जमन का प्रश्न फरवरी 2025 में तेहूज में 114 मिलियन रुपए की बरामदगी की जांच से संबंधित था। प्रधानमंत्री ने गिरफ्तारियों का घटनाक्रम प्रस्तुत किया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी भी शामिल है।
2: Can the Honorable Prime Minister inform the House whether the FCC is enough equipped, has a required technical expertise and manpower to carry such cases, as there is a long list of cases pending at the level of the FCC?
0: That is actually the case, and I think I must accept what the Honourable Member is saying, that we need experts to deal with all those things. They're not trained enough for that. That is why we have people from former Scotland Yard officers who are actually helping them, assisting them in the inquiry.
1: डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने सांसद काजैन के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान 6 नई विदेशी एयरलाइनों ने मॉरिशस के लिए कमर्शियल उड़ानें संचालित करने हेतु आवेदन किया है।
0: गवर्नमेंट इज पर्सुइंग ए पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन ऑफ एयर एक्सेस थ्रू बायलैटरल एग्रीमेंट्स। दिस अप्रोच एम्स टू एनहांस एयर कनेक्टिविटी व्हाइल एंश्योरिंग फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंटिन्यूड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ of our national carrier, that is Air Mauritius Limited. Madam Speaker, air connectivity is extremely important for the development of our country. Any decision for opening up our airspace to any airline would be taken after a thorough assessment has been made as to the benefits that may accrue to Mauritius from such an agreement.
1: सांसद अंकुचिल का प्रश्न त्रियानों के सबवे में कैमरे लगाने के बारे में था। प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया कि सेफ सिटी प्रणाली के कैमरे सबवे के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए मॉरिशस टेलीकॉम नई तकनीकी विशिष्टताओं पर काम कर रहा है।
3: प्रधानमंत्री ने ये भी घोषणा की कि एमओआरए की रिफंड योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब ये केवल पेट बोतलों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि सभी प्लास्टिक की बोतलों पर लागू होगी। सरकार ने अगले 10 वर्षों में प्लास्टिक पॉल्यूशन फ्री मॉरिशस के लिए एक रोड मैप तैयार करने की भी घोषणा की। क्या भविष्य में मेट्रो एक्सप्रेस से सीधे हवाई अड्डे तक पहुंचना संभव होगा? फिलहाल इसका जवाब नहीं है। राष्ट्रीय सभा में भूमि परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने कहा कि मौजूदा आर्थिक स्थिति में मेट्रो एक्सप्रेस को हवाई अड्डे तक बढ़ाना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि 2023 के अनुमान के अनुसार रेजवी से कुद्दू तक दूसरी लाइन बढ़ाने की लागत लगभग 1.7 बिलियन रुपये प्रति किलोमीटर होगी। हालांकि मंत्री ने कहा कि भविष्य में प्लान मान्यों तक मेट्रो सेवा शुरू करने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि क्रॉस रेल इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इस परियोजना से लगभग 1.7 बिलियन रुपए के आर्थिक लाभ का उल्लेख किया गया है। इसी के मद्देनजर भूमि परिवहन मंत्रालय अगले 20 वर्षों के लैंड ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान के लिए विशेषज्ञ सलाहकारों की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी किया करेगा। मंत्री उस्मान मोहम्मद को सुनते हैं सुमेर अकबर अली।
4: One day, should the financial situation of the country allows for it,
5: एक दिन जब देश की आर्थिक हालत में सुधार आएगा तो सरकार मेट्रो को हवाई अड्डे तक विस्तार देने के विचार को मद्देनजर रख सकती है। ये एक उचित मार्ग होगा क्योंकि ज्यादातर मुल्कों में लाइट रेल सिस्टम हवाई अड्डे से जुड़ी होती है। दुख की बात तो ये है कि पिछली सरकार ने इसे प्राथमिकता नहीं दी बल्कि स्पष्ट वजहों से कुद्दू और सहपिया तक मेट्रो ले जाने की परियोजना बेहतर सूझी। मेरे मंत्रालय ने 20 सालों के लिए लैंड ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय बिडिंग कार्रवाई की लॉन्चिंग की है ताकि सलाहकारी सेवाएं हों। UNDP का सहयोग भी मिलेगा।
4: Of the 20-year land transport master plan with the support of the UNDP, and this question will be taken on board. That is further extension, including to the airport.
3: इसी के मद्देनजर भूमि परिवहन मंत्रालय 20 वर्षों के लैंड ट्रांसपोर्ट प्लान के लिए विशेषज्ञ सलाहकारों की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी करेगा। वर्तमान में मेट्रो एक्सप्रेस के पास दो लाइनों पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क है। इसकी 18 ट्रेनों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 47,000 यात्री सफर करते हैं। राज्यसभा में कल मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज बिल पर भी बहसें शुरू हुई। भूमि एवं आवास मंत्री शकील मोहम्मद द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज की स्थापना करना है। ये नई इकाई देश के समुद्री क्षेत्र

0: का सर्वेक्षण और आधिकारिक जानकारी तैयार करने का काम करेगी। मंत्री ने कहा कि ये कानून मॉरिशस की समुद्री संप्रभुता को मजबूत करेगा। उन्होंने शागोस पर देश के अधिकार और समुद्री संसाधनों के आर्थिक महत्व का भी उल्लेख किया। मंत्री शकील मोहम्मद को सुनते हैं गीता सुनारन।
1: Three converging realities have made this bill urgent. First, legal.
2: कई वास्तविकताओं के आधार पर ये विधेयक जरूरी है। पहला, कानूनी स्तर पर मॉरिशस अनक्लॉस और सुलास के पांचवें अध्याय के नौवें रेगुलेशन के प्रति कटिबद्ध हैं, जिससे हर एक सरकार को हाइड्रोग्राफिक डेटा एकत्र करना चाहिए और समुद्री जानकारियों के प्रकाशन के लिए भी हमने इस कटिबद्धता का पालन किया है। ये विधेयक इसे कानून में बदलता है।
1: La deuxième réalité, madame la présidente, est d'ordre géographique. Elle est décisive.
2: दूसरी वास्तविकता भौगोलिक है और निर्णायक। 22 मई 2025 को मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम ने शागोस द्वीप समूह पर समझौता तय किया था, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ने पूरे द्वीप समूह पर मॉरिशस की प्रभुसत्ता को मान्यता दी थी। कॉन्टिनेंटल प्लेट के सीमा निर्धारण आयोग को ये सुपुर्द किया गया था, जो रोड्रिग्स इलाके से संबंधित था, करीब 183 वर्ग किलोमीटर पर, और साझा संचालन क्षेत्र जो सेशल्स के साथ और मस्कारेंस पर भी आधारित था।
1: gestion conjointe convenue avec la République de Seychelles et sur le plateau des Mascarennes. L'espace maritime placé sous notre souveraineté figure désormais parmi les plus vastes de tous les petits états insulaires de l'océan Indien.
2: हमारी प्रभुसत्ता में आने वाले समुद्री क्षेत्र हिंद महासागर में सभी छोटे टापुओं में शामिल हैं, जिसका माप नहीं लिया गया है, उस पर संचालन नहीं कर सकते, जिसकी मैपिंग नहीं की गई है उसकी प्रतिरक्षा नहीं कर सकते। तीसरी वास्तविकता है अर्थव्यवस्था। 4 सबमरीन टेलीकम्युनिकेशंस केबल हमारी अंतर्राष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक का 98% से ज्यादा भाग इस पर आधारित है। पोर्टविस हमारे विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ज्यादातर भाग पर काम करता है।
1: carrying more than 98% of our international data traffic. Port Louis handles the vast majority of our external trade. Our exclusive economic zone contains significant tuna fisheries, prospective offshore renewable energy sites, and some of the most ecologically important coral ecosystems in the Western Indian Ocean. Each one of those interests, Madam Speaker, depends on reliable hydrographic knowledge.
0: यातायात को सुगम बनाने और जाम कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई कई सड़क परियोजनाओं में से एक पेलकैंथियानो लिंक रोड का उद्घाटन आज सुबह 11:30 बजे किया जाएगा। राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश इस नई सड़क का उद्घाटन करेंगे। इससे सेंट जॉन और M1 मोटरवे पर यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद। इसके बाद मंत्री फिकोफ्लैक बाईपास परियोजना का भी निरीक्षण करेंगे। लगभग 4.8 किलोमीटर लंबी ये सड़क जाविये को पीएफओ से जोड़ेगी। इसमें कस्कावेल और बुसोंश के बीच पल्मा रोड B2 तक एक नया मार्ग भी शामिल होगा। इस सड़क परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹1 बिलियन है। ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी की अपील अदालत में आज लंदन में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। इसको लेकर ब्रिटेन की लेबर सरकार ने 31 मार्च के उस फैसले को रद्द करने की अपील की है, जिसमें मिसले मोंदागे सहित 6 शगस मूल के लोगों को पेरोस बानोस में रहने की अनुमति दी गई थी। ये सभी 16 जनवरी फरवरी को इल्जिक्वें पहुंचे थे। ब्रिटेन का कहना है कि उन्हें वहां स्थायी रूप से रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वहीं संबंधित शगस मूल के लोगों का कहना है कि यह फैसला उनके पैतृक द्वीपों पर लौटने के अधिकार की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सुनवाई सार्वजनिक होगी और मॉरिशस के समयानुसार 12:30 बजे शुरू होगी। मॉरिशस में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस मॉरिशस और एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट मैन्युफैक्चरर्स ने एबेन में क्लब डे एंटरप्रेन्योर डे इकोनॉमी सर्कुलर का एक नया सत्र आयोजित किया। इस दौरान दो प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की गई। पहली परियोजना हिंद महासागर क्षेत्र में खतरनाक कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए है, जिसमें मॉरिशस, सेशल्स, मालदीव्स और कोमोरोस शामिल हैं। दूसरी परियोजना सर्क्यू हब भवन और निर्माण सेक्टर को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में सहयोग करेगी। सुनते हैं अमोजिन ऑडो ऑडो रोने को।
3: Jeff Ireland's

0: इस परियोजना से हम सलाह मशवरे कर पाएंगे ताकि हम एक रणनीति विकसित कर सकें। इस तरह हम खतरनाक कचरों का संचालन करना भी जानेंगे। हम इन्हें बाहर तो नहीं भेज सकते, स्थानीय स्तर पर भी इनका संचालन करना मुश्किल है। इसके अलावा मॉरिशस में सर्कुलर इकोनॉमी पर एक रोड मैप पेश किया जाएगा। सर्क्यू हब परियोजना के तहत हम निर्माण क्षेत्र के सभी साझेदारों और ऑपरेटरों को आमंत्रित करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग होगी जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का समर्थन भी मिलेगा।
1: इस अवसर पर एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट मैन्युफैक्चरर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सैमुएल मोजो ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी के विकास में सबसे बड़ी चुनौती एक प्रभावी कानूनी ढांचे की कमी है। उनके अनुसार कचरे की छटाई और रिसाइकलिंग उद्योगों के लिए प्रोत्साहन जैसी कई पहले से मौजूद हैं, लेकिन उन्हें और मजबूत नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। उन्हें सुनते हैं, विवरण है सुमेरा अकबर अली का।
0: इस परियोजना को लागू करने के लिए उद्योगों के बीच सहयोग होना चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी का मकसद एक नए कारोबार की शुरुआत करना भी है। छोटे उद्योग अपने अपने हिसाब से योगदान दे रहे हैं, लेकिन असल में एक कानूनी ढांचे की जरूरत है ताकि सब एक ही दिशा में एक ही मंजिल की तरफ बढ़ें। हम अच्छी राह पर हैं, कई रोड मैप को तैयार किया जा रहा है सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, प्लास्टिक के लिए और दूसरे पहलुओं के लिए भी।
1: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% शुल्क लगाने की अपनी घोषणा वापस ले ली है और उसकी जगह खाड़ी देशों के साथ बड़े व्यापार और निवेश समझौतों की बात कही। इसी बीच अमेरिकी सेना ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में जहाजों की सुरक्षा के नाम पर ईरान के ठिकानों पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। जवाब में ईरान ने बहरीन और जोर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। लगातार बढ़ते तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जहाजों की आवाजाही में भारी कमी आई है, जिससे वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ रहा है। चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर पूर्व से आ रही अस्थिर बादलों का असर है। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान और दोपहर बाद भी देश के पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर बरसात होगी और ऊंचाइयों पर धुंध छाई रहेगी। ऊंचाइयों पर और हवाई ढलानों पर मौसम कुछ खराब ही रहेगा दिन के दौरान। रात को ऊंचाइयों पर बरसात जारी रहेगी। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। प्रवाल रेखा के बड़े समुद्र खराब रहेगा, समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम शहरी इलाकों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 7:45 बजे, सूर्यास्त 5:46 पर।

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजन, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। धनुष लेन लोशेत्या रूज में 36 साल के 36 ईयर्स ओल्ड के धनंजय नन बुधुआ धनंजय मन बुधुआ की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राजीव मेकानिसिया के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे उन्हीं के मकान त्यागूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। गानम रोड वाकवा में 25 साल की 25 ईयर्स ओल्ड की पुरमाले वीरापेन नारायणन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उन्हीं के मकान से वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो टुडे एट 3 PM। ओयेता वाकवा में 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड की पुष्पा गोकानी जानतीला की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम गोकानी। उनकी अर्थी आज उठाई जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए आली भैया वाकवा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। समय के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। सोजिए स्ट्रीट वाले पीटू में 56 साल की 56 ईयर्स ओल्ड की प्रेमिला चेदी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम किस्तो। लोग उन्हें रेणुका के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनके पति देवन चेदी के मकान वाले पीटू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगपो पोटवी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। तमाहा रोड शामुनी में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री गोइंदा रेंगासामी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम बल्कि लोग उन्हें मौदे के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज एक बजे उन्हीं के मकान शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माहिरानी रोजबल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। आउटोलेन प्लेनमानियों में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की प्रभाती जोड़ी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम धयन। लोग उन्हें ममा करुणा के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनके बेटे श्याम जोड़ी के मकान प्लेनमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। एवेन्यू ड्रेपर्स कैट्रोबोन में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के चिनाया सीताना की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सीराम के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज 11:30 बजे उनकी पत्नी के मकान कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कैट्रोबोन की खुशबुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। डिस्पेंसरी रोड कॉबे में 33 ईयर्स ओल्ड के काशीनाथ केविन हरी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी एक बजे उनकी माता के मकान कॉबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनिस त्रियोली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रिजर्वर रोड गुडलैंड्स में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की ईश्वरलाल रामगुलाम की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सोना के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 12:15 बजे उनके बेटे ब्रिशनन रामगुलाम के मकान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:15 PM। रॉयल रोड मेलरोज में 81 ईयर्स ओल्ड के श्री इसोहंत लक्सिमो की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें कुन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उन्हीं के मकान मेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय ब्लॉश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। एवेन्यू डिवेग ग्लेनपोर्क वाकवा में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की मुनेश्वर जीतन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें इंदाल के नाम से अधिक जानते थे।
अफ्टरनून केयर थी। आज दिन के 9:30 बजे उन्हीं के मकान ग्लेनपॉक वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भुइयों कास्टेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। वन वे स्ट्रीट शमेंगोनिये में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की बिंदा रंगासामी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें तीहा के नाम से अधिक जानते थे। पैदाइश नाम तीहा, लोग उन्हें सुरेखा के नाम से अधिक जानते थे और वे मेलोडी दुकान की मालकिन थी। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनके पति सदा गंगा सामी के मकान वन वे स्ट्रीट शमेंगोनिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड लावोंचुआ में 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जयमंती रामफल की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम चमन, लोग उन्हें मानती के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी एक बजे उनके बेटे विजन रामफल के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। टागोर रोड घोंगोब में 17 साल की माइनर जय आर्या गर्भू की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें आयुष के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी 11 बजे उनके पिता जगराज गर्भू के मकान खोंगुब से उठाकर

0: Simpsons Karkili, Krangop, Kishumshan Bhumi, Leja, Jagi, Cremation Today at 11 a.m. Ale des Acacia, Bovalomi, Bovalomi, Ixat, Sale, Ki, Gassan, Yasimulu, Kimritu Hogayen, Gassan, Yasimulu, Kimritu Hogayen, Logun Hebolen, Kinam Sertik, Jantit, Hunkerti, Ashden, Kedas Paje, Daspaji, Unike Makan, Bovalonsi, Uthakar, and Simpsons Karkili, Union Pok, Kishumshan Bhumi, Leja, Jagi, Cremation Today at 10 a.m. Kokaval Cupip me, Kokaval Cupip me, 86 years old के 86 साल की सुनवंती सिहरी की मृत्यु हो गई है सुनवंती सिहरी की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम रामधुनी लोग उन्हें शांति के नाम से अधिक जानते थे उनकी अर्थी एक बजे उन्हीं के मकान क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए भी कहा कि शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 पीएम कोंकाहोल केन्या में 70 साल की 70 इयर्स ओल्ड की हरिदत्त बिसुनी की मृत्यु हो गई है हरिदत्त बिसुनी की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम बल्कि लोग उन्हें राज के नाम से अधिक जानते थे उनकी अर्थी दो बजे उनके बेटे हरीश बिसुनी के मकान केन्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंकाहोल केन्या की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 पीएम अवनी सियामोने कानू में 75 साल के 75 इयर्स ओल्ड के बलराम कुडनी की मृत्यु हो गई है बलराम कुडनी की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान कानू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 10 पीएम शोक में 10 एएम शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Welcome to RM2.
3: Radio Musti.
4: North, South.
3: 103.5.
4: East, West.
3: 96.4.
4: Center.
3: 99.4.
2: RM2, Radio Musti.
3: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, it's 7 a.m.
6: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Masti.
2: A very good morning and welcome to Radio Masti. मैं हूँ विदिता, आ गई हूँ लेकर आपका मॉर्निंग बीट। चलो भाई, सुबह के 7:08 और यहाँ पर हम साथ साथ है। अब आपको इतना ही बताना है कि देखो, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, हर दिन कुछ नए सपने हम सजाते हैं, हर दिन हम कुछ करने की बात करते हैं, तो आज वो दिन है। जी हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, वेडनेसडे 15th of July। एक बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए, हम सब के लिए। ऐसा अगर आप मान के चलोगे तो सच में आज आपकी लाइफ में जो भी होगा वो बहुत बहुत बहुत अच्छा, बहुत स्पेशल, बहुत खास होगा। तो अच्छी सोच के साथ आंखें खोलिए, और अगर आप इस समय नींद में हैं और हमें सुन रहे हैं तो चलो रिलैक्स करो। अभी हम आ गए हैं साथ देने के लिए ना, तो कुछ खूबसूरत यादें, खूबसूरत बातें और कुछ खूबसूरत गीतों के साथ, कुछ खूबसूरत सपनों के साथ आए हैं। एंड ट्रस्ट मी, इंसान सपने देखता है लेकिन वो सपने तब तक सच नहीं होते जब तक उस पर काम करना शुरू नहीं करते। तो जो कल करना था वो अभी करना शुरू कर दो। और कहते थे ना कि कल से जिम जाऊंगा, कल से कुछ डाइटिंग शुरू करूंगा, कल से कुछ मैं अपने इस प्रोजेक्ट पे हाथ लगाऊंगा। जो करना है अभी करो भाई, अभी इसी वक्त कुछ करने की सोचो, फिर देखो सारा जो सारा काम है अपने आप ऐसे ही निपटाने लगता है। तो चले, इसी के साथ मैं विदिता आप सभी का एक बार फिर वेलकम करती हूँ रेडियो मस्ती। भूलिएगा नहीं, हमारे पास गेम्स हैं, स्पोर्ट्स न्यूज है, हमारे पास आपके लिए बहुत कुछ है। सो स्टे कनेक्टेड राइट हियर रेडियो मस्ती पर।
0: मॉर्निंग बीट,
3: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स,
0: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: चलो भाई ना दिन दिना करते हम तो आपके साथ आ गए हैं जुड़ने के लिए सुबह के 7:18. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. गेट रेडी, थोड़ी देर में आपके लिए एक सवाल लेकर आएंगे और जवाब देने पर आपको मिलेगा इनाम. कैसे मिलेगा? अरे पहले सवाल तो करूं, अभी टाइम है. चलो सवाल कर लूं अभी. पहले ठीक से उठ तो जाओ. आवाज आ रही है हमारी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musty.
0: चलिए जी, तो यहाँ पर आपके लिए हम सवाल लेकर आए हैं और अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको इनाम मिल सकता है. अब इनाम क्या होगा ये भी जानना ज़रूरी है. भाई आप लोगों को कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना? आपको कॉन्सर्ट में जाना, गाना, आर्टिस्ट से मिलना, देखना, फ़ोटो खींचना, ये सब अच्छा लगता है. अब सोचो अगर हमारे 90s का जो गोल्डन एरा था, अब उनमें से अगर आपको अभिजीत भट्टाचार्य से मिलना पड़े, देखना पड़े, कॉन्सर्ट को इन्जॉय करना पड़े, अपनी यादों को फिर से खाना पड़े, सो दैट वुड हैव बीन अमेजिंग ना. अब आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है. मैं गेम लाई हूँ, आप खेलो, आप मुझे सही जवाब दो और आप इनाम लेके जाओ. कैसे? अभी आपको मुझे ये बताना है कि 1995 में अभिजीत दा के किस गाने को फिल्म फेयर ने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर आज फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर उनको किस गाने के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया था. उन्होंने जीता नहीं था, 1995 में नॉमिनेट किया था. ध्यान से सुनना, इसीलिए मैंने कहा पहले उठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक से सुनो, कान खोल के सुनो. 1995 में अभिजीत दा किस गाने

0: ने के लिए नॉमिनेट हुई थी फॉर फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। आपको मुझे बताना है कि वो गाना कौन सा था जिसके लिए वो नॉमिनेट हुई है। अब चलो देखते हैं, यहाँ पर जो भी जीतेगा उसको मौका मिलेगा, उनको एक टिकट मिलेगा फॉर द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट सैटरडे 25th ऑफ जुलाई को हो रहा है 7:30 PM SBICC पाई में। एंड अगर आप टिकट खरीदना चाहते हैं सुनो, टिकट मिलेगा muchke.mu पर एंड रेजो उतायु पर और प्राइस स्टार्ट होता है 850 rupees पे। अब रिजर्व करना है तो हॉटलाइन पे कॉल करो 4669999 पे।
1: RM2 Radio Musti.
2: On est mercredi et votre jour de gloire, c'est peut-être aujourd'hui. Le jackpot du loto du tirage de ce soir est à environ 12 millions de roupies et celui du loto plus est estimé à 26 millions de roupies. 26 millions de roupies au loto plus. Quand la chance vous sourit, la vraie richesse ne se compte pas toujours en millions. Une attention, un peu de générosité et c'est tout le monde qui gagne. Chaque petit geste aujourd'hui fait une grande différence demain.
3: Ceci est un communiqué de l'Autotech. Le jeu peut créer dépendance. Jouez responsablement.
4: Béala, Wednesday Bazaar, Loguecote Winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners.
5: Et promotion, bidoune balle. Un pâtisson pour 49,95 €. Un concombre vert pour 19,95 €. 500 grammes mandarine pour 49,95 €. 500 grammes blanc, cuit sec, aile de poulet frais pour 104,95 €.
4: Pan Prila, Bazaar Moudirou. Rendez-vous Côte Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
6: On est tous winners.
1: RM2 Radio Musti.
7: Kabhi spicy, kabhi sweet. Music lovers ki heartbeat.
8: Tak tak Bollywood.

0: मॉर्निंग बीट।
1: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स।
0: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
3: चलो भाई, हमने आपसे सवाल तो कर दिया, यहाँ पर बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा लकी ड्रॉ, क्या बात है। 95 में अभिजीत दा फिल्म फेयर की तरफ से नॉमिनेट हुए थे। अब गाने कौन से थे आपको मुझे बताना।

हाँ दोस्तों, हमारा सवाल तो बिल्कुल आपके लिए आसान था एंड हमने बहुत इजी सवाल आपसे किया और इसके लिए हमें इतने सारे मैसेज मिले हैं, इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, थैंक यू सो मच। लाइक अभी मुझे पता है कि ना मॉर्निंग में हमारे इतने सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े रहते हैं, सो थैंक यू सो मच गाइज। एंड चलिए इसी के साथ मैं आपको बता भी दूँ कि हमारे साथ अभी कितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उनमें से कोई एक तो होगा ना कि जो यहाँ आज विनर बनेगा। और हमारा सवाल आपके लिए ये था, 1995 में अभिजीत दा जो हैं वो किस गाने के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था। एक्चुअली उनको नॉमिनेट किया गया था दो गीतों के लिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ट्रिकी सवाल कर दिया। मॉर्निंग में होता है कभी, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और चलिए इसी के साथ हमारा विनर जो है लकी ड्रॉ के बाद कौन है जान लेते हैं। और जवाब था ओले ओले ओले ओले ओले ओले, तो मैंने भी बोला ले ले, कोई बात नहीं, इनाम है ले ले। और साथ ही साथ खिलाड़ी का गाना था वादा रहा सनम, उसके लिए भी नॉमिनेट हुए थे। कंग्रेचुलेशंस टू रूपा जो रहती है प्रोविडेंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आप जा रही हैं एक टिकट के साथ टू अटेंड द गोल्डन 90s era 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य, जिनका कॉन्सर्ट होने

वाला है 25th of July 7:30 PM SBICC पाई में टिकट 850 रुपीस से स्टार्ट हो रहा है अवेलेबल है atmochicket.mu एंड रिजो तायो और रिजर्वेशन के लिए आप लोगों को हॉटलाइन पे कॉल करना पड़ेगा 466-9999 अभिजीत गाने कैसे होंगे गाने कुछ ऐसे होंगे हिस्सा बनना चाहते हैं डॉट वरी एक और गेम के साथ वापस आऊंगी थैंक यू सो मच भूलिएगा नहीं कि आपको अपना टिकट लेने एमबीसी आना पड़ेगा रूपा आईडी कार्ड के साथ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 बजे से सुबह के 3:30 बजे के बीच कांग्रेचुलेशन

0: All right, guys, you're listening to Radio Masti Vedita के साथ और चलिए यहाँ पर समय हो गया है उनसे मिलने का जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जानते हैं कि वो कौन हैं एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि इनको सरप्राइज़ करना है लेकिन वो फ़ोन नंबर लिखना भूल जाते हैं सो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी का फ़ोन नंबर किसी का नाम भेजें तो उनका फ़ोन नंबर भेजना बहुत इंपॉर्टेंट होता है चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते जी हाँ तो आयुष से बात हो सकती है प्लीज
1: मैं जा रही हूँ अभी तो
0: अच्छा तो आपने
1: फोन है
0: अच्छा तो आपने खुद का नंबर भेजा
1: आपने कौन भेजा मेरी नंबर उसका नंबर नहीं है ये
0: अच्छा कोई बात नहीं थैंक यू सो मच चलिए तो इसी के साथ जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं एक बार फिर मैं बोलूंगी कि जिनका बर्थडे है हमेशा आपको चाहिए कि आप उनका नंबर हम तक पहुंचाएं कभी कभी होता है आप अपना नंबर भेजते हैं तो फिर हम आपको कॉल के तो सरप्राइज़ नहीं कर सकते ना हमें अगर सरप्राइज़ करना होगा तो हमें उनको सरप्राइज़ करना होगा जिनका बर्थडे है एनीवे वी गोना विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू आयुष चलिए आयुष को हैप्पी बर्थडे वो रहते हैं रोजिल और उनकी पूरी फैमिली की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आयुष को बता दें कि उनको मिल रहा है लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर जो उनको आकर कलेक्ट करना पड़ेगा एट दी एमबीसी और अगर वो नहीं तो उनके पेरेंट्स को चाहिए लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से आज नहीं तो कल आपके पास दो दिन है उसे आकर कलेक्ट करना पड़ेगा थैंक यू सो मच चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अरविंद आ गए हैं देखते हैं क्या बातें हो रही है कल का मैच कब का मैच
2: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Sports News.
4: Radio Musti in the mix.
0: यस दोस्तों चलिए भाई हम जब फुटबॉल की बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो स्पेन ने तो अपनी जगह बना ली अब बाकी के न्यूज अरविंद गुड मॉर्निंग टू यू
5: गुड मॉर्निंग आपको गुड मॉर्निंग आरएमटू लिसनर्स द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंची स्पेन की टीम बहुत लोग भूल गए थे कि स्पेन यूरोप की चैंपियन टीम है फ्रांस के स्टार खिलाड़ी एक संगठित डिसिप्लिन टीम के खिलाफ कमजोर पड़ गई फ्रांस 0 स्पेन 2 ऑलराउंड परफॉर्मेंस से स्पेन ने फ्रांस को एलिमिनेट किया फ्रांस की टीम जैसे फुटबॉल खेलना भूल गई थी फर्स्ट हाफ में मिकेल ओयोज़बाल का गोल पेनाल्टी पर सेकेंड हाफ में पेड्रो पोगो ने स्कोर किया नो पेन स्पेन के लिए पर फ्रांस में पेन किलर आउट ऑफ स्टॉक है 14 जुलाई बास्टी डे को फ्रांस वर्ल्ड कप से स्वतंत्र हुआ बाहर हुआ au revoir à bientôt स्पेन फाइनल में जबकि फ्रांस को छोटा फाइनल तीसरे स्थान के लिए थर्ड प्लेस मैच खेलना होगा इस शनिवार को 3 out of 3 स्पेन के लिए जामे 203 की बात सच साबित हुई 2024 में यूरोपियन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में फिर पिछले साल नेशंस लीग में इस बार

0: वर्ल्ड कप में फिर से सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को हराया। 37 मैचों में अनबीटन, मतलब स्पेन की जीत होती आ रही है। स्पेन के कोच लुइस डे ला फुएंते ने कहा कि 4 सालों का परिश्रम है, सफल नतीजे सामने आ रहे हैं। एक ऐसी टीम है जिसमें हर खिलाड़ी एक होकर टीम स्पिरिट से खेलता है। यूरोपियन चैंपियन स्पेन अब वर्ल्ड कप से केवल एक कदम पीछे है, फाइनल इंग्लैंड या अर्जेंटीना के खिलाफ होगा। दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच 1966 से इंग्लैंड की टीम फाइनल में नहीं जा पाई है। सामने है वर्ल्ड चैंपियन मेसी का अर्जेंटीना। इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना ये केवल एक मैच नहीं बल्कि इंटरनेशनल फुटबॉल की सबसे बड़ी राइवलरी है। 1986 में डिएगो माराडोना के हैंड ऑफ गॉड गोल से लेकर 1998 में डेविड बेकहम के रेड कार्ड तक इन दो टीमों के बीच मैच में ड्रामा ही ड्रामा। 8 साल पहले मॉस्को में क्रोएशिया ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया था। इस बार एक कदम आगे जाना चाहते हैं, फुटबॉल को वापस घर लाना चाहते हैं। इंग्लैंड के सामने है वर्ल्ड कप अर्जेंटीना। पहली बार मेसी इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। इंग्लैंड के डिफेंस को मेसी पर खास ध्यान देना होगा। नॉकआउट राउंड में काफी कठिनाई हुई थी अर्जेंटीना को। लाइनअप इस प्रकार है: पिकफोर्ड, कोनसा, स्टोन्स, ग्वेई, ओरेली, राइस, एंडरसन, माडुएके, बेलिंगम, गोर्डन और हैरी केन। अर्जेंटीना के लिए इमिलियानो मार्टिनेज गोलकीपर, फिर मोलिना, रोमेरो, मार्टिनेज, तागलियाफिको, सिमियोने, मैक अलिस्टर, पारेदेस, एंजो फर्नांडेस, मेसी और जुलियन अल्वारेज। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी जूड बेलिंगम और हैरी केन 6-6 गोल स्कोर कर चुके हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। द एनालिस्ट बाय ओप्टा के अनुसार अर्जेंटीना 32%, इंग्लैंड 38%, ड्रॉ 30%, मतलब इंग्लैंड फेवरेट है। इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना आज रात 11 बजे स्पेन न्यूयॉर्क में इंतजार कर रहा है। ट्रांसफर न्यूज, यूरी चेलेमांस अब मैनचेस्टर यूनाइटेड का खिलाड़ी बन गया है। 35 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर उसे एस्टन विला से खरीदा गया। एंड्रेस सांटोस और गोलकीपर कॉल डॉलो के बाद चेलेमांस यूनाइटेड की तीसरी साइनिंग है। क्रिकेट, इंग्लैंड और भारत के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में कल टीम इंडिया की आसान जीत हुई। 6 विकेट से भारतीय टीम जीत पाई। इंडिया के 262 रनों के जवाब में शुभमन गिल 80 नॉट आउट, अक्सर 57 और वाशिंगटन सुंदर 52 रन बना पाए, अक्सर 4 विकेट ले पाया। टूर डे फ्रांस साइकिलिंग की बात करें हैं, इसमें कल लीडर तादेज पुगाचा की जीत हुई। ये उसकी तीसरी स्टेज विन है। येलो जर्सी तो उसी के पास है। पुगाचा की लीड अब 3 मिनट से ज्यादा हो गई है। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, स्पेन की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में और au revoir फ्रांस। Don't forget, I'll catch you at 8:30 for the World Cup magazine. Till then, enjoy the music on Radio Masti.
1: Thank you so much, Arvind. Milte hain thodi deer mein.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: A good beat for your morning show. From a morning beat, RM2.
2: Radio Masti. Masti.
4: Testing 1, 2. Yeah.
5: कभी सोचा है
4: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
5: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
4: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
5: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
4: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
5: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
4: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
5: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
4: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
5: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
4: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर

0: का कंफ्यूजन खत्म और आज वेडनेसडे कह रहा है बस थोड़ा और सह लो बेटा थोड़ा और वीकेंड नजदीक है। देखो भाई स्माइल फ्री में मिलता है, हंसी अनलिमिटेड है और म्यूजिक का वॉल्यूम भी है।
1: मॉर्निंग बीट,
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स,
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो,
3: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: गर्मा गर्म चाय के साथ गीतों के इस प्रोग्राम को आगे ले चलेंगे और ये गाना लेके जा रहे हैं 8 बजे के समाचारों की ओर। सुनो, पकौड़े नहीं मिले ना?

नमस्ते, सुना भोजपुरी में समाचार। अब विश्व कप के फाइनल में स्पेन पहुंच गल बा डालास में खेलल गल। सेमीफाइनल में स्पेन फ्रांस के 2-0 से हरा दिलक। पूरा मैच में स्पेन के खेल परी पकड़ मजबूत रहल, हर मोर्चा परी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन दिखल। अब सबकी नजर फाइनल पर बा, जहां स्पेन विश्व चैंपियन बनी से बस एगो जीत दूर बा। अब नजर बा दूसर सेमीफाइनल पर ही, जहां आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने हुई। ये बहुचर्चित मुकाबला के लेके फुटबॉल प्रेमी में जबरदस्त उत्साह बा के जीती स्कोर का रही और फाइनल के टिकट केकरा मिली। मॉरिशस में काल फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस

0: आधिकारिक रूप से मनावल गल ई मौका परी फ्लोरियल में फ्रांस के राजदूत के सरकारी निवास परी एगो स्वागत समारोह आयोजित करल गल। इस समारोह में राष्ट्रपति धर्म गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, सरकार के सदस्य, राजनयिक समुदाय और इमोशस में रहत फ्रांसीसी समुदाय के प्रतिनिधि लोगन मौजूद रहलन जा। अपन संबोधन में फ्रांस के राजदूत फ्रेडेरिक बोंटन कहलन कि मॉरिशस और फ्रांस के बीच दोस्ताना संबंध लगातार मजबूत बा। वो बतैलन कि दोनों देश के सहयोग के और आगे बढ़ावे खातिर कई पहल जारी बा। इस दौरान प्रधानमंत्री के नवंबर महीना में फ्रांस में होके वाला पेरिस पीस फोरम में भाग लेवे के निमंत्रण देवल गल। जॉन मिक मॉटिंगेल के मौत से जुड़ल न्यायिक जांच के तहत काल बोबासें केंद्रीय जेल के निरीक्षण भल जिला मजिस्ट्रेट डेनी विलियन और डीपीपी के प्रतिनिधि उसल के देखलन जा, जहां 8 सितंबर 2024 के मॉटिंगेल के मौत भल रहल। कंट्रोल रूम समेत दूसर जरूरी जगह के भी निरीक्षण करल गल। याद रहे कि जॉन मिक मॉटिंगेल के 29 अक्टूबर 2022 के एसएसओ हवाई अड्डा पर ही गिरफ्तार करल गल रहल। अगला सुनवाई 21 जुलाई के रोजेल जिला अदालत में हुई। राष्ट्रसभा में काल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम प्लास्टिक के बोतल पर ही लगियोला 2 रुपया एक्साइज ड्यूटी के बारे में जानकारी देलन। वो बतैलन कि 1 अक्टूबर से लागू होकेला ई टैक्स से लगभग 135 मिलियन रुपया की आमदनी होके के अनुमान बा। साथ ही यह स्पष्ट कहलन कि 38 तरह के सामान जैसे शिशु भोजन, डेयरी सामान, खाना बनावे के तेल, मक्खन, शहद और दवाई से जुड़ल सामान पर ही ई टैक्स नहीं लगी। प्रधानमंत्री यह घोषणा करलन कि एमओए की रिफंड योजना अब खाली पेट बोतल ले सीमित नहीं रही, अब ई सब तरह के प्लास्टिक बोतल पर लागू रही। सरकार प्लास्टिक पॉल्यूशन फ्री मॉरिशस खातिर 10 बरिस के रोड मैप भी तैयार करी। का भविष्य में मेट्रो एक्सप्रेस सीधा हवाई अड्डा ले जाए, फिलहाल तो ई पर काम नहीं हो सकी। राष्ट्रसभा में भूमि परिवहन मंत्री उस्मान महमूद कहलन कि मौजूदा आर्थिक हालात में ये परियोजना संभव नहीं बा। हालांकि वो कहलन कि भविष्य में प्लान मान्यों ले मेट्रो एक्सप्रेस बढ़ावे की संभावना पर ही विचार करल जा सकेला। ये खातिर सरकार आवत 20 बरिस के लैंड ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान तैयार करे खातिर विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्त करी। आज बिलग्रेंट्रियानो लिंक रोड के उद्घाटन हुई। उम्मीद बा कि इसे सेंट जॉन और M1 मोटरवे पर ही ट्रैफिक जाम कमती हुई। आज लंदन में ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के अपील अदालत में एगो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। ब्रिटेन सरकार उ फैसला के चुनौती देवता, जिनमें मिसले मौदारें समेत 6 शकोसियन के पेरिस बानुस में रहे की अनुमति मिलल रहल। दूसरा देश के खबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुस से गुजरे वाला जहाज पर 20% शुल्क लगावे के फैसला वापस ले ले हवन। इस बीच अमेरिकी सेना ई समुद्री सीमा में ईरान के कई ठिकाना पर ही नवा हमला शुरू कर लेबा। जवाब में ईरान, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाना के निशाना बनावे की दावा कर लेबा। बढ़त तनाव के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुस से जहाज के आवाजाही काफी कम हो गलबा। असर अब वैश्विक तेल बाजार पर दिखता। तो यह रहा हमने के भोजपुरी में समाचार। हमने के सुन ला जा, धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services. TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others. TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on NBC's website mbc.mu and on NBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through NBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.

0: सुबह के 8:09 मिनट हुए हैं। गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत करते हैं मॉर्निंग बीट विनीता के साथ रेडियो मस्ती पर। जी हाँ, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, जितने भी फुटबॉल लवर्स हैं उनके लिए था ये गाना। चलिए इसी के साथ अब ये भी जान लेते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है, मिलते आस्था के साथ।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स,
2: ओनली टू विनर्स।
3: पूर्व से आ रहे अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान है कि आज सुबह और दोपहर बाद भी रह रहकर देश के पूर्व और सेंट्रल प्लाटू पर बरसात होगी और ऊंचाइयों पर धुंध भी छाई रहेगी। ऊंचाइयों और हवाई ढलानों पर शाम को भी मौसम कुछ खराब ही रहेगा। रात को ऊंचाइयों पर वर्षा जारी रहेगी। हवा उत्तर उत्तर पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 22 से 24, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:46 पर होगा।

0: prête au défi de longs shifts. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों, जिंदगी में जो भी होता है ना, वो या तो हमें कुछ देता है या तो फिर कुछ सिखा देता है। इसलिए हर सिचुएशन को पॉजिटिव नजरिए से देखो, क्योंकि बारिश के बाद ही तो रेनबो दिखता है और मुश्किलों के बाद ही इंसान और भी मजबूत बनता है। स्माइल करते रहो, बिलीव करते रहो, क्योंकि हर नई सुबह एक नई उम्मीद ले

0: लेकर आती है। वैसे कहने की बात ये है कि लाइफ में हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती, लेकिन हर चीज़ हमारे भले के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ जाती है, कभी एक लेसन, कभी एक ब्लेसिंग। इसलिए प्रॉब्लम्स को पनिशमेंट मत समझो, उन्हें प्रिपरेशन समझो। पॉजिटिव सोच रखो, ग्रैटिट्यूड के साथ दिन की शुरुआत करो और याद रखो, आज की चैलेंज ही कल की सक्सेस स्टोरी बन सकती है। तो इस ठंडे रेनी वेडनेसडे मॉर्निंग में आपको कहेंगे कि कंप्लेन कम, स्माइल ज़्यादा, स्ट्रेस कम, ग्रैटिट्यूड ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड से ही हर दिन ब्यूटीफुल बनाई जा सकती है।
1: Commence par une bonne décision. Nescafé.

0: What a beautiful song for Wednesday morning. सुबह के 8:22 मिनट हुए हैं. Good morning. You are listening to Morning Beat Vedita के साथ.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: अब इस गाने को सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो चलिए उसी गार्डन में चलते हैं और वहां पर आपके लिए हम कुछ इनाम ले आते हैं. इनाम या ऑफ कोर्स हम खेल रहे हैं. अभी आपके लिए लेकर आए हैं एक सवाल की कीमत है जानी एक टिकट टू द गोल्डन 90s ईरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य. ये लाइव इन कॉन्सर्ट होने वाला है 25 जुलाई को 7:30 बजे 7:30 PM SBICC Pi में. अब यहाँ पर गाने वाले कौन हैं? अभिजीत भट्टाचार्य भाई, इतने बड़े सिंगर. जैसे मैंने कहा था आपसे कि इनसे हमारी मुलाकात हुई थी, मैं और विकास इनसे बहुत बातें की थी और ऐसा लगता नहीं है, इज सच नाइस ह्यूमन बीइंग. और अपनी तारीफ करता है, बस तारीफ करता है. और उनके साथ हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, पिक्चर वगैरह लिए थे. बोला इधर से लो, आई स्टिल रिमेंबर दैट. तो ये रहे हैं भाई कॉन्सर्ट के लिए. सोचो जो इंसान इतना जेन्युइन है, इतना अच्छा है, जब स्टेज पे होगा, परफॉर्म करेगा, अपने सारे 90s के मैजिकल गाने गाएगा, ओ वाओ, आई जस्ट कांट. मैं आई डोंट नो, मुझे कुछ हो रहा है अंदर. आई फील सो वार्म, आई फील सो नाइस, आई फील सो गुड. अब सोचो इसको अब हम देखेंगे, सुनेंगे अपनी आंखों के सामने, कितना मजा आएगा. चलो भाई, मैं पता नहीं कहां जा रही हूं. मैं अभी आपको बता दूं कि अगर आपने मुझे सही जवाब दिया तो आपको ये इनाम मिल सकता है और आपको मिल सकता है टिकट इस कॉन्सर्ट के लिए. टिकट जो है एक्चुअली इसका प्राइस है 850 rupees. ये अवेलेबल है एट mochike.mu और rizotayu पर. और अगर आप रिजर्व करना चाहते हैं तो हॉटलाइन नंबर है 4669999. तो अभी आपको मुझे बताना है, जी हाँ, मैं एक बॉलीवुड क्वेश्चन लेकर आई हूँ. आपको मुझे बताना है कि हम किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? हम किस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एक बहुत ही प्यारा सा गाना है जिसे अभिजीत दा ने गाया है. आपको मुझे बताना है, ये हॉरर मूवी है जो आई थी 2002 में, 2002 की मूवी है. कहानी है संजना और आदित्य की और इसमें काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं जिसको बाद में रिवील किया जाता है. और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विक्रम भट्ट ने और इस फिल्म ने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं. तो आपको मुझे बताना है ये कौन सी हॉरर मूवी है जो 2002 में आई थी और इसमें संजना और आदित्य की कहानी है और इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स भी हैं. तो आपको मुझे बताना है सही जवाब ऑन 5491294. इसलिए पूछा क्योंकि इसमें अभिजीत दे का बहुत बड़ा खूबसूरत गाना है जो मैं आपको सुनाऊंगी लेकिन थोड़ी देर में.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: हमने आपसे सवाल किया और आपने मुझको जवाब दिया. थैंक यू सो मच. इसी जवाब के इंतजार कर रही थी जी. हमारा गेम चल रहा है और हमने आपसे पूछे थे कई सारे सवाल और अभी भी हमारे पास जो सवाल है वो हमने पूछा था आपसे कि संजना आदित्य की जो कहानी है 2002 में आई थी इसमें

बहुत सारे सीक्रेट्स हैं एंड फिल्म को डायरेक्ट किया था विक्रम भट्ट ने. आपको मुझे बताना है ये कौन सी हॉरर मूवी है. आजकल मुझे हॉरर मूवी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. हाँ, क्योंकि बस अच्छा लगता है. चलो भाई, आपने उस कैटेगरी में डाल दिया तो मैं क्या करूँ. हाँ, मैं बता रही थी कि आपको मुझे बताना था ये कौन सी मूवी है एंड द राइट आंसर इज एक्चुअली राज. तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने हमें सही जवाब दिया है एंड लकी ड्रॉ के बाद जो नाम आया है वो है निशांत संपत. और आपने हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है. थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ खेला एंड आपने हमें सही जवाब दिया राज. मैंने बोला भी कितने सारे राज, तो राज के बाद राज द मिस्ट्री रिबूट ये सब आने लगे ना बाद में. और मैं आपको बताऊँ कि ये जो संजना और आदित्य की कहानी थी इसमें बिपाशा और दीनू मोड़िया की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि जी सिने अवार्ड ने उनको बनाया डायनेमिक ड्यू और स्क्रीन अवार्ड ने उनको दिया जोड़ी नंबर वन का अवार्ड. अभी हम अवार्ड देते हैं, नहीं हम टिकट देते हैं किनको, हम देंगे टिकट निशान को. कंग्रेचुलेशंस, आपने बीसी के साथ खेला, आपको मिल रहा है टिकट फॉर द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट हो रहा है सैटरडे 25 जुलाई को 7:30 PM एट SBICC Pi. कंग्रेचुलेशंस, डोंट फॉरगेट टू कम एंड कलेक्ट योर टिकट एट MBC अपने आईडी कार्ड के साथ. और वो होगा सुबह 9:30 और सुबह के 3:30 के बीच. टिकट जो है वो आपको मिल सकता है एट 850 रुपीज़ और वहीं पे टिकट्स जो हैं अवेलेबल हैं एट mutch.mu पर एंड रेजो उतायु पर. तो इस कॉन्सर्ट को मिस मत करना वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे. चलो रिजर्वेशन के लिए हॉटलाइन नंबर दे दू, काफ़ी गर्म है. ये है 4669999. ये शहर के लड़की फिर आ गई है, कोई बात नहीं, चलो उसको घाम घुमा के आते हैं. गाँव, हाँ गाँव, गाँव में अभी दादी जो है इंग्लिश सीख रही है. बताती हूँ क्या किया.

0: अब आप सोच रहे होंगे कि ये शहर की लड़की इसे गांव में क्यों इतना घूम रही है। वो दादी से मिलने गई थी, दादी उनसे इंग्लिश में बात करती हैं। क्या बात करती हैं, आपको जानना है क्या बात करती है?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: हाँ जी, तो दादी को क्या हुआ ना, शहर की लड़की जब जाती है गांव में तो इंग्लिश बोलने का उनका पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा। तो लड़की ने उनसे बोला, हाय दादी आप कैसी हो? तो दादी ने बोला, मैं भी थोड़ा इंग्लिश हार देती हूँ। तो दादी बात करने लगी उनसे कि उन्होंने पूछा, हाय दादी हाउ यू, व्हाट यू डू? दादी ने बोला, कौन सा लड्डू वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी बातें हुई। फिर दादी थोड़ी इंग्लिश सीख गई तो लड़की ने बोला कि दादी आप इतना अच्छा गाती हैं तो आपने जाकर सीखा क्यों नहीं, अपने डांस वगैरह करना सीखा क्यों नहीं? दादी ने उनको बोला कि मुझे ऊपर चटनी नहीं मिला। लड़की परेशान हो गई, एक तो वैसे भी उसको आती नहीं उतनी हिंदी, फिर भी कोशिश करी दादी से बात करने की, बोला ऊपर चटनी नहीं मिला। अब इसका दिमाग ख़राब, अब पूछ रही है दादी कौन सी चटनी? तो दादी कहती है, अरे ऊपर चटनी मौका, उनके कहने का मतलब था अपॉर्चुनिटी।
2: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
3: Get ready for the biggest World Cup ever.
4: 2026 FIFA World Cup.
3: Radio Masti ki team ke saath
4: chaliye
3: United States, Canada or Mexico.
4: Radio Masti ke saath
3: World Cup magazine.
0: Lekin hum inko upar chutney line. इनको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। चलिए वेलकम करते हैं अरविंद का।
5: वर्ल्ड कप स्पेशल मैगजीन, वर्ल्ड कप 2026 का पहला फाइनलिस्ट बना स्पेन। कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन, पर फ्रांस के खिलाफ गेन में पेन भी नहीं था। स्पेन के सामने फ्रांस की टीम फुटबॉल खेलना भूल गई। फर्स्ट हाफ में मिकेल ओयारज़ाबाल का गोल पेनाल्टी पर, सेकेंड हाफ में पेड्रो पोको ओ रिवॉर ला फ्रांस। स्पेशल टीम बीट्स ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स। किलियान एम्बापे 8 गोल पर अभी अटका हुआ है, उसके पास एक मौका है थर्ड प्लेस मैच में गोल टैली को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच। 1966 से इंग्लैंड की टीम फाइनल में नहीं आ पाई है। सामने है वर्ल्ड चैंपियन मेसी का अर्जेंटीना। इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना ये केवल एक मैच नहीं बल्कि इंटरनेशनल फुटबॉल की सबसे बड़ी राइवलरी है। 1986 में डिएगो माराडोना के हैंड ऑफ गॉड गोल से लेकर 1998 में डेविड बेकहम के रेड कार्ड तक

इन दो टीमों के बीच मैच में ड्रामा कम नहीं है। 8 साल पहले मॉस्को में क्रोएशिया ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया था। इस बार एक कदम आगे जाना चाहते हैं द थ्री लायंस, फुटबॉल को वापस घर लाना चाहते हैं। इंग्लैंड के सामने है वर्ल्ड कप होल्डर अर्जेंटीना। पहली बार मेसी इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। इंग्लैंड के डिफेंस को मेसी पर खास ध्यान देना होगा। नॉकआउट राउंड में उनके लिए काफी कठिनाई हुई थी अर्जेंटीना को, इंग्लैंड की टीम से भी बचना होगा।

0: बारे में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान अलन शीरर ने कहा कि अभी भी उसे वो दिन याद है, 28 years back, अर्जेंटीना के खिलाफ हार अभी तक हजम नहीं हुई है, it still hurts. अब शीरर का कहना है, we are so close, two wins away from immortality. अर्जेंटीना है सामने, it just adds more space. और इंग्लैंड के डिफेंडर मार्क ग्रेक ने कहा, अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन है, इसलिए दबाव प्रेशर उन पर है. प्रेशर किस पर होगा, कम से कम मॉरिशस में तो होगा जरूर, क्योंकि इंग्लैंड के यहाँ पर बहुत फैंस हैं. फ्रांस के फैंस निराश हो गए, अब इंग्लैंड की बारी. अर्जेंटीना को हराकर आगे जाएंगे या नहीं, ये आज रात पता चलेगा. 11 बजे 11 PM किक ऑफ, ये होगा एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले अप पर आप लोग लाइव देख पाएंगे. लेट्स ब्रिंग इट होम, इंग्लैंड के फैंस यही बोल रहे हैं. और अर्जेंटीना कह रहे हैं, मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप जीतेंगे जरूर. लेट्स वेट एंड वॉच.
1: इट वॉज द वर्ल्ड कप मैगजीन ऑन RM2 विद माइटी.
2: FIFA World Cup 2026, 11 June से 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: problème l'équerre, les baguettes les allées. Anchor Life, your heart, act now.
1: A good beat for your morning show.
2: Come on.
1: RM2.
3: Radio Musty.
4: चलो जी, अभी हमने बता ही दिया आपको हम खेल रहे हैं एंकर लाइव के साथ, और यहाँ पर आपको मिलेगा मौका टू विन अ गुडी बैग वर्थ 500 रुपीज़। और ये गुडी बैग किसको चाहिए, इसमें कप भी है, मिल्क भी है, तो जाहिर सी बात है आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, आपको चाहिए कि आप अपने दिल का ख्याल रखें एवरी सिंगल डे, ठीक है? एंड इट्स समथिंग दैट यू कैन डू फॉर योर हार्ट, समथिंग गुड एक्चुअली दैट यू कैन डू फॉर योर हार्ट। चलो, आपको मुझे बताना है कि एंकर लाइव का टैगलाइन क्या है। जी हाँ, एंकर लाइव का टैगलाइन क्या है, आपने सुन लिया होगा, आई गेस आपने सुन लिया होगा, याद है ना? तो चलो जल्दी से बताओ कि एंकर लाइफ का टैगलाइन क्या है। वेल, इट कंसर्न्स योर हार्ट, तो जल्दी करो बताओ कि इसका टैगलाइन क्या है ऑन 5491294 पूरे नाम पते के साथ।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट

0: दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: NBC Radio presents Wale RJ. NBC Radio पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: Don't miss it.

0: A good beat for your morning show.
1: अन्य सम खेल रहे अंकल लाइफ के साथ, आपके लिए सवाल था, हमें अंकल लाइफ का जो टैगलाइन है वो बताना था, एंड द राइट आंसर इज योर हार्ट, एक्ट नाउ। यहाँ पर लकी ड्रॉ के बाद किसका नाम आया है, चलिए ये भी जान लेते हैं कि विनर कौन है। So, यहाँ पर सही जवाब दिया है रेशमा रामदत्त जो रहती हैं बेलमो, कंग्रेचुलेशंस, आपने सही जवाब दिया है, आपको मिल रहा है एक गुडी बैग वर्थ 500 रुपीज, जिसमें है दो बॉक्सेस ऑफ एनकलाइव, एक 750 ग्राम का, एक 300 ग्राम का, और आपको मिल रहा है उसमें एक कप। सो थैंक यू सो मच, यस एनकलाइव फॉर योर हार्ट, एक्ट नाउ अभी, क्योंकि आपको अपने दिल का ख्याल रखना है, बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ योर हार्ट कैन स्टार्ट विद समथिंग सिंपल लाइक योर डेली ग्लास ऑफ मिल्क। एनकलाइव इज अ गुड न्यूट्रिशियस मिल्क specially designed to support balanced lifestyle with essential nutrients for your heart's well-being. Ye bhulna nahi. Aur isme plant-based omega-3 bhi hai which supports good cardiovascular health. So congratulations to you, Reshma ji. Bhuliye ga nahi apne ID card ke saath aapko MBC aakar apna ye goodie bag lekar jana hai Monday to Friday subah 9:30 se dopahar ke 3 baje ke beech apne ID card ke saath. Congratulations.
2: Problem leke li baguette le ali. Li kapav moi, li kapav toi, li kapav nous tous. Protège tous les cœurs aujourd'hui pour qu'ils dîment, tu pas à risque un bon problème de cœur. Allô, enjoy your life avec Anchor Life parce qu'il s'abondit les Anchor Life là et n'a stérol végétaux qui activement combattent mauvais cholestérol. En plus de te ban activité physique et que mange équilibré, sans oublier te bondit les Anchor Life, mais là, te prends soin tous les cœurs. Anchor Life, your heart, act now. Veuillez consulter votre professionnel de santé si besoin.

चलिए दोस्तों, इसके साथ हमारे भी जाने का समय हो रहा है, लेकिन चलते चलते भी आपको बता दूं, हमारे बाद भी आप बाकी के प्रोग्राम सुनेंगे मॉर्निंग मस्ती, एंड आपसे मुलाकात करेंगे अब हम कल थर्सडे मॉर्निंग 7 AM. भूलिएगा नहीं, अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय एंड टेक केयर.

0: समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी हैं आस्था, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते आस्था।
1: नमस्कार, 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब दूसरे सेमीफाइनल में आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। इस मुकाबले को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मॉरिशस में कल फ्रांस का राष्ट्र दिवस आधिकारिक रूप से मनाया गया, जहाँ फ्लोरियाल में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति धरम गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और कई गणमान्य अतिथि शामिल रहे। इस अवसर पर मॉरिशस और फ्रांस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। जॉन मेक माइटिंगेल की मौत से जुड़ी न्यायिक जांच के तहत बोबासा जेल का निरीक्षण किया गया। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को रोसेल जिला अदालत में होगी। और कल राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम

ने प्लास्टिक की बोतलों पर 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी को लेकर स्पष्टीकरण दिया। नई परियोजनाओं पर उन्होंने बात की, साथ ही इस क्षेत्र के लिए मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। विदेश स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में नए सैन्य हमलों और जवाबी कार्रवाई के बीच जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक तेल बाजार पर भी असर दिख रहा है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: Hey, good morning. स्वागत है आप सभी का. Yes, sir, कोई बात करे अबाउट कल का फुटबॉल मैच. पेन दिया कितना स्पेन ने. हालांकि बहुत सारे सपोर्टर्स हैं लेकिन यही मजा है ना फुटबॉल का. कुछ भी कहीं भी हो सकता है. और कहने की बात ये भी है कि ये जो एनर्जी है, ये जो वाइब्रेशन है, ये गेम है जो सबको एक साथ दिख रहा है, दिस इज द फन ऑफ इट. आज भी होगा कमाल. अर्जेंटीना इंग्लैंड, देखते हैं क्या कमाल होता है. बेलिंगम ऑन द रोड टू रिकवरी. अब वहां पर थोड़ी सी थरथरी, देखेंगे भाई क्या होगा. लेकिन जो भी होगा आपको सारी अपडेट यहां पर मिल ही जाएंगी. लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का 9:07. अरे क्या बात है, हम फिर से साथ साथ. थोड़ी साहब महीने के बिल्कुल मिडिल में पहुंच गए हैं. और बात करें अगर म्यूजिक की तो यहां पर हमेशा गाने तो चेंज होते रहते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप उनको प्यार से सुनते हैं और अपने यादों के खजाने को बुनते हैं. बताइए आपके साइड पर हाल चाल कैसे हैं, मौसम कितना औसम, ठंडी ठंडी हवा. सुबह सुबह निकलना, कहाँ पे पहुंचना, थोड़ा मुश्किल जरूर था ना, बट यू डिड इट. ऑल द बेस्ट. चलिए जहाँ साथ रहने वाले हैं टिल 12 PM.
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

मैसेजेस आने शुरू और यहाँ पर कितने हेलो जी मैं जाना बोल रही हूँ फ्लैग से और यहाँ पर सिल्विया यूवी कृषि एंड शिव सखन फैमिली के लिए अगला गाना जरूर गॉड ब्लेस एंड हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे अहेड जरूरी है मॉर्निंग में म्यूजिकल हो जाना सुरसाज आवाज आपके मैसेज भेजने का कमाल का अंदाज़

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: जैसा वक्त हो कि हम जान ले 15th of July के लिए आपकी राशियां शुरुआत करते हैं with
2: एरीज मेष राशि।
1: भाई आज एनर्जी फुल ऑन रहने वाली है। काम में नए आइडियाज को कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करो, अप्रिसिएशन मिल सकती है। रिलेशनशिप्स में पेशेंस रखोगे तो बात और स्ट्रॉन्ग होगी। हाथ के लिए काम जरूरी और जरूरी है हेल्थ के लिए थोड़ी सी हाइड्रेशन जरूरी। बस जोश जगाओ और जीत का परचम लहराओ।
2: टॉरस ऋषभ राशि।
1: भाई आपकी जो प्रैक्टिकल सोच है वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। फाइनेंशियल डिसीजंस में जल्दबाजी ना करें, सोच समझ कर कदम उठाएं। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम मूड को फ्रेश करेगा और छोटी छोटी खुशियों को भी पूरा आप इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही बड़ी बात बनाती है। मुस्कुराते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: कम्युनिकेशन आज आपकी सुपर पावर बनने वाली है। मीटिंग्स हो या दोस्तों से बात, आपकी बातें सबका दिल जीत सकती हैं। बस अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा दूर रहिए, आपके लिए अच्छा होगा। पॉजिटिव वाइब्स के साथ दिन को एंजॉय कीजिए और दिल से मुस्कुराओ, हर मौके को अपना बनाओ।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज इमोशंस और इंट्यूशन दोनों आपका साथ देंगे। हाँ, लेकिन साथ में आपको गाइड भी करेंगे। किसी अपने की एडवाइस काफी यूजफुल साबित हो सकती है। वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर रखेंगे तो आपके लिए सब कुछ आसानी से होता जाएगा। शाम के वक्त सुकून भरे पल आपको मिल सकते हैं। हौसला बढ़ाओ और खुशियों को गले लगाओ।
2: लियो सिंह राशि।
1: लियो, जो भी काम मिले उसको कर दियो। वैसे स्पॉटलाइट आपके नाम हो सकती है, बस

0: लीडरशिप स्किल्स दिखाने की जरूरत है। टीम वर्क से बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वो जो सिनर्जी होती है ना, उसको क्रिएट कीजिए। हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ हर चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, आगे बढ़ते जाओ।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: प्लानिंग डिसिप्लिन आज आपको हर सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाएगी। कुछ पेंडिंग काम होते हैं जिनको आप बाद के लिए रखते हैं, लेकिन अगर वक्त है तो क्यों ना इनको भी निपटा दें। हेल्थ रूटीन को इग्नोर मत कीजिए और स्ट्रेस को कम रखिए। सपने सजाओ, मंजिल के करीब पहुंच जाओ।
1: लीब्रा तुला राशि।
0: भाई आज जो बैलेंस है उसको बना के रखेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। रिलेशनशिप्स में प्यार और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। क्रिएटिव आइडियाज को इग्नोर मत कीजिए, ये आगे फायदा दे सकते हैं। हर डिसीजन दिल और दिमाग दोनों से लीजिए। प्यार लुटाओ, हर रिश्ते को महकाओ।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: डिटर्मिनेशन आज आपको हर मुश्किल से निकालने में मदद करेगी। सीक्रेट प्लान्स को फिलहाल अपने तक ही रखें, ज्यादा डिटेल शेयर मत कीजिए। ये भी करने वाला हूँ और वो भी, नहीं नहीं नहीं, जब तक वो कंस्ट्रक्टिव ना हो जाए, जब तक वो फिजिबली स्ट्रांग ना हो जाए तब तक। हाँ, फाइनेंशियल मैटर्स में स्मार्ट चॉइसेस फायदेमंद रहने वाली है। अपने इंस्टिंक्ट्स पर जरूर भरोसा कीजिए, इरादे मजबूत बनाओ और कामयाबी को अपनाओ।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: एडवेंचर एक्साइटमेंट जब दोनों मिलते हैं तो कमाल की फीलिंग आती है। नहीं, नए लोगों से मिलने और कुछ नया सीखने का अच्छा दिन है। करियर में एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी नजर आ सकती है, बस ओवर कॉन्फिडेंस इससे बच के रहिए। उड़ान भरो और सपनों को साकार करो।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: भाई आज मेहनत का रिवॉर्ड मिलने के योग बन रहे हैं। सीनियर्स आपके एफर्ट को नोटिस कर सकते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी स्मूथली हैंडल हो जाएगी, बस खुद के लिए भी थोड़ा वक्त जरूर निकालें। मेहनत दिखलाओ और सफलता को गले लगाओ।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज क्रिएटिविटी और इनोवेशन आपकी पहचान बन सकती है। किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया पर काम शुरू करने का सही वक्त है। फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम आपका मूड अपलिफ्ट करेगा। भाई रात को मैच है, देख लो कोई प्लान वैन बने तो। ऐसे ही कह रहा हूँ, मतलब अच्छा आपकी टीम नहीं है, फिर भी फुटबॉल फीवर। भाई पॉजिटिव सोच बना के रखें, जरूरी है। नई सोच को जगाओ, दुनिया को अपना बनाओ।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: आज दिल की आवाज सुनना फायदेमंद रहेगा। क्रिएटिव काम और हॉबीज में मन लगेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग पर थोड़ा फोकस करना फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। अपने इमोशंस को पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे तो काम भी फटाफट झटपट सरपट होता जाएगा। खुशियां लुटाओ और हर पल को यादगार बनाओ।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Hey, good morning. और बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें, मिट्टी की खुशबू और एक नई सुबह. ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं बल्कि खुद को रिचार्ज करने का भी परफेक्ट मौका है. भाई याद रखिए कि रेनी डेज में बॉडी थोड़ी स्लो फील जरूर करती है क्योंकि कम धूप और ठंडा मौसम एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट करते हैं. ऐसे में एक गरम चाय और कॉफी, हल्की सी स्ट्रेचिंग, 10 मिनट की वॉक और प्रोटीन से भरा ब्रेकफास्ट आपको दिन भर के लिए एक्टिव रखने में मदद कर सकता है. बारिश की ठंडक को महसूस करो, हिम्मत को दिल में भरो और हर नई सुबह एक नई शुरुआत करो.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

और उसके बाद ये हाथ तो छूटेगा नहीं, लेकिन ये भी सच है कि जिंदगी कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब कोई टेक्निकल बातें जरूर सामने आती है। बट एनीवेज, हम तो आपके साथ हैं हमेशा, एंड इट्स ऑल अबाउट दिल से प्यार करो।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलिए, बहुत सारे यहाँ पर मैसेजेस धीरे धीरे प्यार से आते जा रहे हैं. उनको कहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग एंड हेलो. कहते हैं कि बस मजा आ रहा है, स्टाइल जो है ना अलग, वो मजा आ रहा है. थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक विभा. वीरा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. एंड कहते हैं बस योद्धा अगर गाना चला दे तो भाई गॉड मेरे जो हस्बैंड हैं देव वो बड़े खुश हो जाएंगे. वीना जी, कोशिश हमारी जरूर रहेगी. और वहीं पर कहते हैं प्लीज़ एक और गाना अगर हो पाए तो. ये जो स्टाइल है ना, ये मज़ा आ रहा है जहाँ पर सडनली एक ईरा से दूसरा ईरा, हाँ कुछ ऐसे ही होता नहीं. वहीं पर ललिता जी, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग. एंड कहते हैं बस इन्जॉइंग द सॉन्ग्स, लेकिन साथ साथ में काम पर हूँ. अरे नमस्ते पूजा जी. और कहते हैं कि बस काम पर जैसे थोड़ी सी अकड़न, थोड़ी सी जकड़न, हाँ ये सर बात है. लगभग 45-60 मिनट के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, शोल्डर्स और नेक को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए और थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, क्यों नहीं. ऐसे होता है कि बॉडी की स्टिफनेस कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहती है और फोकस भी रिफ्रेश हो जाता है. साथ ही दिन भर का थोड़ा थोड़ा जो पानी का इंटेक है ना, वो बहुत मदद करता है. हाँ, इसको मत भूलना. तो डेस्क से उठना मत भूलना, हर ब्रेक को हेल्थ का टूल बनाओ. छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़ी फिटनेस की शुरुआत होते हैं. आगे बढ़ो, म्यूजिक सुनते रहो.
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: तो साहब ये जो रिश्ता है, जो म्यूजिक के साथ कनेक्शन है, वो बहुत ही कमाल का है, हम सब जानते हैं। वहीं पर जिंदगी की ऐसी दौलत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो रिश्ते होते हैं जो हर खुशी हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। और अगर हम बात मारें रिसर्च की, तो वही बताती है कि फैमिली और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना स्ट्रेस को कम करने, मूड को बेहतर बनाने और इमोशनल वेलबींग को मजबूत करने में मदद करता है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? अरे फैमिली नेटवर्क। तो रोज सिर्फ 10-15 मिनट बिना फोन के बातचीत, एक साथ कुछ वक्त साथ बिताना, खाना पीना या फिर आप बस अपनी बातें शेयर करते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं, भरोसा बढ़ता है। अपनों के लिए वक्त निकालिए, दिल से बात कीजिए और छोटी छोटी खुशियों को साथ मिलकर सेलिब्रेट कीजिए। फिर आपको लगेगा कि सब कुछ सही तो है, चाहे कुछ भी हो जाए, चैलेंजेस आ जाएं, लेकिन हम तो साथ साथ हैं, खड़े हैं, डटे हुए हैं चैलेंज को फेस करने के लिए, क्योंकि मजबूत रिश्ते ही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होते हैं।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: All right, morning time check, exactly 10 a.m.
6: मिलते हैं आशा से जानते इस घंटे के संक्षिप्त समाचार. नमस्कार.
7: नमस्कार. विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है. अब दूसरे सेमीफाइनल में आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने रहेंगे. इस मुकाबले को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है. मॉरिशस में कल फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस आधिकारिक रूप से मनाया गया. फ्लोरियाल में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति धर्म गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और कई गणमान्य अतिथि शामिल रहे. इस अवसर पर मॉरिशस और फ्रांस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया. जॉन मिक मॉर्टिंगेल की मौत से जुड़ी न्यायिक जांच के तहत बुबा सैंग केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया गया. मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को रोसिल जिला अदालत में होगी. राष्ट्रसभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने प्लास्टिक की बोतलों पर 2 रुपए के एक्साइज ड्यूटी को लेकर स्पष्टीकरण दिया. साथ ही इस क्षेत्र के लिए मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया. अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में नए सैन्य हमलों और जवाबी कार्रवाई के बीच जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है. इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर. वेजे रोड गुडलैंड्स में 66 साल की 66 ओल्ड की रत्नावली चलोबी की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें रत्ना के नाम से अधिक जानते थे. उनकी अर्थी आज दोपहर के 3 बजे उन्हें की बेटी के मकान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमोंग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.

0: सिंह।
1: वेलकम टू द सेकेंड आवर,
2: सुनते रहो
1: भैया मस्ट मॉर्निंग शो। ऐसे सा चलेगा 12:10:06 टू ऑल द वंस जो ऐसे मौसम में बिल्कुल तैयार हैं, कुछ और करने के लिए बेकरार हैं, क्यूरियोसिटी है जिंदगी अंदर, एक भूख है कुछ पाने की, लगे रहो।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है

0: हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वंदे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस,
1: डोंट मिस इट।
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट।
3: टक टक बॉलीवुड।

0: Welcome to RM2.
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
2: ऐसा दिन हो, रात हो, गर्मी हो, बरसात हो, बस फैशन का साथ हो तो क्या बात हो। काफी बार मुश्किल होता है सोचना, लेकिन आज मौसम है कूल कूल, हल्की सी बारिश और फैशन भी स्टाइलिश और प्रैक्टिकल होना चाहिए, नहीं बहुत जरूरी है। सो रेडी फॉर द एडवेंचर, रेन हो या शाइन, म्यूजिक ऐसा कि मूड को कर दे जस्ट फाइन। भाई आज का स्टाइल मंत्रा है वो है लेयरिंग, यानी एक लाइट डेनिम जैकेट, एक डेनिम जैकेट फेडेड हो, सन ब्लास्टिंग हुई हो, नाइस, या फिर श्रग, कंफर्टेबल जीन्स, या फिर कागोज, या फिर ब्रीदेबल कॉटन टी शर्ट, परफेक्ट रहेगा। फुटवेयर में वाटर प्रूफ स्नीकर्स या क्लोज टू शोज पहनिए, क्योंकि पडल्स भी ना स्टाइल्स को स्पॉयल ना कर पाए। और हाँ, एक कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला या फिर ब्राइट कलर्ड स्कार्फ या स्टोल आप पहन सकते हैं, ये बॉलीवुड वाला चार्म आप में ऐड करेगा। सो बस हमारे बॉलीवुड स्टाइल की तरह रहे, कूल कूल कॉन्फिडेंट और वेदर रेडी रहिए, क्योंकि असली स्टाइल वही है जो हर मौसम में साथ निभाए।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: 2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। RM2
1: Radio Musti।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: और दिस वाज न्यू ऑन द ब्लॉक एंड ऐसे गाने सुनने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो जाता है नहीं तो चलिए ऐसे करते हैं गार्डन में ही चलते हैं. एक्चुअली न्यूरो साइंस कहती है कि आपकी जो ब्रेन है कि उसकी जो एज है वो बेटर हो जाता है व्हेन यू गेट इनटू गार्डनिंग. गार्डनिंग को एसोसिएट किया जाता है लोअर स्ट्रेस बेटर मूड एंड फिजिकल एक्टिविटी के साथ. अब कहते हैं कि इसमें एक और लेयर है. वैसे कहते हैं टाइम आप स्पेंड करते हैं ना गार्डन में वो आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. यस एज वी एज न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि ब्रेन ऐसा ऑर्गन है जो कि चैलेंज पर थ्राइव करता है. लर्निंग न्यू स्किल्स सॉल्विंग एवरीडे प्रॉब्लम्स वो स्ट्रेंथन करता है आपके न्यूरल कनेक्शंस को और गार्डनिंग ये बहुत नेचुरली इस प्रोसेस में जुड़ जाती है. जैसे कहते हैं कि आप जाते हैं प्लानिंग करते हैं कि अच्छा मेरा जो पेड़ है वो ऐसे होने चाहिए या फिर उनको साफ सफाई या फिर आप वीड्स हटा रहे हैं जो भी कहानी है आप ये सोचेंगे कि बहुत फर्क पड़ जाता है. और कहते हैं कि जो रेपिटेटिव मोशंस हैं जो प्लांटिंग के वाटरिंग के प्रूनिंग के या सिंपली ऑब्जर्व करना ग्रीनरी को इनकरेज करता है ब्रेन को शिफ्ट करने के लिए कॉन्स्टेंट जो मेंटल ओवरलोड है ना उससे मल्टीटास्किंग आती है. और जैसे क्रॉसवर्ड पजल्स हैं मेमोरी गेम्स गार्डनिंग ब्रेन को बहुत सारे स्किल्स एक साथ यूज करने के लिए कहता है. बस आप प्लान करते हैं थोड़ा सा डिसीजंस लेते हैं और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं रूटीन्स को ऐड करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं अपने मूवमेंट्स की. हाँ फिर से अगले हफ्ते आकर ये करना है तो दिमाग हमेशा मोशन में रहता है. एक बालकनी में हर्ब्स लगा लीजिए या फिर फ्लावरिंग पॉट्स एक विंडो के पास ये भी बहुत कमाल कर सकता है अगर आपके पास बैकयार्ड या गार्डन नहीं है तो. और ये मेडिकल केयर को तो नहीं रिप्लेस कर सकता एक्सरसाइज या स्लीप को या हेल्दी डाइट को लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है इंक्रीजिंगली इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ते रहे हैं. सो क्यों ना आज से ही कुछ शुरू किया जाए. चलिए चलेंगे कुछ वेजिटेबल पील्स का इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी देर में आगे.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio.

सुनते रहो। इसी गाने के साथ सीधा पहुंचे 11 बजे के समाचारों की ओर। हो सुनते रहो।

0: सुनिए भाई आसान से मिलते हैं जानते इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार
1: नमस्कार 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। जॉन माइक मॉटिंगेल की मौत से जुड़े न्यायिक जांच के तहत बोबासा केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया गया। जिला मजिस्ट्रेट डेनी विलियन और डीपीपी के प्रतिनिधियों ने उस सेल का दौरा किया जहां 8 सितंबर 2024 को जॉन माइक मॉटिंगेल की मौत हुई थी। इसके अलावा मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण स्थानों जिनमें कंट्रोल रूम भी शामिल हैं का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि जॉन माइक मॉटिंगेल को 29 अक्टूबर 2022 को एसएसओ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। एक यूक्रेनी यात्री ने उसे उस व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान की थी जिसने उसे 44 मिलियन रुपए से अधिक मूल्य के ड्रग्स से भरे दो बोतलें दी थी। मॉरिशस में कल फ्रांस का राष्ट्र दिवस आधिकारिक रूप से मनाया गया। इस अवसर पर फ्लोरियाल स्थित फ्रांस के राजदूत के सरकारी निवास पर एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इनमें राष्ट्रपति धर्म गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, सरकार के सदस्य, राजनयिक समुदाय तथा मॉरिशस में रह रहे फ्रांसीसी समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अपने संबोधन में फ्रांस के राजदूत फ्रेडेरिक बोंटन ने मॉरिशस और फ्रांस के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मॉरिशस यात्रा और इस वर्ष फ्रांस अफ्रीका समिट में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की भागीदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिली है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री को 10 और 11 नवंबर को फ्रांस में आयोजित होने वाले पेरिस से पीस फोरम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यातायात को सुगम बनाने और जाम कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई कड़ी सड़क परियोजनाओं में से एक पेलखेंट्रियानो लिंक रोड का आज सुबह 11:30 बजे उद्घाटन किया जाने वाला है। राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश इस नई सड़क का उद्घाटन करेंगे। इससे सेंट जॉर्ज एम1 मोटरवे पर यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद। इसके बाद मंत्री फिको फ्लाक बाईपास परियोजना का भी निरीक्षण करेंगे। विश्व कप फाइनल का टिकट अब स्पेन के नाम हो गया है। डालास में खेले गए सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर शानदार अंदाज में अपनी दावेदारी पेश की। पूरे मुकाबले में स्पेन ने गेंद पर शानदार नियंत्रण बनाए रखा। मजबूत रक्षा और तेज आक्रमण के दम पर फ्रांस को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। अब सबकी नजरें फाइनल पर टिकी हुई हैं जहां स्पेन विश्व चैंपियन बनने से सिर्फ एक जीत दूर है। तो विश्व कप के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर उत्साह चरम पर। फुटबॉल प्रेमी इस बहुप्रतीक्षित

0: मुकाबले का आज बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं विदेश की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं उनमें स्पेन के दक्षिणी क्षेत्र में भीषण जंगल की आग ने भारी तबाही मचाई हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: लव प्यार मोहब्बत कहते हैं कि इससे जिंदगी बहुत आराम से चलती है। एक लुब्रिकेशन है, यानी कि मशीन चलती जाएगी लेकिन जब तक लुब्रिकेशन नहीं होगी तो सही एक्शन में नहीं आएगी। हेलो
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: चलिए सबकी नजरें आज के मैच पर, अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में, और बहुत सारे लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। अब इंग्लिश फुटबॉल देखते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा ये भी देखना भी बाकी है। किसको पता था कि फ्रांस एक भी गोल नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसे ही हुआ। ये है फुटबॉल की दुनिया, रियलिटी की दुनिया, और यहाँ पर हम एक ड्रीमी वर्ल्ड में भी हैं, यानी कि बॉलीवुड के वर्ल्ड में, जहाँ पर कहानियाँ बनती हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, कमाल की लोकेशंस, डायरेक्शंस, प्रोडक्शंस, मतलब बात होती है उनकी फीस की। और वहीं पर कई लोग ये कहते हैं कि यार इस मूवी में तो अक्षय कुमार ने डबल रोल किया है, क्या उसने डबल पैसा लिया होगा? इतनी डिटेल में नहीं जाते भाई। एनीवेज नाइस नो, अरे हम बताएंगे और कुछ मूवीज के बारे में, बीटा ऑन एंड ऑफकोर्स हम बात करेंगे आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में। आपको बताएं कि आपका जो सर है, वो जो ह्यूमन हेड है, वो लगभग 4.5 से 5.5 किलो लगभग, हाँ वहीं पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में आपकी नेक कितना वेट लेती है ये बताऊंगा थोड़ी देर में। साथ में बात करेंगे गार्डनिंग की, बात करें आपके मैसेजेस की, सब कुछ है यहाँ संगीत का जहाँ।
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
2: लेकिन साहब, जहाँ पर हम बात करते हैं कि स्मार्टफोन या फिर स्क्रीन के साथ जुड़े रहना इतने घंटे कितना हानिकारक हो सकता है, वहीं पर काफी लोग ये नहीं समझते कि जब आप अपने फोन को यूज करते हैं तो आपकी नेक का एक एंगल होता है जो कि कॉन्स्टेंट रहता है और कितने घंटे रहता है। सोचा इस बारे में कभी नहीं? इसको कहते हैं टेक्स्ट नेक, यानी कि जो लोड होता है आपके सर्वाइकल स्पाइन पर जब आप अपने हेड को टिल्ट करते हैं फॉरवर्ड, उसकी एक्चुअल फोर्स वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। यार नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिर भी अगर हम एक वाइडली यूज एक इलस्ट्रेशन की बात करें तो मेरे सामने और वो बता रही कि देखिए, जब 0 degrees पर है तो आपकी नेक पर रहता है 4.5 या 5.5 किलो जो कि वेट है ह्यूमन हेड का अप्रॉक्सीमेटली, और अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ आपको। 15 डिग्रीज का एंगल जब आप आगे होते हैं यानी कि टिल्ट करते हैं अपनी नेक को 15 डिग्रीज पर, आपकी नेक जो लोड लेती है वो है 12 किलो।

12 किलो, उसके बाद 30 डिग्रीज पर लेती है 18 किलोज, 45 डिग्रीज पर ये लोड लेती है 22 किलोज एंड 60 डिग्रीज पर 27 किलोज। तो अब सोच लीजिए अगली बारी आप अपना स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप किस एंगल पर हैं। दोस्तों स्मार्टफोन चलाते वक्त सिर्फ स्क्रीन ही मत देखिए, अपनी नेक का एंगल भी देखिए, उसका ख्याल रखिए। सीधा देखने पर हमारा असर लगभग 5 किलो का लोड लेता है, लेकिन जैसे जैसे आपको बताया कि डिग्री चेंज होती है वहीं पर वेट भी। इसलिए फ़ोन को आँखों के लेवल के करीब रखिए, हर 20-30 मिनट बाद नेक को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा सा मूव कीजिए लेफ्ट एंड राइट, और थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से नज़र हटाइए। छोटी सी आदत बड़ी राहत। हाँ ये याद रखना, फोन उठाओ लेकिन गर्दन मत झुकाओ, सुनते रहो। म्यूजिक थेरेपी आरएम टू पर। आप और मैं

0: हाँ वैसे ठंड के मौसम में जहाँ पर दिन छोटे रातें जब लंबी हो जाती हैं तो गाने बिल्कुल फिट होते हैं ना। चलिए हाँ वो गार्डन की तरफ बात करते हैं ना कि कैसे वेजिटेबल पील्स को भी आप यूज कर सकते हैं।
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: भाई नॉर्मल सी बात है कि जब हम बात करते हैं किचन की तो वहाँ पर पोटेटो की स्किन, कैरेट की पील्स, क्यूकम्बर का स्किन, अनियन पील्स, लेकिन ये सब रिच है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर और फिर कंट्रीब्यूट करते हैं कि सॉइल को आप एनरिच कर पाए डीकम्पोज करके। वैसे ये सच बात है कि अगर हम सीधा ऐसे ही डाल देते हैं वेजीज को तो फिर उससे आ सकते हैं कुछ छोटे छोटे रिपेलेंट्स, यानी कि जिनको आप पसंद नहीं करते उन्हीं की बात करो। हाँ नॉट गुड एट ऑल, पेस्ट हो या फिर वो जो प्रोसेस होने डीके की वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाती है। बहुत आसान होता है, बहुत आसान जब आप कंपोस्ट बिन का इस्तेमाल करते हैं और जब वेजिटेबल पीस को ऐड करते हैं उसके अंदर तो फिर ड्राई लीव्स डाल सकते हैं, पेपर ग्रास या फिर बाकी सब चीज़ें, तो ये धीरे धीरे फर्टिलाइजर बन जाती है और ये फर्टिलाइजर आपके सॉइल को एनरिच करता है, बैक्टीरिया को फीड करता है और डिलीवर करता है ऑर्गेनिक मैटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए और हाउस प्लांट्स के लिए। और जब आप पील्स को छोटे छोटे पीस में काटते हैं तो डीकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है ना, हाँ वो बेहतर हो जाती है। हाँ ये कंपोस्ट जो बनता है ना उसके साथ में अगर लिक्विड भी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बस लिक्विड को एक फर्टिलाइजर के तौर पर ये एक्स्ट्रा नरिशमेंट है। और एक और तरीका है वेजिटेबल गार्डन्स को ड्राई करने का, पील्स को साफ करने का, और सन के अंदर उनको लो टेम्परेचर पर या फिर ओवन में भी लोग इसको करते हैं और फिर इसको एक पाउडर बनाकर डाल देते हैं गार्डन बेड्स में, पॉटिंग सॉइल के अंदर। ये भी कमाल है। बस आप सोचिए कि इतनी सारी चीज़ें जो हम बस ऐसी फेंक देते हैं सोचकर कि इसका तो इस्तेमाल नहीं होगा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं, कुछ नए स्किल्स हम रेडी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक गार्डन हो और वो पॉट्स भी हैं, उसमें क्यों ना कुछ कमाल किया जाए, अपनी गार्डनिंग की कला को दिखाया जाए।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.

आइए सुनते हैं एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जनता को यह सूचित करना चाहता है कि कल यानी कि गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सर अनिरुद्ध जगन्नाथ साज हॉस्पिटल फ्लैक में सुबह 10 बजे से दोपहर 4:30 बजे के बीच में बिजली की कटौती लाई जाएगी। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंटरवेंशन के तहत किया जा रहा है जिसके चलते उस समय बिजली नहीं मिलेगी। चूंकि इस मेंटेनेंस के दौरान डीजल जनरेटर से केवल सीमित बिजली उपलब्ध होगी तो इससे सामान्य हॉस्पिटल सेवाएं अवश्य प्रभावित होंगी, लेकिन रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी डिपार्टमेंट्स के लिए ये सेवाएं उस दौरान केवल इमरजेंसी के लिए उपलब्ध होंगी। बिजली की कटौती इसके चलते जो भी असुविधा हो रही है उसके चलते स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय क्षमा प्रार्थी है और आपकी सहयोग की आशा करती है।

0: माहौल, शादीवादी का माहौल. Yes, many people getting married. So all the best and many congratulations for the whole RM2 team. Ladies and gentlemen, music में थोड़ा सा चेंज, क्योंकि मौसम भी सेम नहीं रहता. जो बदलता है वही चलता है. मैं चलता हूँ अभी फिलहाल. आर्यन निर्मणी.
1: Set

0: to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: दिन के 12 बजे हैं. जी सुंदर संक्षिप्त समाचार आपसे आस्था नमस्कार.
6: नमस्कार. 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. जून महीने में मॉरीशस आने वाली पर्यटकों की संख्या में 8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि पर्यटन जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया का कहना है कि इससे चिंता की जरूरत नहीं है. उनके अनुसार जनवरी से जून महीने तक कुल पर्यटकों की संख्या में 1.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो ये दर्शाती है कि मॉरीशस की मांग अब भी मजबूत बनी हुई है. उनका मानना है कि जून महीने की गिरावट के पीछे मुख्य कारण फीफा वर्ल्ड कप और मध्य पूर्व में जारी संघर्ष है, जिनका असर पर्यटन सेक्टर पर पड़ा है. बात करते हैं मूल ढांचा के बारे में. यातायात को सुगम बनाने और जाम कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई कई सड़क परियोजनाओं में से एक पिल ग्रैंथियानो लिंक रोड का उद्घाटन आज किया जा रहा है. राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश इस नई सड़क का उद्घाटन करने वाले हैं. इससे सैंजों और M1 मोटरवे पर यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है. इसके बाद मंत्री फिकोफ्लैक बाईपास परियोजना का भी निरीक्षण करने वाले हैं. लगभग 4.8 किलोमीटर लंबी ये सड़क जावियो को पीएफओ से जोड़ेगी. इसमें कस्कावेल और बुसोंज के बीच पाल्मा रोड B2 तक एक नया मार्ग भी शामिल होगा. इस सड़क परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1 बिलियन रुपए की बताई जाती है. विश्व कप फाइनल का टिकट अब स्पेन के नाम हो गया है. डालास में खेले गए सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर शानदार अंदाज में अपनी दावेदारी पेश की. पूरे मुकाबले में स्पेन ने गेंद पर शानदार नियंत्रण बनाए रखा. मजबूत रक्षा और तेज आक्रमण के दम पर फ्रांस को वापसी का कोई मौका नहीं दिया. अब सबकी नजरें फाइनल पर टिकी हुई हैं, जहां स्पेन विश्व चैंपियन बनने से सिर्फ एक जीत दूर है. तो विश्व कप के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर उत्साह चरम पर. फुटबॉल प्रेमी इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी की अपील अदालत में आज लंदन में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी. ब्रिटेन की लेबर सरकार ने 31 मार्च के उस फैसले को रद्द करने की अपील की है, जिसमें मिसले मोंदारें सहित 6 शगोसियन को पेरिस बानोस में रहने की अनुमति दी गई थी. ये सभी 16 फरवरी को इल जिक्वें पहुंचे थे. ब्रिटेन का कहना है कि उन्हें वहां स्थायी रूप से रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं. वहीं संबंधित शगोसियन का कहना है कि ये फैसला उनके पैतृक द्वीपों पर लौटने के अधिकार की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. ये सुनवाई सार्वजनिक होगी और मॉरीशस के समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगी. विदेश स्तर पर स्पेन के दक्षिणी क्षेत्र में लगी भीषण जंगल की आग ने भारी तबाही मचाई है. हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 7 ब्रिटिश नागरिक शामिल हैं. तेजी से फैली आग के कारण लगभग 2,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर.

0: महंत कबीर एवेन्यू बंटिया वाकुआ में 85 साल के 85 साल के देवव्रत सुगुन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें मानान के नाम से अधिक जानते थे और वे पहले डिसिप्लिन हेड मास्टर रह चुके हैं। उनकी अर्थी आज शाम के 4 बजे उनकी पत्नी इंदिरा सुगुन के मकान बंतिया वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Retro Rhythm.
3: RM2.

0: Retro Rhythm. Yes, रेट्रो के गोल्डन हिट्स लेकर आ गई है नमनी आपके रेट्रो रिदम में. गुड आफ्टरनून, नमस्कार. साथ रहने वाली हूँ 2 बजे तक आपके आरएमजी रेडियो मस्ती पर, जहाँ पर आपके लिए रेट्रो वाइब्स ऑन गोइंग होंगे. आप बस कनेक्टेड रहिएगा. 5499124 पर आपके मैसेजेस डेडिकेशंस का भी इंतजार है. अभी के लिए वापस ले चलते हैं आपको रेट्रो की दुनिया में.
1: रेट्रो रिदम
2: आरएमजी रेडियो मस्ती.

Retro Rhythm. जी हाँ, आप कनेक्टेड हो चुके हो अपने रेट्रो रिदम के साथ. एंड यस, हमारे प्यारे लिसनर्स का भी मैसेजेस आ रहे हैं, झट से मिल रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़ों की तरह. आप है जना जी, आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो मस्ती के गानों को और मांग रहे हैं अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए रीमा, जनिता, शेष्ठा, अंशिनी, सिल्विया के लिए गाना विदाउट फॉरगेटिंग क्रिश्चियन सी सरन फैमिली. फिया जी भी गाना मांग रही है. एंड वाकवा से वी हैव विश्वानी जी. गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? तो आप गीत मांग रहे हैं अपनी बेटियों के लिए जिनके नाम है इंदिरा, शारदा और अपनी सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता गजधर के लिए. तो हो जाए आप सभी लोगों के लिए प्यारा सा गाना किशोर जी की आवाज़ में, खास आपके लिए इस वेंसडे आफ्टरनून पर. रेडियो मस्ती.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट Radio Masti, your number one.

रेडियो मस्ती। आइए सुनते हैं एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जनता को यह सूचित करना चाहता है कि कल गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सह निरुद्ध जगन्नाथ साज हॉस्पिटल फ्लैक में सुबह 10 से दोपहर 4:30 बजे के बीच एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंटरवेंशन के दौरान बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। चूंकि इस मेंटेनेंस के दौरान डीजल जनरेटर से केवल सीमित बिजली उपलब्ध होगी तो इससे सामान्य हॉस्पिटल सेवाएं अवश्य प्रभावित होंगी, लेकिन रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी डिपार्टमेंट्स के लिए ये सेवाएं उस दौरान केवल इमरजेंसी के लिए उपलब्ध होंगी। बिजली की सप्लाई में कटौती से उत्पन्न कोई भी असुविधा के लिए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय क्षमा प्रार्थी है और आपके सहयोग की आशा करती है।

0: रेट्रो रिदम।
1: आप जो मिल गए हो ऐसा लगता है कि सारा जहां मिल गया। यस, द रेट्रो रिदम का सफर जारी है विद नलमणि। आई होप कि आप गानों को एंजॉय कर रहे हो और एक प्यारी सी फ्लैशबैक भी आ गई होगी बैक टू द मेमोरी लेन। एंड आपकी उसी यादों को ताज़ा करने के लिए रेट्रो वाइब्स ऑन गोइंग है। तो वापस डाइव करते हैं उसी जमाने में जहाँ आशा जी ने सैया दिल में आना री मूवी में एक स्पेशल गाना क्रिएट किया था

0: इतनी प्यारी सी आवाज के साथ है। तो ये गाना करते हैं आप सभी सुनने वालों के नाम। इट्स योर आरएमजू रेडियो मस्ती।
1: आरएमजू रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।

0: Tak, tak, Bollywood.
1: Radio Musty.
2: Welcome to RM2
3: Radio Musty.
4: North, South,
3: 103.5,
4: East, West,
3: 96.4,
4: Center,
3: 99.4.
2: RM2 Radio Musty.
3: Radio Musty.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty.
5: Good afternoon, it's 1 p.m. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे विधिमा नमस्कार
6: नमस्कार निर्मणि सभी सुनने वालों को नमस्कार जून महीने में पर्यटकों के 89,989 आगमन पिछले साल के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे जून 2025 में 97,000 से अधिक पर्यटक आए थे इसका अर्थ ये है कि 8% से अधिक की एक महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है लेकिन पर्यटन मंत्रालय के जूनियर मंत्री सिडनी पिया इस स्थिति को इतने नकारात्मक नजरिए से नहीं देखते हैं खासकर इसलिए क्योंकि इस साल जनवरी से जून तक कुल मिलाकर पर्यटकों के आगमन में 1.5% की वृद्धि हुई है सिडनी पिया के अनुसार मॉरिशस के लिए मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है उन्होंने पिछले महीने के इस कमजोर प्रदर्शन का श्रेय दो ऐसे कारकों को दिया है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं विश्व कप और मध्य पूर्व का संघर्ष एक ऐसा संघर्ष जो फिलहाल रुकता हुआ नहीं दिख रहा है और उनके अनुसार पर्यटन क्षेत्र को इसके लिए तैयार रहना चाहिए सिडनी पिया ने यह भी बताया कि मॉरिशस के लिए इथियोपियन एयरलाइंस की उड़ानें यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट के संदर्भ में तय की गई थी ये समझौता फिलहाल सितंबर महीने तक के लिए है लेकिन उनके अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे आगे बढ़ाया जाएगा आज की मुख्य खबरों में से एक ये है फ्रांस की टीम विश्व कप से बाहर हो गई है कल रात खेले गए मुकाबले में उसे स्पेन के हाथों 2-0 से हार का सामना करना पड़ा फ्रांस की टीम अपने राष्ट्र दिवस यानी 14 जुलाई के ही दिन टूर्नामेंट से बाहर हो गई इसी दिन मॉरिशस में स्थित फ्रांसीसी दूतावास द्वारा हर साल की तरह बास्टिल डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कर इस ऐतिहासिक दिन को याद किया गया कल रात फ्लोरियाल स्थित अपने आवास पर एक स्वागत भोज के साथ राजदूत फ्रेडेरिक बोंटन ने इस अवसर को यादगार बनाया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इसमें उपस्थित थे अपने संबोधन में फ्रेडेरिक बोंटन ने अपने देश और मॉरिशस के बीच के उत्कृष्ट संबंधों की सराहना की उन्होंने प्रधानमंत्री को 10 और 11 नवंबर को होने वाले पेरिस पीस फोरम में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया आज की अन्य मुख्य खबर ये है कि लंदन में ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी की अपील अदालत आज बुधवार को एक निर्णायक सुनवाई करेगी ब्रिटिश लेबर सरकार 31 मार्च को दिए गए उस फैसले को रद्द करने की मांग कर रही है जिसने मिस लेमोदाहें सहित 6 शागोस निवासियों को शागोस द्वीप समूह के पेरोसबानुस में रहने की अनुमति दी थी वे पिछले 16 फरवरी को इल्जुक्वें पर पहुंचे थे सरकार का मानना है कि उनके पास स्थायी रूप से का कोई कानूनी अधिकार नहीं है वहीं दूसरी ओर संबंधित शागोस निवासी इस फैसले का बचाव कर रहे हैं जिससे वे अपनी पैतृक भूमि पर लौटने के अधिकार के लिए जारी संघर्ष में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानते हैं ये सार्वजनिक सुनवाई मॉरिशस के समय अनुसार दिन के 1:30 बजे शुरू होगी और विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान बातचीत के लिए वापस नहीं आता है तो वे अगले सप्ताह ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों पर हमला करेंगे ट्रंप ने पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली सभी मालवाहक शिपिंग पर 20% शुल्क लगाने की धमकी को वापस ले लिया लेकिन ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी फिर से शुरू कर दी है तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए थोड़ी देर में शोक समाचार महंत कबीर एवेन्यू बंतेवा क्वामे 85 साल के 85 years old के श्री देवव्रत सगन जो मानन नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है वे पहले डिसिप्लिन हेडमास्टर थे उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनकी पत्नी श्रीमती इंदिरा सगन के घर महत कबीर एवेन्यू बंतेवाक्वा से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन विस आफ्टरनून एट 4 PM शोक में डूबे इस परिवार के

0: प्रति हमारी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: एक बजकर 9 मिनट होने को है एंड आप कनेक्टेड हो चुके हैं रेट्रो रिदम के साथ। एंड आज 15 जुलाई है और हम मना रहे हैं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे और सोशल मीडिया गिविंग डे। दोस्तों, हर नई स्किल आपको एक नई अपॉर्चुनिटी की ओर करीब ले जाती है, चाहे वो सिंगिंग हो, कोडिंग हो, कुकिंग

या फिर कम्युनिकेशन, सीखना आपको कभी मत छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्किल्स ही आपकी असली पहचान है और वही ताकत बनती है। और बात करें सोशल मीडिया गिविंग डे की, तो आज सिर्फ लाइक्स और शेयर्स ही नहीं बल्कि पॉजिटिविटी भी शेयर कीजिए। वो हो सकता है किसी का काम अप्रिशिएट करने में, एनकरेज करने में कमेंट के जरिए, या किसी छोटे बिजनेस को सपोर्ट कीजिए, या फिर किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए अवेयरनेस फैलाइए। आज का मैसेज सिंपल है, एक नई स्किल सीखिए और एक अच्छा काम ऑनलाइन ज़रूर कीजिए, क्योंकि छोटी एफर्ट्स भी किसी की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला सकती है। तो अभी के लिए रेट्रो वाइब्स को जारी रखते हैं, 2 बजे तक नीलमणि आपके साथ में ही है। तो अपने डेडिकेशन मैसेजेस भेजना, डू नॉट फॉरगेट।

0: रेट्रो रिदम
1: होली होली ही चल रही है रेट्रो रिदम में आपके लिए बेस्ट सॉन्ग्स ला रहे हैं ताकि आप रिलैक्स कर सको इस वेंसडे आफ्टरनून पर। कहीं जगहों पर मौसम सुहाना है और कहीं पर बारिश हो रही है, तो जहाँ पर है उसी का मजा लेते हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ। एंड वी हैव मनीषा जी जो सुन रहे हैं RM2 रेडियो को, और आज है आपकी प्यारी दोस्त स्वस्ति का बर्थडे। स्पेशल गाना मांग रहे हैं उनके लिए उसके दोस्त मन नश्ता और करुणा जी की तरफ से। हैप्पी बर्थडे टू यू मनीषा जी एंड टू ऑल दोस्त जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू।

रेट्रो रिदम आपके साथ हो तो दिल हमेशा गुरी गुड फील ही करता है. आपको आती है वही फीलिंग? वेल, हमारे बड़ी ने कंफर्म कर लिया है एंड वो है यालेश और वो खूब एंजॉय कर रहे हैं रेडियो को एंड रेट्रो रिदम के इस प्यारे से शो को. शातो बिना गैस से वी हैव ज्योति जी, गाना आशनी, रेखा सुरेखा, माधव फैमिली के लिए डेडिकेट कर रहे हैं. बॉम्बू से दो लोग कनेक्टेड हैं, आप है रेखा जी और विदेशी जी. गुड आफ्टरनून. साधना जी भी अभी किचन में हैं और वो प्रिपेयर कर रहे हैं गर्मा गर्म बुलेट और हबी के लिए चलाना चाहते हैं एक प्यारा सा गाना. और भी मैसेजेस आ रहे हैं. सुया जी कुंगुमा से जुड़ी हुई है, फैमिली के लिए, पति बलदेव के लिए, मम्मी शारदा, दीदी अनीता के लिए गाना मांग रहे हैं और कैथोबोन से अनिश्ता जी मांग रहे हैं गाना. तो हो जाए फॉर यू स्पेशल पीपल और एक रेट्रो गाना इस बार एनर्जेटिक तरीके में.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: आइए सुनते हैं एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जनता को यह सूचित करना चाहता है कि कल गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सह निरुज जगन्नाथ साज हॉस्पिटल फ्लैक में सुबह 10 से दोपहर 4:30 बजे के बीच एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंटरवेंशन के दौरान बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। चूंकि इस मेंटेनेंस के दौरान डीजल जनरेटर से केवल सीमित बिजली उपलब्ध होगी तो इससे सामान्य हॉस्पिटल सेवाएं अवश्य प्रभावित होंगी, लेकिन रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी डिपार्टमेंट्स के लिए ये सेवाएं उस दौरान केवल इमरजेंसी के लिए उपलब्ध होंगी। बिजली की सप्लाई में कटौती से उत्पन्न कोई भी असुविधा के लिए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय क्षमा प्रार्थी है और आपके सहयोग की आशा करती है।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

oxygen. Retro rhythm. सफर में तो हम साथ साथ हैं और आपके कुछ आखिरी मैसेजेस पढ़ लेते हैं। गीता जी को बड़ा सा हेलो, जेनिफर जी भी साथ ही दे रही है। इंसेशन मेल फॉर साइड से अनुषा जी अपने दोस्त के लिए गाना मांग रहे हैं, स्पेशल वाला, क्योंकि आज है उनके दोस्त पूनम उबिलक जी का बर्थडे। एंड बेस्ट विशेज आपकी बेटी येशना की तरफ से, हर्षा, बेटी साहिल, कुशल और फ्रेंड अनुषा, चाचा अनिल, दादी मीला और आपके बॉस ऋषि जो सुपर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए प्यारा सा गाना मांग रहे हैं। एंड हमारे साथ कनेक्टेड और भी लोग हैं, एंड आपका नाम आपने नहीं लिखा है लेकिन आपके दोस्त का भी बर्थडे है आज और उनके लिए गाना चलाना चाहते हैं। मरियम अमीना की तरफ से और रेशमा जी की तरफ से, तो हो जाए आप स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल गाना।

0: मस्ती। दोपहर के 2 बजे है। चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे विधिमान नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को नमस्कार। जून में मॉरिशस में 89,989 पर्यटक पहुंचे, जो जून 2025 की तुलना में 8% से अधिक की गिरावट है। हालांकि जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया ने कहा कि स्थिति चिंताजनक नहीं है, क्योंकि जनवरी से जून 2026 के दौरान कुल पर्यटक आगमन में 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। उनके अनुसार विश्व कप और मध्य पूर्व के संघर्ष ने जून के आंकड़ों को प्रभावित किया, जबकि मॉरिशस की पर्यटन मांग अब भी मजबूत बनी हुई है। उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि इथियोपियन एयरलाइंस के अतिरिक्त उड़ानों का समझौता सितंबर के बाद भी जारी रहेगा। फ्रांस की फुटबॉल टीम 14 जुलाई अपने राष्ट्रीय दिवस पर स्पेन से 2-0 की हार के साथ विश्व कप से बाहर हो गई। वहीं मॉरिशस में बास्टिल डे के अवसर पर फ्रांसीसी राजदूत फ्रेडेरिक मोंटान ने फ्लोरियाल स्थित अपने आवास पर स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हुए। राजदूत ने दोनों देशों के मजबूत संबंधों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री को 10 और 11 नवंबर को होने वाले पेरिस पीस फोरम में आमंत्रित किया। अटलांटा में अर्जेंटीना का सामना आखिरकार विश्व कप में इंग्लैंड से होगा। एक तरफ मौजूदा विश्व चैंपियन है, तो दूसरी तरफ टोमास टुशेल के नेतृत्व वाली वो टीम है जो लगभग 60 वर्षों के इंतजार को खत्म करने का सपना देख रही है। फाइनल में जगह बनाने की जंग जारी है और इतिहास शायद एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। और विदेश में कोंगो में इबोला के पुष्ट मामलों की संख्या 2011 तक पहुंच गई है, जिसमें 754 मौतें शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये रिकॉर्ड पर अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला प्रकोप है। कोंगो के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल 753 लोग अभी भी आइसोलेशन या अस्पतालों में हैं, जबकि अब तक 366 लोग ठीक हो चुके हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: More music in the mix.
3: आज आजादी है।
4: Bombay Talkies, Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Mustine.

0: विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जनता को ये सूचित करना चाहता है कि कल गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सर नीरज जगन्नाथ साज हॉस्पिटल फ्लैक में सुबह 10 से दोपहर 4:30 बजे के बीच एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंटरवेंशन के दौरान बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। चूंकि इस मेंटेनेंस के दौरान डीजल जनरेटर से केवल सीमित बिजली उपलब्ध होगी तो इससे सामान्य हॉस्पिटल सेवाएं अवश्य प्रभावित होंगी, लेकिन रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी डिपार्टमेंट्स के लिए ये सेवाएं उस दौरान केवल इमरजेंसी के लिए उपलब्ध होंगी। बिजली की सप्लाई में कटौती से उत्पन्न कोई भी असुविधा के लिए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय क्षमा प्रार्थी है और आपके सहयोग की आशा करती है।
1: RM2 Radio Musti

So well friends, that was a beautiful song, दो लफ्जों की कहानी, और welcome करते हैं आप सभी का, that's your Bombay Talkies, मैं हूँ परी आपके साथ, thank you so much Nilmani जिन्होंने इतने प्यार से हमारा साथ निभाया on RM2 Radio मस्ती, और अब it's time for some B-Town की updates जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, some latest tracks are लेकिन with a twist, so we have this beautiful song आप सभी के नाम, to get you in the afternoon mood, ये है एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, midweek तक पहुँच चुके हैं and two days more to go, चलिए it's 15th of July, have a wonderful time with RM2 Radio मस्ती. Yeah.

और चलिए दोस्तों, इट्स 2:31 कनेक्टेड हैं आप हमारे साथ ऑन दिस ब्यूटीफुल वेडनेसडे आफ्टरनून एंड आई डू होप यू आर एंजॉयिंग योर टाइम. वैसे वीकडेज में तो एंजॉयमेंट कम ही होती है, काम काज के बीच वक्त कहाँ निकल जाता है इसका पता ही कहाँ चलता है. तभी तो हम आते हैं कुछ ऐसे गानों को लेकर कि भले ही आपका दिन वीकडे हो यानी कि आप काम में डूबे हो, लेकिन गानों के साथ आपका एंटरटेनमेंट होता रहे ऑन ऑरेंजो रेडियो मस्ती. सो वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए तो गुड न्यूज़ है फॉर ऑल द फैंस ऑफ गोविंदा, जो गोविंदा को बड़े पर्दे पर देखना पसंद करते हैं. सो आपके लिए गुड न्यूज़ है दैट ही इज़ गोइंग टू बी बैक ऑन द सिल्वर स्क्रीन, और ये होने वाला है उनकी दो फिल्मों के साथ, एक है रूपा और दूसरी है दुनियादारी. और गोविंदा का कहना है कि आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल रेडी. एंड अभी ये न्यूज़ सुनकर तो उनके फैंस हो गए हैं वेरी एक्साइटेड. एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा गोविंदा का अंदाज, और ये तो हम जानते हैं कि उनके जैसी कॉमिक टाइमिंग, उनके जैसे डांसिंग मूव्स किसी और के पास नहीं है. सो लेट्स वेट एंड वॉच के रूपा एंड दुनियादारी के साथ वो उनके फैंस को कितना हैप्पी करते हैं. अभी के लिए आपके लिए हम लेकर आए हैं बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स एंड सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, सो एंजॉय दिस वन.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स इट्स 239 एंड गोविंदा के बाद उन्हीं से जुड़ी हुई एक खबर कि गोविंदा तो अपना जो कमबैक है वो करने वाले हैं ऑन सिल्वर स्क्रीन, लेकिन गुड न्यूज़ ये भी है दैट उनकी वाइफ सुनीता आहूजा और बेटा यश आहूजा एक साथ अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, यानी कि मम्मी बेटा का ड्यू हम देखने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात ये होती अगर

गोविंदा, सुनीता आहूजा और बेटा यश एक साथ एक फिल्म में एक साथ नजर आ जाते तो शायद ये तो एक हैट्रिक हो जाती उनके फैंस के लिए। लेकिन चलिए, दो खबरें अलग अलग लेकिन दोनों गुड न्यूज फॉर ऑल द फैंस ऑफ गोविंदा। जहां पर गोविंदा की वाइफ शी इज गोइंग टू मेक हर डेब्यू अपने बेटे के साथ यश आहूजा। और ये तो हम जानते हैं दैट सिंस लॉन्ग टाइम लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई गोविंदा इतने टैलेंटेड है और उनके दो बच्चे हैं, बेटी है नर्मदा और साथ में है बेटा यश, तो इनका जो डेब्यू है वो कब होने वाला है। लेकिन जब तक, जहां तक बेटी का सवाल है, लगता तो नहीं है कि बेटी अब फिल्मों में इंटरेस्ट रखती है। लेकिन बेटा यस, क्या पता एक बार फिर हमें गोविंदा के वही वंडरफुल डांस मूव्स और वही एक्टिंग स्किल्स देखने को मिल जाए उनके बेटे में। एंड सुनीता आहूजा ये क्या धमाल करने वाली है, इसके लिए तो हमें करना है थोड़ा सा इंतजार। एंड वी हैव टू थैंक गिरीश जो यहाँ पर स्टूडियो में बैठे बैठे ये सारी खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गिरीश। एंड ऑफकोर्स यहाँ पर जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, होप यू हैविंग अ वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती।

0: 2
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: RM2
1: Radio Musti.

So, चलिए दोनों दोस्तों विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की और दोनों इसीलिए क्योंकि यहाँ स्टूडियो में दीपशिका एंड गिनीशा यहाँ पर काफी मस्ती चल रही है एंड बनता तो है यहाँ पर हमारा जो क्रू है इट्स ऑलवेज हर किसी को हेल्प करने के लिए यहाँ पर घूमता रहता है. सो थैंक यू सो मच गिनीशा एंड थैंक यू सो मच दीपशिका एंड थैंक यू सो मच हमारे डियर लिसनर्स जो हमेशा हमारा साथ देते हैं. विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर लौट कर आएंगे विद योर बॉम्बे टॉकीज़. मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं विधिमा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। इस सरकार ने वो सब कुछ नष्ट कर दिया है जो हमने मिलकर बनाया था। ये शब्द जोली जोंगा ने आज सुबह एमएसएम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहे। ये प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा कल राष्ट्रसभा में पेंशन सुधार के बचाव में दिए गए बयान के जवाब में आई है। विपक्ष नेता द्वारा पूछे गए पीएनक्यू का उत्तर देते हुए नवीन राम गुलाम ने स्पष्ट किया कि सरकार इस सुधार पर पीछे नहीं हटेगी। ये निर्णय लगातार प्रतिक्रियाओं को जन्म दे रहा है। आज सुबह सेंट्रल बिल्डिंग में जोली जोंगा ने सरकार पर 2024 के आम चुनावों से पहले किए गए अपने वादों से मुकर जाने का आरोप लगाया। उनके अनुसार चुनावी अभियान के दौरान वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 21,000 रुपये तक करने के वादे किए गए थे। उनका ये भी तर्क है कि जनवरी 2025 में पेश किए गए सरकारी कार्यक्रम में पेंशन सुधार का कोई उल्लेख नहीं था और वे इसे जनता की अपेक्षाओं के विपरीत एक बड़ा बदलाव मानते हैं। विपक्ष नेता ने इसे मॉरिशस के नागरिकों के साथ एक बड़ा विश्वासघात करार दिया है। 48 घंटों से भी कम समय में ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक के तहत पुलिस ने 334 लोगों को गिरफ्तार किया है कल और इस बुधवार को सुबह 3 बजे से 8 बजे के बीच नॉर्दर्न डिवीजन, मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ और साउथर्न डिवीजन ने पुलिस की विभिन्न इकाइयों के सहयोग से अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुलिस की इन कार्रवाइयों से कई कुख्यात अपराधियों, चोरों और अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार ये पूरी तरह से एक सफल अभियान रहा। सर्जेंट जयेश गंगादीन का भविष्य कल तय हो जाएगा। जमानत के लिए उनकी याचिका पर फैसला पोटली जिला अदालत में सुनाया जाएगा। कल मामले की सुनवाई के दौरान बंदरगाह की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात इस पुलिस अधिकारी ने खुद को निर्दोष बताया। उन पर 94.4 मिलियन रुपए मूल्य की ड्रग्स बरामदगी के मामले में न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने का अस्थायी आरोप है। और विदेश में भारत के तमिलनाडु राज्य में जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग के संयंत्र में भट्टी में विस्फोट के बाद आग लग गई जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। धातु रिसाइकलिंग कंपनी ने नुकसान का आकलन करने के लिए प्रभावित अनुभाग में परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। महत कबीर एवेन्यू बनते अवाकुआ में 85 साल के 85 ओल्ड के श्री देवव्रत सगन, जो मानान नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। वे पहले डिसिप्लिन हेडमास्टर थे। उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनकी पत्नी श्रीमती इंदिरा सगन के घर महत कबीर एवेन्यू बनते अवाकुआ से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रोमेशन विस आफ्टरनून एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
2: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: More music in the mix.
1: Aaj Azadi hai.
2: Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
4: Radio Musti.
5: सो वेल फ्रेंड्स, लेटेस्ट सॉन्ग्स तो हम चलाते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ फरमाइशें ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है. सो दैट वॉज स्पेशली फॉर समवन वेरी वेरी स्पेशल जो यहाँ एमबीसी में हमारे साथ काम करते हैं, उनके लिए ये स्पेशल सा डेडिकेशन. एंड ऑफकोर्स हमारे लिसनर्स, आप भी तो खास और स्पेशल है, तभी तो आपके जो डेडिकेशन होते हैं कभी कभार आपकी रिक्वेस्ट भी हम चला देते हैं, इवन इफ इट्स नॉट अ फरमाइशी प्रोग्राम. तो बस आपका प्यार हम तक पहुँचाते रहिए और आपकी इस आफ्टरनून को हम स्पेशल बनाते जाएंगे. मैं हूँ परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रही हैं. एंड फॉर नाउ इट्स टाइम फॉर वो बीते दिन. तानिया सिंह की आवाज, वही एवरग्रीन सॉन्ग लेकिन विद अ ट्विस्ट.

सो वेल फ्रेंड्स, आ दे रहे हैं आप ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती एंड थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस डेडिकेशंस. हमेशा की तरह हम तो आपको याद दिलाते रहते हैं दैट यू कैन सेंड अस योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस ऑन 5499 1294. दैट वाज आ दे रहे हैं लाल माटी से एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड. वेल यू आर हैप्पी इस गाने को सुनकर, और ऐसे ही कुछ गाने चलाते रहेंगे जिन्हें सुनकर आपका मूड और आपका दिल हैप्पी फील करे. एंड यहाँ पर ऋषि विदेशी साथ दे रहे हैं और कहते हैं गाना हो जाए फॉर ऑल फुटबॉल लवर्स, द गोल्डन बूट्स और द कर्स इज गोइंग टू बी ब्रोकन. वेल इसके लिए तो करना है इंतजार. थैंक यू सो मच ऋषि जी, साथ दे रहे हैं आप. सो फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस एंड ऑफ कोर्स फॉर यू एंड फॉर योर लव्ड वंस वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. साथ देने के लिए शुक्रिया. वशिष साथ दे रहे हैं आप एंड आई डू होप यू एंजॉइंग योर आफ्टरनून रेडियो मस्ती के साथ. अनुषा साथ दे रहे हैं सीजीएमएल से और फॉरसाइट से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. एंड ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर फ्रेंड पूनम ओबिलक ऑफ मिडलैंड्स, बिकॉज आज सेलिब्रेट कर रही हैं अपना बर्थडे ऑन 15th of July. सो उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज. बेस्ट विशेज बेटी येशना, हर्षा, बेटा है साहिल, कुशल एंड फ्रेंड्स अनुषा, चाची और साथ में है सभी उनके अपनों की ओर से दादी मीला एंड बॉस ऋषि जो इस वक्त सुपरमार्केट में काम कर रहे हैं. सो उनके लिए भी गुड गुड विशेस. सो वेल इट्स रियली नाइस, अपने बॉस को भी आप याद कर रही हैं. सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, इसे हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम एंड दैट्स या अली एंड संग चलिया. ए ब्यूटीफुल गानों का एक वंडरफुल मैशअप आपके नाम. वी ऑल्सो हैव हमारी प्यारी सी जाना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं ऑल द वे फ्रॉम फ्लैक. स्वीट बातों को सुनते हुए अपनी आफ्टरनून एंजॉय कर रही हैं और डेडिकेट कर रही हैं गाना फॉर ऑल हर लव्ड वंस. रीमा, जनिता, सेष्टा, अंशनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, सिवसन परिवार ऑफ फ्लैक, वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के नाम. ऐसे ही साथ देते रहिए मैसेजेस डेडिकेशंस 5499 1294 पर.

0: रेडियो मस्ती।
1: सो वेल यहाँ पर स्पेशल विशेज ये है फ्रॉम ध्रुव राम तोहल ऑफ काट्रिबोन, कहते हैं कि आज दादी जयंती राम तोहल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, उनके सभी ग्रैंड किड्स, सन इन लॉज, डॉटर इन लॉज एंड स्पेशली दादा देवलाल राम तोहल उन्हें विश करना चाहते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे, विशिंग ब्यूटिफुल दादी लोड्स ऑफ लव, लोड्स ऑफ हैप्पीनेस, हग्स, लव एंड किसेज, ये है फॉर स्वीटेस्ट दादी, मे गॉड ग्रांट हर गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लॉन्ग लाइफ, ये है फॉर यू दादी जी। इट्स योर बर्थडे आज जयंती राम तोहल, सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज एंड एवरीवन हू सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे ऑन 15th ऑफ जुलाई, ये है गुड विशेस आपके नाम, हैव अ ग्रेट वन।

वेल फ्रेंड्स सुनते रहो ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती मैं हूं परी आपके साथ लेकर आए हैं योर बॉम्बे टॉकीज जहां पर खबरें आप तक पहुंचा रही हैं वो भी बी टाउन की खबरें कुछ प्यारे गाने आपके नाम और साथ में आपकी गुड विशेस ऑन 5499 1294 सभी के लिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना अभिदत की आवाज एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल इंडी पॉप आप सभी के लिए जो दे रहे हैं हमारा साथ हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून एंजॉय दिस वन

और जावेद जाफरी की धमाल फ्रेंचाइजी की चौथी इंस्टॉलमेंट क्रिटिक्स और दर्शकों को मिले जुले रिव्यूज के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर ये हर दिन एक खास रिकॉर्ड बना रही है। हालांकि ओपनिंग वीकेंड के मुकाबले इसकी कमाई में थोड़ी सी मंदी आई है, लेकिन फिर भी अपनी पकड़ जो है उसने मजबूत बनाए रखी है। और कल की अगर हम बात करें, मंगलवार को इसने अपने कलेक्शन में काफी तेजी दिखाई और अब यहाँ पर आपको बताएंगे कि बुधवार को यानी कि छठे दिन कितना कारोबार किया है आपकी इस धमाल फोर ने। तो धमाल ने 14 करोड़ से अपना खाता खोला था, ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट डे की। यस, इस फिल्म ने पहले दिन अपना जो खाता है 14 करोड़ से खोला था एंड दैट्स अ गुड अमाउंट, जहाँ पर एक अच्छी ओपनिंग मिली इस फिल्म को। दूसरे दिन इस फिल्म ने 22.50 करोड़ की कमाई की। तीसरे दिन फिल्म को संडे की छुट्टी का फायदा मिला और इसने 28.50 करोड़ कमाए। इसके बाद फिल्म की कमाई वीकडेज में थोड़ी सी घटती नजर आई और इसका कलेक्शन 8.75 करोड़ के आसपास रहा। वहीं पांचवें दिन मंगलवार को फिल्म ने अपनी कमाई में थोड़ी सी तेजी दिखाई और इस फिल्म ने कमाए 9.50 करोड़। ऑल धमाल फोर के अगर हम छठे दिन यानी कि आज की बात करें, बुधवार की कमाई की बात करें, तो दरअसल अगर ये फिल्म बुधवार को अपनी रफ्तार बनाए रखती है तो ये तय है कि ये सेफ जोन में पहुंच जाएगी। इन सब के बीच फिल्म के छठे दिन के कलेक्शन की अगर बात करें तो धमाल फोर ने दोपहर 3 बजे तक 1.54 करोड़ की कमाई की है। फिल्म की ऑक्यूपेंसी 11% दर्ज की जा रही है और फिलहाल फिल्म के 6 दिनों का कुल कलेक्शन 84.70 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी कि ये फिल्म कर रही है अच्छा खासा कमाल और धमाल कर रही है कमाल, कमाई तो कर रही है और सोन पहुंचने वाली है 100 करोड़ क्लब में। एंड वेल, अभी के लिए तो जैसे हम बता रहे हैं कि जो भी लोग फिल्म को देख रहे हैं कह रहे हैं इट्स अ फुल ऑन फैमिली एंटरटेनर। कुछ लोगों को फिल्म अच्छी लग रही है, क्रिटिक्स के मिले जुले रिव्यूज आ रहे हैं, लेकिन स्टिल ऑन बॉक्स ऑफिस ये फिल्म कमा रही है अच्छे खासे पैसे। चलिए दोस्तों, इसी फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए, इट्स 3:48 एंड लास्ट राउंड आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस का 5499-1294 पर थोड़ी ही देर में। परी का साथ एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज़ ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती।

और चलिए दोस्तों विद दिस ट्रैक इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. रेशमा जी मौसल मौसम तौंद्रे से हमारा साथ दे रही हैं, कहती हैं आज हस्बैंड संजय रुकमन अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इट्स हिज 60th बर्थडे. बेस्ट विशेस हैं फ्रॉम वाइफ रेशमा, उनकी बेटी है सियाशना और बेटा हर्ष. सभी की ओर से प्यार एंड स्पेशल विशेज. मिस्टर प्रीतम बिट्टू साथ दे रहे हैं आप पपीतों से. सो गाना आपके नाम एंड गोज आउट फॉर योर ब्यूटीफुल वाइफ वर्षा. इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. आ रही है गिनीशा लेकर योर अवतार वाइब्स. स्टे वेल कनेक्टेड.

0: listening to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 4 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें विद्या मासी, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। इस सरकार ने वो सब कुछ नष्ट कर दिया है जो हमने मिलकर बनाया था। ये शब्द जोरी शोंगा ने आज सुबह मिसम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहे। ये प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा कल राज्यसभा में पेंशन सुधार के बचाव में दिए गए बयान के जवाब में आई है। विपक्षी नेता द्वारा पूछे गए PNQ का उत्तर देते हुए नवीन राम गुलाम ने स्पष्ट किया कि सरकार इस सुधार पर पीछे नहीं हटेगी। 48 घंटों से भी कम समय में ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक के तहत पुलिस ने 334 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल और इस बुधवार को सुबह 3 बजे से 8 बजे के बीच नॉर्थन डिवीजन, मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ और साउथन डिवीजन ने पुलिस की विभिन्न इकाइयों के सहयोग से

0: अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। सर्जेंट जयेश गंगादीन का भविष्य कल तय हो जाएगा। जमानत के लिए उनकी याचिका पर फैसला पोटी जिला अदालत में सुनाया जाएगा। कल मामले की सुनवाई के दौरान मदरगाह की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में 33 पुलिस अधिकारी ने खुद को निर्दोष बताया। उन पर 94.4 मिलियन रुपये मूल्य की ड्रग्स बरामदगी के मामले में न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने का अस्थायी आरोप है। और विदेश में स्पेन के अब तक के सबसे घातक जंगलों में लगी आग के 7 पीड़ित ब्रिटिश नागरिक थे। जंगल की ये आग जिसने फ्रांस को भी बुरी तरह तबाह कर दिया है, पिछले गुरुवार को उस समय भड़की जब पश्चिमी यूरोप के कई हिस्से 6 सप्ताह में अपनी तीसरी भीषण गर्मी की चपेट में थे। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स
1: और एम2।
2: बिल्कुल जी, आपकी फिल्मी राइड्स शुरू हो चुके हैं आपके और हमारे बीच में ऑन R12 रेडियो मस्तियां, दैट्स योर रफ्तार वाइब्स। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर। नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? Feel good factor hai na aaj. Of course it's a Wednesday, 15th of July 2026, such a beautiful day. The sun is shining so bright today and the mausam is awesome. Aur on our M2 radio mein se hum aa gaye hain aap logon ka saath dene ke liye. Ready ho rahe ho to leave the office to go back home? Ji haan dosto, I know aisa hi waqt ka intezar hum roz karte hain ki kab kaam jo hai khatam ho jayega and then we are going to back home and enjoy with our dear ones, our family and our loved ones. Jo bhi ho, jahan pe bhi aap ja rahe ho, just hamara saath yun hi dete rehna, kyunki lekar aaye hain kuch aise gaane chune hai gaane just to drive you back home. To all those who are already hitting the road, drive carefully. So stay tuned and stay connected on your number one radio station. We'll be having some good music for you and as well some latest sports news. Of course, leke jayenge sports ki duniya mein phir se ek baar. We've all the news about the World Cup and as well some traffic news aapke liye. To chaliye ji, ye raha khaskar aapke naam. जैसे कि मैंने कहा है, फील गुड फैक्टर है, सो आई एम फीलिंग गुड। विशाल ददलानी और शिल्पा राव की आवाजों में लेकर आए हैं आई फील गुड, है ना।

बिल्कुल, जिसमें तो कोई शक नहीं है, इट्स योर नंबर वन रेडियो स्टेशन एंड यू आर लिसनिंग टू गिनेशा राइट नाउ। सो व्हाट्स अप माय ब्यूटीफुल पीपल, कहां तक पहुंचे हैं, निकल चुके हैं ना काम से, अभी घर की तरफ जाना है, लेकिन आई नो हाउ आई कैन रियली ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस राइट नाउ। जी हाँ दोस्तों, लेट्स किक स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल गेम, जहां पे आपको मिल सकता है टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन मॉरिशस। जी हाँ, सो यू कैन प्ले विद एमबीसी एंड विन राइट नाउ, यू कैन स्टैंड अ चांस। आप जीत सकते हैं एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा जो टू है, फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन सैटरडे 25th ऑफ जुलाई 2026 एज फ्रॉम 7:30 PM। जी हाँ, एट SVICC अटपाय। आप ना यू कैन रियली स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया, जहां पे आप दोबारा जी सकते हैं वो अनफॉरगेटेबल वॉइस जो डिफाइन करते हैं बॉलीवुड के गोल्डन एरा को। सो एंजॉय दैट लवली इवनिंग ऑफ टाइमलेस मेलोडीज, लेजेंडरी हिट्स, प्योर म्यूजिकल मैजिक ओनली विद अभिजीत, हिज कॉन्सर्ट लाइव इन मॉरिशस। अगर आपको टिकट खरीदनी है तो मैं आपको बता दूं, उसका प्राइस स्टार्ट होता है आज फ्रॉम 850 rupees एंड दे आर अवेलेबल एट muticket.mu and Rezo Utayu, वहां पे आपको आपके टिकट्स मिल सकते हैं। सो इट्स एन ओकेजन नॉट टू मिस दिस अनफॉरगेटेबल कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस इन मॉरिशस। रिजर्वेशन के लिए जी हाँ बाबा, हैव अ हॉटलाइन नंबर भी दे रहे हो ना आपको, 4669999466 99 99। यस, यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर टू गेट योर टिकट्स। बट अगर आप एक टिकट मुफ्त में जीतना चाहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट राइट नाउ, यू जस्ट वांट टू बी माय लकी विनर, हम आपको सुनाएंगे एक गाना। यू जस्ट हैव टू टेल मी दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट्स टेकन फ्रॉम विच मूवी।

0: बिल्कुल जी, चाहे जमाना कितना जालिम क्यों ना हो, हम तो आपको देंगे एक कैडू, यानी कि यू कैन विन अ टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य इन मॉरिशस ऑन 25th ऑफ जुलाई 2026। तो चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक टू यू, फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ सही जवाब भेजेगा जरूर 5499-1294 पर।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा

0: दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC Radio presents Vande RJ. MBC Radio पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: Don't miss it.

खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में. I really feel that everyone is having a good day. जी हाँ दोस्त, एक्चुअली डजंट मीन कि सुबह से अगर कुछ हुआ है ऑफिस में, घर पे किसी के साथ अनबन हुई है, आज यू आर गोइंग टू सल्क होल डे. नहीं, सल्किंग नहीं चाहिए. वी जस्ट नीड एवरीवन टू बी हैप्पी इन लाइफ. और म्यूजिक सबके जिंदगी में हैप्पीनेस ही लेकर आते हैं, तभी तो हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे गिने चुने गाने फॉर यू माय डियर लवली पीपल आउट देयर. सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है हमें मैसेज करके बोल रहे हैं कि प्लीज दोबारा से आप सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि अभी हमने नहीं सुना आपका क्वेश्चन. इट्स वेरी इजी, हमने पूछा एक सवाल जहां पे सही जवाब देने पर आपको मिल सकता है टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव इन मॉरिशस ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य ऑन 25th of July 2026. जी हाँ, जो शाम को 7:30 बजे होगा एट SVICC. और सवाल ये था कि ये जो गाना हम आपको सुनाएंगे अभी, ये You just have to tell me it's taken from which movie. बिल्कुल जी, यू जस्ट हैव टू टेल मी दिस ब्यूटीफुल ट्रैक इट्स टेकन फ्रॉम विच मूवी, कौन सी मूवी से लिया गया है. 5 9 9 12 94 पर. जी हाँ, आप भेजिएगा जरूर जल्दी से अपना सही जवाब फुल नेम और फुल एड्रेस के साथ. बेस्ट ऑफ लक टू यू.

बिल्कुल जी, दैट्स यो नंबर वन रेडियो स्टेशन जो हमेशा आपका साथ देते रहते हैं, और हम हैं कि निशांत माइक साथ देने के लिए भी वैसे बहुत ही अच्छे अच्छे गाने जो वाकई आपको मजबूर कर दे नाचने के लिए। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए इट्स टाइम टू अनाउंस द लकी विनर। जी हाँ, आज तो हमने कमाल कर दी, हमने दो दो बार आपको आपसे पूछा ये सवाल और आपको मौका दिया है जीतने का। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच टू ऑल दोस्त जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन एज पर द रूल वी ओनली कैन हैव ओनली वन लकी विनर। सवाल पूछा गया था, आज एक ऐसा गाना आपको सुना दिया गया था, पूछा गया था कि ये कौन सी मूवी से लिया गया है, एंड द राइट आंसर इज धुरंधर द रिवेंज, यानी कि धुरंधर 2 से लिया गया ये खूबसूरत सा गाना। जी हाँ, और बहुत सारे लोगों ने ये पार्टिसिपेट किया, बट आज का लकी विनर है हमारे प्यारे कविता जो है रहती है रॉयल रोड घोंसल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द राइट आंसर, यू आर आज का लकी विनर। तो चलिए जी, बिल्कुल जैसे कि आपको पता है कि आपको मिल रहा है वाउचर, यानी कि लवली टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत भाट्टाचार्य लाइव इन मॉरिशस। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दोस जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, दिल छोटा नहीं करते हैं। आई विल बी कमिंग बैक विद वन मोर गेम 6:30 RM2 रेडियो मस्ती पर। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। सो हमारी आज का लकी विनर कविता जो है जो रहती है रॉयल रोड घोंसल, आपने जीता है एक टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव ऑफ हमारे प्यारे अभिजीत भाट्टाचार्य, विच इज गोइंग टू हैपन ऑन सैटरडे 25th of July 2026 फ्रॉम 7:30 PM एट SBICC@Pai। बाकी जो हमारे लिसनर्स खरीदना चाहेंगे टिकट्स, इट स्टार्ट्स आज फ्रॉम ₹850 एंड दे आर अवेलेबल एट moticket.mu एंड एज वेल रेजो उतायो। And this is an occasion not to miss. I'm giving you a number, a hotline, जहाँ पे फोन करके आप अपने रिजर्वेशन के लिए फोन कर सकते हैं। It's 466-9999, 466-9999 पे आप फोन कर सकते हैं to

0: RM2
1: Radio Musty.
2: Prêt à vivre la Coupe du Monde 2034?
3: Hey, partner, 2034? World Cup 2026, là!
2: Bien sûr, partner! Mais en achetant votre Smart TV Xiaomi chez Jikalachan, profitez d'une garantie unique de 10 ans, incluant 5 ans sur l'écran!
3: Hey, vrai même? Avec 10 ans garantie, Toget World Cup 2026, 2030, 2034, tout sans tracas!
2: Vite! Profitez des 10 ans de garantie unique sur les Smart TV Xiaomi avec leur qualité d'image exceptionnelle! Only chez Jikalachan, distributeur officiel de la marque!
3: Hey, partner! Mon pari pour vivre World Cup 2034, moi, hein?
4: Communiqué de la CWA. Depuis le mercredi 17 juin 2026, plusieurs régions du pays alimentées par le réservoir de Marovacois ne reçoivent que 6 heures de distribution d'eau par jour. Les régions concernées sont les suivantes. Vacois, Curepipe, Quatre Bornes, Beaubassin, Rosil, Moka, Saint-Pierre et une partie du district de Rivière-Noire. Les horaires détaillés de distribution peuvent être consultés sur le site web de la CWA https://cwa.govmu.org. Le ministère de l'Énergie et des Utilités publiques, la Water Resources Commission et la Central Water Authority expriment leur profonde gratitude envers les abonnés de la CWA et du public en général pour leur compréhension et leur collaboration dès le premier jour de la mise en application des nouveaux horaires de distribution et leur réitèrent un pressant appel pour une utilisation judicieuse de l'eau. Des camions-citernes sont à la disposition des consommateurs, mais la priorité est accordée aux hôpitaux, aux homes, aux écoles et aux institutions pénitentiaires. Les numéros utiles sont le 170, le 55 00 0025 sur WhatsApp et le 601 5000.
0: RM2
1: Radio Musty.
0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
0: Radio Musty.
5: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
6: FIFA World Cup 2026 is the second semi-final. Ek taraf England ke three lines ki taqat, dusri taraf Argentina, Messi ka squad aur uska magic. Kaun pahunchega in the final? Takkar lene ke liye Spain se. Experts kya kehte hain? Aap kya kehte hain? Jeetne ki probability kis team ki kitni? Ye sab janne ke liye join the RM2 team. हर गोल, हर मूव, हर एक्साइटमेंट और हर अपडेट आपको मिलेंगे सबसे पहले रेडियो मस्ती पर. फीफा वर्ल्ड कप 2026 इज द सेकंड सेमीफाइनल.
7: And I guess that the moment is here. सभी लोगों को आप ही का इंतजार है आज अरविंद जी कि कब आएंगे हमारा स्पोर्ट्स गुरु और कब हम बात करेंगे. So a very good afternoon to you. आपका स्वागत है रफ्तार वाइब्स में.
8: Thank you. So it's the World Cup, it's the fever. कल का जो सेमीफाइनल रहा अभी लोग कुछ लोग असमंजस में हैं. Still realizing एक तरह से होल्ड अप. We can say that that was a perfect hold up from Spain. France ki team jo ab tak impressive Mbappe ka goal, Dembele, star studded team, lekin Spain ne dikhaya ki you should be a team and not just a collection of stars.
7: Exactly.
8: Ye ek tarah se that was the force of Spain. और आई शुड एडमिट कि एक तरह से काफी लोगों ने मेरी तरह स्पेन को नजरअंदाज किया गया इस वर्ल्ड कप में. अंडरएस्टिमेट किया गया क्योंकि टू इयर्स बैक

0: 2024 में, when this team defeated France to win the final semi-final में उनको हराए थे और final में जीत हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ, I guess it was in a penalty shootout. तो इस टीम में जो जवान खिलाड़ी थे, जैसे विलियम्स, जैसे लामिन यमाल, बहुत ऐसे हैं, ओल्मो, पेड्रो पोरो, ये लोग अब पक चुके हैं और हमने देखा किस तरह से उनकी मैच्योरिटी ने फ्रांस को एकदम एक ऐसे पोजीशन में डाला कि टेक्निकली टैक्टिकली दे कुड नॉट डू एनीथिंग. और खुद एम्बापे ने स्वीकार किया कि वी डिडंट डिजर्व टू गो इन द फाइनल द वे वी वर प्लेइंग, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग. सो फुटबॉल है, अब स्पेन हॉट फेवरेट बन गई है टू विन दिस वर्ल्ड कप. और आज सभी को पता है इट्स द बिग मैच, इट्स ए हिस्टोरिकल मैच बिटवीन अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड. और ये केवल एक फुटबॉल मैच नहीं, देयर इज ए लॉन्ग हिस्ट्री इन दोनों देशों के बीच. ये फॉकलैंड्स आइलैंड को लेकर है, दोनों के बीच एक्चुअली लड़ाई हुई है, दे फॉट अ वॉर, अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड. और जब जब इन दोनों के बीच मुकाबला होता है, दैट वे लोग इस वॉर को लेकर दे सिंग, यू सी,
1: दे हैव द सेम फीलिंग अबाउट इट. या
0: तो और इन दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ है, लाइक एवरीवन रिमेंबर्स द मैच जब डिएगो आर्मांडो माराडोना छोटा है लेकिन छलांग मारकर हाथ से गोल डालता था.
1: Really?
0: The hand of God, मैं दे जू.
1: Yeah, of course.
0: मैं दे जू. और उसने बाद में स्वीकार भी किया कि actually it happened. लेकिन पीटर शिल्टन से माफी भी मांगी. पीटर शिल्टन rejected outright. और उसी मैच में we had that wonder goal of Diego Armando Maradona, जिसे goal of the century माना जाता है. 6-7 खिलाड़ियों को dribble करके he scored a gem of a goal. फिर बाद में ओवेन का भी एक वंडर गोल रहा. वी रिमेम्बर डेविड बेकहम को रेड कार्ड दिया गया था जेगो सिमियोने ने पर फाउल करके. सो वी गॉट लॉन्ग हिस्ट्री. इस लॉन्ग हिस्ट्री में एक नयापन ये होगा कि पहली बार मेसी इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा है वर्ल्ड कप में ऑफिशियली. सो ये भी होगा कि और यहाँ आज थॉमस टुखेल ने अभी भी बताया कि इंग्लैंड बिगेस्ट मैच सिंस 1966 आज द थ्री लायंस क्लोज इन ऑन इमोर्टैलिटी. ये 7 साल बाद आफ्टर 60 years दे आर ट्राइंग टू बी देयर. अब इंग्लैंड अंडरडॉग्स हैं, अर्जेंटीना फेवरेट हैं, ये मुश्किल होगा कहना. और अलन शीरर ने कहा कि आई स्टिल फील पेन ऑफ 1998, जबकि उसका मैनेजर जो है थॉमस टुखेल, उसने बताया कि अर्जेंटीना की टीम, खासतौर पर मेसी, दे विल ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ इंग्लैंड. कहना मुश्किल होगा कौन जीतेगा इस मैच में. एनीथिंग कैन हैपन, इट्स ए बिग मैच एंड हैपनिंग एवरीवेयर. जैसे विकास ने भी कहा यहाँ पर भी वी आर स्टार्टिंग समथिंग बिग. आज रात को विल बी गिविंग यू कंपनी उस फुटबॉल मैच को लेकर.
1: कितने बजे?
0: वी आर स्टार्टिंग एट 10 और वी आर गोइंग टिल द मैच एंड्स. ऐसे में कुछ लोग मैच नहीं देख सकते, यू नो,
1: ड्राइविंग,
0: दे आर वर्किंग. और जो लोग देख भी रहे हैं, यू कैन ऑलवेज लिसन टू अस, पार्टिसिपेट, क्योंकि काफी कुछ होने वाला.
1: अपना प्रोनोस्टिक भेज सकते हो, अपना फेवरेट टीम, फेवरेट प्लेयर का नाम भेज सकते हो, एनीथिंग यू जस्ट वांट टू शेयर, यू कैन शेयर.
0: और विल बी आज काफी जगहों में जायंट स्क्रीन में भी मैच दिखाया जा रहा है, लाइक रिवे जुआ पाइनो, वहां पर यूथ सेंटर में आज भी दूसरा सेमीफाइनल होगा. सो वहां से इंटरवेंशन होंगे फॉर द फाइनल. अभी पता चला कि त्रियोली जो स्पोर्ट्स अरेना है वहां पर, दे आर पुटिंग टू जायंट स्क्रीन्स.
1: एंड इवन आई हैव हर्ड आउट सम म्युनिसिपैलिटी ऑफ वाक्वा फिनिक्स एज़ वेल. वाक्वा
0: फिनिक्स, रोजबेल में भी मैंने सुना, फ्लैक में भी मैंने सुना,
1: गांबे में भी है, सो एवरीवेयर, इट्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, स्ट्राइक सिटी में भी है.
0: तो इन सब पर समय-समय पर विल बी अपडेटिंग यू कहां पर क्या कुछ हो रहा है. और हमारे यहां एमबीसी टीवी में भी हमारे सहयोगी विकास बागेराची उनके सभी एक्सपर्ट्स के साथ होंगे जो अपनी राय देंगे उस मैच में. सो आज इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना, ये 11 बजे मैच होगा और इट्स something, कल सुबह ही बता सकते हैं क्या होगा. सो द मैच स्टार्ट्स एट 11, लेकिन इससे पहले प्लाटू एनालिसिस ये सब होता रहेगा. यहाँ पर रेडियो मस्ती पर भी हम लोग आपका साथ देंगे,
1: यानी कि मस्ती ही मस्ती,
0: फुटबॉल की मस्ती.
1: फुटबॉल की मस्ती. थैंक यू सो मच अरविंद फॉर ऑल दीज अपडेट्स.
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट. FIFA World Cup 2026 is the second semi-final. एक तरफ इंग्लैंड के थ्री लाइन्स की ताकत, दूसरी तरफ अर्जेंटीना मेसी का स्क्वाड और उसका मैजिक, कौन पहुंचेगा इन द फाइनल टक्कर लेने के लिए स्पेन से? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, जीतने की प्रोबेबिलिटी किस टीम की कितनी, ये सब जानने के लिए ज्वाइन द RM2 टीम। हर गोल, हर मूव, हर एक्साइटमेंट और हर अपडेट आपको मिलेंगे सबसे पहले रेडियो मस्ती पर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 इज द सेकंड सेमीफाइनल। रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स।

0: tune.
1: Traffic update.
2: बिल्कुल जी, चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में 4:50 हो चुके हैं और ये है आपका इवनिंग जो है ट्रैफिक अपडेट ऑन रेडियो मस्ती। और वैसे जो भी ड्राइवर्स पोर्टवीज से घर की तरफ निकल रहे हैं, आप जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि साउथ और नॉर्थ दोनों डायरेक्शन में ट्रैफिक अब स्लो हो चुका है और क्योंकि ज्यादातर ऑफिसर्स फिनिश हो गया है और पीक आवर ऑफिशियली शुरू हो गया है, तो इसीलिए जरा आराम से गाड़ी चलाना। गिजवी से फिनिक्स और फिनिक्स से साउथ की तरफ ट्रैफिक आई कैन सी की स्लो है, लेकिन व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन अगले कुछ ही वक्त में यहाँ हैवी कंजेशन और ट्रैफिक जाम जो है डेवलप होने के चांसेस हैं। सो कैटरबोन और रोजिल के जो रोड यूजर्स हैं उसमें भी वक्त ट्रैफिक ऑलरेडी जाम है, इसलिए अगर आप इस रूट पर हैं तो एक्स्ट्रा पेशेंस रखिए प्लीज। क्यूपिप साइड आई कैन सी ट्रैफिक चल रहा है लेकिन स्लो पेस है, और जो वेड रोड यूज करने वाले हैं वहां पर भी ट्रैफिक धीरे धीरे बिल्डअप होना शुरू हो चुका है। सो एडवाइस फॉर ऑल माय लवली ड्राइवर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती, पीक आवर है इसलिए अननेसेसरी लेन चेंजिंग अवॉइड करें, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, इंडिकेटर्स का सही यूज करें और

और प्लीज मोबाइल फोन उससे तो थोड़ा दूर ही रखें जब तक कि व्हीकल सेफली पार्क्ड ना हो। अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम लेकर निकलिए और टाइम और अपना टाइम लगाकर आराम से गाड़ी चलाना। सो ड्राइव कामली, ओके? सो ड्राइव सेफ, ड्राइव पेशेंट, और हम आपको देते रहेंगे लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट्स। एंड टू ऑल आवर लवली लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं, इफ यू हैव सम लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट्स टू शेयर हमारे साथ, यू कैन डू इट ऑन 5499 1294 पर।

0: England this evening in the 2026 World Cup semi-final in Atlanta. England have the chance to take a giant stride towards immortality when they face Argentina in their biggest match since winning the 1966 final at Wembley. The Three Lions have reached two World Cup semi-finals in the 6 decades since then, at Italia 90 and then in Russia 8 years ago. But this latest edition reignites an old rivalry, adding layers with history and controversial subplots. The winner will face Spain in Sunday's final. So don't miss this much-anticipated semi-final match between Argentina and England live at 11 p.m. on NBC 11. And that's the latest from us. Thanks for your company. Goodbye, and do stay tuned on RM2 for much more.
1: Thank you so much, Ashrina.
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: आइए सुनते हैं एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जनता को यह सूचित करना चाहता है कि कल गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सहनिरुद्ध जगन्नाथ साज हॉस्पिटल फ्लैक में सुबह 10 से दोपहर 4:30 बजे के बीच एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंटरवेंशन के दौरान बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। चूंकि इस मेंटेनेंस के दौरान डीजल जनरेटर से केवल सीमित बिजली उपलब्ध होगी, तो इससे सामान्य हॉस्पिटल सेवाएं अवश्य प्रभावित होंगी, लेकिन रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी डिपार्टमेंट्स के लिए ये सेवाएं उस दौरान केवल इमरजेंसी के लिए उपलब्ध होंगी। बिजली की सप्लाई में कटौती से उत्पन्न कोई भी असुविधा के लिए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय क्षमा प्रार्थी है और आपके सहयोग की आशा करती है।
4: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2।

0: Welcome back your time. Already 5 बज के 13 minutes हो चुके हैं. अरे मेरी सांसें भूल गई, इतना डांस कर रही हूँ मैं यहाँ पे इन द स्टूडियो. तो आप जरा सोचो तो जरा जो बाकी हमारे लिसनर्स डांस कर रहे होंगे रेडियो के उस तरफ, डोंट वरी है, हम हैं ना आपका साथ देने के लिए. तो चलिए जी, विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून. नमस्कार जी हमारे प्यारे प्यारे लवली लिसनर्स. वैसे अगर दिन थोड़ा स्लो चल रहा है, आप टेंशन नहीं लेना जी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि रफ्तार वाइब्स लेकर आ गया है ऐसे म्यूजिक का ट्यूब मूड जो बस आपको बस ऑन करे. एक से बढ़कर एक सुपर हिट ट्रैक्स, मस्त बातें और अनलिमिटेड पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए. तो चलिए एक काम करते हैं, काम भी होगा और मूड भी बनेगा. कीप ऑन स्माइलिंग, कीप वाइबिंग ऑफिस से घर या घर से कहीं और, जहां से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, सफर को बना दीजिए और भी एक्साइटिंग इन योर रफ्तार वाइब्स. ट्रैफिक हो या लॉन्ग ड्राइव, रेडियो मस्ती के सुपर हिट गाने और पॉजिटिव बातें हर जर्नी को बना देंगे मेमोरेबल. सीट बेल्ट लगा लीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और बस एंजॉय करते रहना. 5499 यानी कि 5499 1294 पर एज फ्रॉम नाउ यू कैन स्टार्ट सेंडिंग मी योर डेडिकेशंस.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस,
1: डोंट मिस इट।
2: RM2
3: Radio Musti.
4: Un nouveau voyage commence pour Maurice. Avec Ethiopian Airlines, la route Maurice Addis Abeba ouvre l'accès à plus de 145 destinations à travers l'Afrique et le monde. Pour les affaires, les études, la famille ou l'envie de découvrir ailleurs, une nouvelle option s'offre à vous. Contactez votre agence de voyage pour organiser votre prochain départ avec Ethiopian
2: Airlines.
3: Radio Musti.
1: Raftar Vibes. Filmy Rides.
2: RM2.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: बिल्कुल जी आपके इस फिल्मी राइट्स में गिनेश आपका साथ दे रही है एंड आई रियली होप दैट यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम स्पेंडिंग विद मी राइट नाउ ऑन आवर M2 रेडियो मस्त जी हाँ दोस्तों वैसे हमेशा याद रखें कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती है लेकिन लेकिन हमेशा याद ये भी रखें कि हर दिन एक नया चांस जरूर देती है छोटी सी स्माइल किसी का दिन बना सकती है और एक पॉजिटिव सोच आपकी दुनिया बदल सकती है बिलीव इन योर सेल्फ कीप मूविंग फॉरवर्ड और हमेशा याद रखें कि बेस्ट द बेस्ट इज ऑलवेज येट टू कम सो ऑलवेज गिव योर बेस्ट चलिए जी फिलहाल के लिए लश्कर रावत किसने किसको याद किया है ऑन M2 रेडियो मस्त वी डू हैव अवर लवली राधा जी जो है फ्रॉम कनाडा थैंक यू सो मच हे गणेश इट्स सो नाइस टू लिसन टू यू थैंक यू इट्स ऑसम द शो दैट्स सो स्वीट टू नो माय डियर एंड ब्यूटीफुल फैमिली के लिए जो कनाडा में है मॉरिशस में है मेरे लिए लिसनर्स के लिए सबके लिए आप गाना डेडिकेट करना पसंद करोगे थैंक यू सो मच जाना मेरी जाना फ्रॉम फ्लैक कैसे हो मेरी जान सो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू रीमा जनिता शिशांत सिनी सिल्विया और यूवी कृषि सिवसगन परिवार जो रहते हैं फ्लैक में यानी यस even I love you too, my sweetheart. So, chali Ajay Kumar, you're listening to me right now. So, the next one goes out to you. And hey, Ganesh, a nice show. Thank you so, so much. So, chaliye ji, sabhi log jo is waqt aapko sun rahe hain, hamari taraf se ek gana ho jaye ya. Aur meri beti Samaira ke liye, and that's coming from Vijaya, jo rehti hai Vakua mein. So, chaliye ji, to all those who are driving right now, drive carefully and I'm gonna slow down the beat a little bit. So, chaliye ji, ye agla gana hamari taraf se.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: OMG दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स का जो हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो अभी फिलहाल बहुत सारे लोग जो हैं ऑफिस से निकल चुके हैं, काम से निकल चुके हैं, ऑलरेडी बस में बैठ चुके हैं, टैक्सी में हो या मेट्रो में या गाड़ी में, कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, थैंक यू सो सो मच. कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक. आई नो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जब भी हम ऐसे बैठ जाते हैं और घर की तरफ जा रही है. इतने सारे काम की टेंशन है, घर का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है ना दिमाग में. लेकिन फिलहाल के लिए स्ट्रेस को बरो करो बंद और म्यूजिक को करो थोड़ा सा हाई वॉल्यूम में. और फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर. लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट योर डेडिकेशंस. और साथ में आपको बताना चाहूंगी दैट यस यू कैन वॉच द शो लाइव ऑन OMG रेडियो मस्ती, लाइव ऑन टिकटॉक OMG रेडियो मस्ती. एंड फिलहाल के लिए आई हैव वीना जगीसाओ जी. शी इज फ्रॉम बेलव्यू मोहल. लाइक गाना हो जाए आपके परिवार वालों के लिए, सभी टीम के लिए और दोस्तों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. I have baby Arshad and चलिए जी आपका special person, आपके प्यार, आपकी जिंदगी, यानी कि रिबिका आपकी wife आपको बता रही है कि वो आपसे बेंटा मोहब्बत करती हैं. That's so sweet. तो ये अगला गाना आपके लिए उनकी तरफ से. Hey Gine, I'm listening to you and that's Satish from Rosebel. अगला गाना आपके लिए जरूर my dear. And Shinaz Jogi of Rivière du Rempart, have a good evening. Namaskar my sweet Gine ji. बिल्कुल ठीक हूँ. Thank you so much my sweetheart. So the next one goes out to you. And we do have Amita Mohabia. वो बोलती है शी इज फ्रॉम बोना के आई एम जस्ट लविंग द सॉन्ग्स. थैंक यू सो सो मच. एंड चलिए गीता सीता बलोराम जी फ्रॉम शातू बनारस, ये अगला गाना आपके लिए. वी हैव मिसेस शोभा बी जादौ. तो चलिए ये अगला गाना आपके लिए. एंड ऑल दोस जो साथ दे रहे हैं ऑन टिकटॉक एज वेल, वी डू हैव मिस्टर अजय, आपको भी नमस्ते. एंड कसनिया, वी हैव कुर्सी एंड बिग हाई. कुर्सी इज वॉचिंग अस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सो शाउट आउट फॉर यू. एंड एश, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू with lots of love. We do have someone wishing me belated happy birthday. Thank you. That's Fanta. Thank you. And Ravi Duna, ye agla gana aapke liye, Santras and Strasbourg from France. And chaliye ji, we have Lovnish. The next one goes out to you. Shamila, hey Shamila, ye agla gana especially for you, my dear. And we have Saroj from France and Neha Ratan. A big hi goes to each and everyone. To chaliye ji, I've got you the next one. Filhal ke liye, ab vakt aa gaya hai ki aise gaane आपको सुनाने का जहां पे आपका मूड हम बदलने पर मजबूर करेंगे, इंस्टेंटली रिफ्रेश कर देंगे. और वैसे एक छोटी सी स्माइल दीजिए और एंजॉय कीजिए ये ब्लॉकबस्टर ट्रैक सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर वन रेडियो स्टेशन यानी कि रेडियो मस्ती पर.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये, ये, ये, ये. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: Fashion Tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: तो चलिए जी, टाइम भी इतना चला जा रहा है, 5:43 हो चुके हैं और फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर योर लेटेस्ट फैशन टिप्स। वैसे आज हम टिप्स देंगे फॉर यू लेडीज हु रियली लव टू वेयर ड्रेसेस। अगर आपको ड्रेसेस पहनना बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, सो व्हाई नॉट, अगर आप ड्रेसेस पहनते हो, आपको पहनना पसंद है, तो विंटर में उन्हें अवॉइड मत कीजिए। बस ड्रेस के साथ थर्मल लेगिंग्स जो होते हैं या वार्म थाइज पहनिए, ऊपर एक क्लासी लॉन्ग कोट जो है आप ऐड कर लीजिए, और एंकल बूट्स जो है उसको उसके साथ आप पहन सकते हैं, उसके साथ लुक को फिनिश कीजिए, स्टाइलिश भी और वार्म भी। और रोज तो वैसे हम आपको याद दिलाते हैं कि विंटर वार्डरोब में सिर्फ ब्लैक ही नहीं कलर होना चाहिए, बर्गंडी, एमराल्ड ग्रीन, नेवी ब्लू, मस्टर्ड या इवन बेज जैसे कलर्स भी ट्राई कीजिए, इट रियली डज लुक नाइस। आप बस अपने कम्बी जो है यानी कम्बिनेशन जो है ऑफ क्लोज अच्छे से कीजिए, ये शेड्स विंटर सीजन में क्लासी और एलिगेंट लुक देते हैं।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: RM2 Radio Masti.
3: Sunny Sun.

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन

0: और मॉरिशस बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July, तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वंदे आजी। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस,
1: डोंट मिस इट।
2: टाइम बीटा चला जा रहा है, तो चलिए जल्दी जल्दी जो आपके बाकी जो डेडिकेशंस हम साथ में चेक कर लेते हैं और उसके बाद ऑफकोर्स द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज वेव 6 बजे की समाचारों के बाद। एंड फिलहाल के लिए आई गॉट यू द नेक्स्ट वन निदेश के लिए। निदेश जुबन ही सेलिब्रेटिंग हिज 10th बर्थडे टुडे, सो हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर ऑन रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, हमारी तरफ से लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे नितेश जीवन, एंड बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम योर मामा वीना, पापा नितेश, भाई तनेश, आपकी जो प्यारी नानी है प्रतिमा, नाना रंजीत, मासी पूनम, मासी अनु रामसरन, एंड मासी लवना फ्रॉम भाई दियान एंड बहन आयशा, सुहावन ऑफ पिटी राफे, दे आर ऑल विशिंग यू अ मैजिकल बर्थडे, एंड वी डू हैव अनुषा फ्रॉम मिल, आई गेस, यस, आपने नंबर तो नहीं लिखा, बस मिल लिखा है, फॉरेस्ट साइड, सो सेजिया मिल फॉरेस्ट साइड, एंड आपके जो दोस्त है पूनम अबिला के लिए जो मिडलैंड्स के रहने वाले, आज उनका जन्मदिन है, सो उनको भी हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस बेटी येशना, हर्षा, सन साहिल, वी हैव कुशल एंड फ्रेंड्स अनुषा, चाचा अनिल, मद मालदिनी, डैडी मिला एंड बॉस ऋषि, एंड दे ऑल वर्किंग एट सुपरमार्केट राइट नाउ, हमारी टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाय माय गिनू, हाय डैन श्वेता, रवि स्पेशल अविशा पैडू फैमिलीज, द नेक्स्ट वन गोस आउट टू यू, एंड चलिए जी, आई डू हैव सालिन, शी इज वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक, यालेश, आकाश हेतन, विमला पाडू, आपकी मामा माला के लिए जो ब्रिटानिया के रहने वाली है, अगला गाना उनके नाम, वी डू हैव अवनीश, पार्वती, एंड वी हैव मिस्टर लव, हाय शामिला, एंड चलिए जी, ये अगला गाना स्पेशली उनके नाम जो साथ दे रहे हैं, लाइक अंकली, थैंक यू सो मच, एंड पूजा, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए बढ़ते अगले गाने की ओर, और उसके बाद बढ़ेंगे 6 बजे के समाचारों की ओर, एंड उसके बाद आई विल बी बैक विद सम गुड म्यूजिक, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, एंड 6:30 विल बी हैविंग वन मोर गेम, जहां पे आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे टू विन अ टिकट अगेन टू वॉच द शो ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन मॉरिशस ऑन 25th of July.

0: गुड म्यूजिक इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन RMT रेडियो मस्ती. जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं गिनिशा को इन योर लवली रफ्तार वाइब्स एंड दैट्स योर फिल्मी राइड्स. जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 6 PM. बढ़ेंगे 6 बजे के समाचारों की ओर और उसके बाद द गुड म्यूजिक कंटिन्यूज.
1: RMT रेडियो मस्ती.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.

नमस्कार, बुधवार 15 जुलाई 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक के तहत 48 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने 334 लोगों को गिरफ्तार किया है। नॉर्दर्न डिवीजन, मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ और साउथर्न डिवीजन में तड़के चलाए गए। व्यापक अभियान के दौरान कई कुख्यात अपराधी को पकड़े गए। पुलिस ने इस कार्रवाई को पूरी तरह सफल अभियान बताया। अमरीकी उप सहायक विदेश मंत्री सारा ट्रॉटमैन 19 जुलाई तक मॉरिशस के दौरे पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य अमरीका और मॉरिशस के बीच व्यापार, निवेश और व्यावसायिक साझेदारी को मजबूत करना है। दौरे के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। एग्रीटेरा में 2026 की कटनी शुरू हो गई है। इस साल 6,70,000 टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले साल के 6,46,000 टन से अधिक है। इसके लिए कंपनी अपनी मशीनों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है, जिसमें 2 नई कटाई मशीनों को शामिल किया गया है, ताकि उत्पादकता और सटीक खेती को बेहतर बनाया जा सके। और विदेश में अमरीका द्वारा सैन्य ठिकानों पर

0: नए हमलों के जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद रखने और क्षेत्र के अन्य तेल व गैस व्यापारिक मार्गों को भी ब्लॉक करने की धमकी दी है। पेश है अब समाचार विस्तार से। 48 घंटों से भी कम समय में ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक के तहत पुलिस ने 334 लोगों को गिरफ्तार किया है। कल और इस बुधवार को सुबह 3 से 8 बजे के बीच नॉर्दर्न डिवीजन, मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ और साउथर्न डिवीजन ने पुलिस की विभिन्न इकाइयों के सहयोग से अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुलिस की इन कार्रवाइयों से कई कुख्यात अपराधियों, चोरों और अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार ये पूरी तरह से एक सफल अभियान रहा। काविंता पेसो, अदिति अवतार।
1: एबरक्रॉम्बी स्थित मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ पुलिस मुख्यालय के प्रांगण में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुभाष धवन उन अफसरों के साथ एक डीब्रीफिंग सत्र करते दिखे जिन्होंने कल एक बड़े ऑपरेशन में भाग लिया था जिसे थंडर स्ट्राइक नाम दिया गया। पोटली इलाके और देश के उत्तरी प्रांत में सुबह तड़के 3 बजे से 8 बजे के बीच कई छापे मारे गए जिसके लिए अलग अलग इकाइयों के 72 अफसर तैनात किए गए थे। मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ ने यह अभियान नॉर्दर्न डिवीजन तथा कई अन्य इकाइयों के साथ मिलकर चलाया। इनमें सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट, डिविजनल सपोर्ट यूनिट, डिविजन क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, स्पेशल मोबाइल फोर्स, स्पेशल सपोर्टिंग यूनिट और पुलिस डॉग यूनिट शामिल रही। इस ऑपरेशन के तहत 177 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 24 लोगों को घरेलू हिंसा और बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा के मामलों के लिए।
2: Donc, dans chaque division, il y en a souvent des personnes qui wanted pour différents types d'offenses. Et que la police, dans ces différentes divisions-là, quand on gagne le support de une unité spécialisée, les permet d'augmenter notre capacité d'opération sur le terrain. Ça les permet d'accéder à différentes zones, les permet de retracer les suspects qui sont recherchés pendant un certain temps. Et que surtout, avec ce genre d'opération, nous lance un signal fort qui, peu importe que ça ait été, la police est capable de faire l'opération, est capable d'arrêter Benjimoun.
1: 32 को चोरी, 50 को अवैध रूप से रहने, 46 लोगों को अरेस्ट वारंट पर और 25 को अन्य अपराधों के आरोप पर हिरासत में लिया गया। डीएसपी सोहेल जालाम कहते हैं, आज सुबह 3 बजे से 8 बजे के बीच इसी प्रकार से थंडर स्ट्राइक अभियान के एक और मिशन के लिए कई इकाइयां दक्षिण में सदर्न डिवीजन की टीम की मदद के लिए सक्रिय हुई। 156 नई गिरफ्तारियां की गई, इनमें 118 वारंट के आधार पर और 38 गिरफ्तारियां चोरी, अश्लील हरकतों और पैरोल की शर्तों के उल्लंघन जैसे विभिन्न अपराधों के लिए की गई। इस तरह के ऑपरेशन से पुलिस ज्यादा तेजी और कुशल रूप से गिरफ्तारियां कर पाती हैं। ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक देश के कई अन्य इलाकों में भी जारी रहेगा। जाहिर है पुलिस की छापेमारी की तारीख और समय गुप्त रखा जाता है।
0: मिर्गी यानी एपिलेप्सी के लिए निर्धारित दवा प्रेगाबालिन का ड्रग उपयोगकर्ताओं द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। एफसीसी द्वारा की गई जांच से स्वास्थ्य मंत्रालय की दवा सेवाओं में इस दवा की आपूर्ति को लेकर कई खामियां सामने आई हैं। आयात प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर की गई इस जांच के जवाब में दवा सेवाओं के प्रमुख ने स्वीकार किया है कि वे एक पुराने कानूनी ढांचे का सामना कर रही हैं और उन्होंने दवा क्षेत्र को विनियमित करने वाले कानूनों में संशोधन की आवश्यकता जताई है। कुणाल गुजी, अदिति अवतार।
1: प्रेगाबालिन नामक दवाई का इस्तेमाल आमतौर पर मिर्गी यानी एपिलेप्सी के इलाज के लिए होता है, लेकिन अब कुछ लोग इसके नशे के असर के कारण भी इसका प्रयोग करने लगे हैं। इस दवाई के आयात को लेकर एफसीसी की जांच में इसकी खरीद के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल सर्विसेज विभाग के स्तर पर कई खामियां पाई गई हैं। फार्मास्यूटिकल सर्विसेज की एक्टिंग निदेशिका, जो पिछले 6 महीनों से ये पद संभाल रही हैं, वे कहती हैं इस दवाई के लिए प्रेस्क्रिप्शन की मांग होती है जिसके लिए वे मना नहीं कर सकती। उनके अनुसार जहां एक तरफ मंत्रालय ने स्थानीय स्तर पर प्रेगाबालिन को नियमबद्ध किया है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दवाई बिना प्रेस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर उपलब्ध है। बीबी वाहिदा गोपी कहती हैं, मॉरिशस में इस दवाई के प्रेस्क्रिप्शन को लेकर गलत तरीका चलता है। एक समय पर प्रेगाबालिन प्राप्त करने के लिए प्रेस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन

0: ये देखा गया कि नौजवान और ड्रग्स लेने वाले लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, तो हमें बेहतर कंट्रोल के लिए इसे डेंजरस ड्रग्स एक्ट के स्केड्यूल 3 में शामिल करना पड़ा। एक कोटा होता है जिसके तहत होलसेलर्स को ये सप्लाई किया जाता है, जिसके लिए रिटेलर्स को बदले में उचित कारण उपलब्ध कराना होता है। इस स्तर पर हमें काम करना पड़ेगा ताकि इस प्रणाली को बेहतर किया जा सके।
1: Et peut-être là, il va falloir travailler autrement hein, pour voir comment nous allons porter une amélioration dans ce système.
0: उनका कहना है कि फार्मास्यूटिकल उत्पादों के नियंत्रण से जुड़े पुराने कानूनी ढांचे के चलते इस विभाग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याद रहे कि ये दवाई डेंजरस ड्रग्स एक्ट के अंतर्गत नियंत्रित है, लेकिन इसकी बिक्री फार्मासियों के साथ साथ सड़कों पर तस्करी के तहत की जाती है। बीबी वाहिदा गोपी कहती हैं, एमओआरए द्वारा कायम एक डेटाबेस था जो फार्मेसी बोर्ड की मदद के लिए था, ताकि सप्लायरों और निजी फार्मेसियों के स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हम तक नहीं पहुंचा है। अब हम जल्द से जल्द इसे स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि इससे कई समस्याओं का समाधान हो पाएगा। एससीसी की जांच में रिकॉर्ड दर्ज करने, ट्रेसिंग और फॉलोअप की क्षमताओं में कमी आदि समस्याएं पाई गई हैं, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, ऑडिटिंग और रेगुलेटरी प्रक्रियाओं पर गलत असर पड़ रहा है। एफसीसी के अधिकारी इब्राहिम रोसाय कहते हैं, इसके आयात को लेकर निगरानी और नियंत्रण की बड़ी कमी पाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर मैनुअल प्रक्रियाओं पर अति निर्भरता गलत है। उनके पास जरूरी साधन मौजूद हैं, लेकिन वे सही तरीके से स्थापित नहीं हैं। हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर कायम करने की सिफारिश पेश की है, जो ये स्पष्ट बता सके कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। इस प्रणाली के कायम होने से मंत्रालय के स्तर पर कई समस्याएं सुलझाई जा सकेंगी।
2: Bon problème qui est capable lever pendant sa bonne fonction qui est au niveau du ministère de la Santé.
0: Financial Crimes Commission इस बात पर बल दे रहा है कि उसकी सिफारिशें लागू करना कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है। जांच के तहत ये भी सामने आया है कि कस्टम्स के स्तर पर बड़ी मात्रा में फैगाबालीन जब्त की गई है।
3: अमरीकी उप सहायक विदेश मंत्री सारा ट्रॉटमैन इस सप्ताह 19 जुलाई 2026 तक मॉरिशस के दौरे पर हैं। ये दौरा अमरीका और मॉरिशस के बीच व्यावसायिक जुड़ाव को आगे बढ़ाने और हमारे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और व्यावसायिक साझेदारी को मजबूत करने के नए अवसरों का पता लगाने के लिए हैं। इस यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। सिंचा मुत्यू रजनी बिकर।
4: अफ्रीकी मामलों के लिए अमेरिकी डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी सारा ट्रॉटमैन की उपस्थिति में आर्टेमिस के समझौतों का अनुसमर्थन मॉरिशस की ओर से किया जाएगा। इस तरह मॉरिशस एक शांतिपूर्ण एवं जिम्मेदार सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में अमेरिका और अन्य 69 देशों में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा सारा ट्रॉटमैन एक्विजिशन क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर में भी भाग लेंगे, जिससे कि सुरक्षा, संकट संचालन और अमेरिका तथा मॉरिशस के बीच मानवतावादी सहायता को लेकर लॉजिस्टिक सहयोग बढ़े। अपने औपचारिक दौरे के अंतर्गत अगले 6 से 9 दिसंबर 2026 के बीच लगने वाली अमेरिकी अफ्रीकी व्यावसायिक शिखर बैठक की तैयारी को लेकर भी बातचीत की जाएगी। उच्च स्तर के सरकारी उच्चाधिकारी, कंपनी संचालक तथा अमेरिकी एवं अफ्रीकी निवेशक इस शिखर बैठक में भाग लेंगे। इससे व्यावसायिक एवं निवेश संबंध मजबूत होंगे, व्यावसायिक साझेदारी तथा आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहित किए जाएंगे। अन्य अहम बात, बागाटेल में नए अमेरिकी दूतावास स्थल का दौरा।
3: एमएसएम के अध्यक्ष जूली रोंगो ने पेंशन सुधार का मुद्दा उठाते हुए पेंशन प्रणाली का मूल्यांकन करने वाली विशेषज्ञ समिति के गठन पर टिप्पणी की। उनका मानना है कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उनको सुनते हैं।
5: Mais seulement le constat qui nous fait, c'est qu'ils m'ont dit là et nous pensons qu'ils sont bizarres. Et nous avons des autres personnes au sein de sa comité là pour mener une réflexion bien en profondeur, nos réformes pension et qu'il y ait l'équilibre au sein de sa comité là.
3: 2026 की कटनी शुरू हो गई है। अग्रितिरा में कटनी का काम 29 जून से शुरू हो चुका है। इस साल ग्रुप को लगभग 6,70,000 टन गन्ने के उत्पादन की उम्मीद है, जबकि पिछले सीजन में ये 6,46,000 टन था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रितिरा अपने कार्यों का आधुनिकीकरण

0: जारी रखे हुए हैं। मौजूदा बेड़े में दो नई कटाई मशीनें शामिल की गई हैं, जिससे उत्पादकता में सुधार और सटीक कृषि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सड़क यातायात में सुधार के उद्देश्य से दो परियोजनाएं राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्री के एजेंडे में शामिल थीं। त्रियानों में अजय गणेश ने 43 मिलियन रुपए की लागत से बनी नई पेलखें त्रियानों लिंक रोड का उद्घाटन किया। इसके बाद वे फ्लिकॉन्फ्लाक गए, जहां उन्होंने 160 मिलियन रुपए की अनुमानित लागत वाली भविष्य की बायपास परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। और अब फुटबॉल की बात करते हैं। फ्रांसीसी टीम को स्पेन ने पूरी तरह से पछाड़ दिया और वे 2026 विश्व कप के सेमीफाइनल से बाहर हो गए। मंगलवार को खेले गए मैच में दबाव में दिखी फ्रांसीसी टीम, लाहौजा से 2-0 से हार गई। इस प्रकार फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने से चूक गया है। मारिन रेजिजू, अरविंद बिसेसर।
1: Spain, the European champions, will play the World Cup final.
2: डालस में स्पेन ने क्लास दिखाया और ओले ओले गाने का और मौका मिल गया। न्यूयॉर्क में भी गा सकते हैं। फैंस बहुत खुश, क्योंकि शुरुआत से ही स्पेन की टीम का दबदबा रहा और मैच का कंट्रोल ये लोग ले चुके थे। और ऐसे में लुकास जी, जो थोड़ा घबरा गया, एक पेनाल्टी कंसीड कर गया लामिन यामाल पर, और 22वें मिनट पर ओयोज़ाबाल ने कोई गलती नहीं की, 1-0 से लाहौजा आगे। दूसरे भाग में उसी तरह से शुरुआत हुई जैसे पहले भाग में, वही रिदम, वही खेल में रफ्तार, और फिर से स्पेन की टीम फ्रांस पर हावी हुई। एक बहुत ही सुंदर खेल ओल्मो का, और उससे गेंद जाता है पेड्रो पोहो के पास। स्पेन की टीम 2-0 से आगे। स्पेन की टीम और एक गोल स्कोर कर सकती थी, लामिन यामाल का गोल, जिसे ऑफसाइड के लिए रद्द कर दिया गया। इस मैच में फ्रांस की टीम जैसे फुटबॉल खेलना भूल गई थी, और उधर उन्हें साइमन को तनिक भी परेशान नहीं किया ले ब्लू ने। अब ये लोग तीसरा स्टार अपने पास नहीं रख पाएंगे, सपना चकनाचूर हो गया। मैच 2-0 स्पेन की जीत। अब रविवार को स्पेन अपना दूसरा फाइनल खेलेगा और दूसरा वर्ल्ड टाइटल जीतना चाहेगा, जबकि फ्रांस को छोटा फाइनल यानी तीसरे स्थान के लिए मैच खेलना होगा।
0: अटलांटा में अर्जेंटीना का सामना आखिरकार विश्व कप में इंग्लैंड से होगा। एक तरफ मौजूदा विश्व चैंपियन है, तो दूसरी तरफ टोमास टुशेल के नेतृत्व वाली वो टीम है जो लगभग 60 वर्षों के इंतजार को खत्म करने का सपना देख रही है। फाइनल में जगह बनाने की जंग जारी है और इतिहास शायद एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है।
2: माराडोना का मशहूर हैंड ऑफ गॉड और लाजवाब गोल। मैच में टेंशन भरपूर, इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच मैच होता है तो ऐसा ही होता है। क्लासिक मैच होता है इन दोनों के बीच। इस बार 2026 में कौन आएगा आगे, ये देखना है। लेजेंडरी नंबर 10 अर्जेंटीना का अभी तक सपना देख रहा है कि लियोनेल मेसी फिर से वर्ल्ड चैंपियन बने, और वो इतिहास में, वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाला है। 21 गोल स्कोर कर चुका है, यहाँ पर भी स्कोर करना चाहेगा। लेकिन अर्जेंटीना सिर्फ अपने मेसी पर निर्भर नहीं करता, और ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं। डिफेंस में क्रिस्टियन रोमेरो, लिजांड्रो मार्टिनेज, एमिलियानो मार्टिनेज जैसे डिफेंडर हैं जो किसी भी अटैक को सह सकते हैं या फिर उन्हें तोड़ सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना एक ऐतिहासिक डबल पूरा करना चाहते हैं, यानी लगातार दो साल चैंपियन बनना। ऐसा सिर्फ ब्राजील ने किया था 1962 में। उसके सामने है इंग्लैंड के द थ्री लायंस, जो 60 साल बाद फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। यहाँ आने के लिए टोमास टुखेल के जवानों ने रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कोंगो को हराया, फिर मेक्सिको को, नॉर्वे को, और उनका आत्मविश्वास प्रबल है। उनके खिलाफ अर्जेंटीना की टीम को बच के रहना होगा। कप्तान हैरी केन के

0: साथ साथ जूड बेलिंगम भी है, दोनों 6-6 गोल स्कोर कर चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है इंग्लैंड की टीम में वर्ल्ड कप में दो खिलाड़ी 6 गोल स्कोर कर पाए हैं। अटलांटा में ये मैच होगा, अब देखा जाएगा अर्जेंटीना या इंग्लैंड में से एक टीम जाएगी फाइनल में, जहां पर स्पेन पहले से इंतजार कर रहा है। दो महारथी लेकिन जगह सिर्फ एक।
1: विदेश की खबरों में ईरान ने क्षेत्र में अन्य व्यापारिक मार्गों को भी ब्लॉक करने की धमकी दी है, क्योंकि अमेरिका ने सैन्य ठिकानों पर हमले की एक नई लहर शुरू की है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि जब तक अमेरिका अपने आक्रामक कृत्यों को बंद नहीं करता, तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र के अन्य तेल और गैस निर्यात चैनलों को भी बंद किया जा सकता है। नीतू शाह जी, हाँ,
2: ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिकी हमले खत्म नहीं होंगे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा। तेहरान ने चेतावनी दी कि इस क्षेत्र से तेल और गैस का निर्यात तो या सभी के लिए उपलब्ध होगा या फिर किसी के लिए नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम कागीबाबादी ने मंगलवार शाम को अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी के फिर से लागू किए जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि अमरीका ने दोनों देशों के बीच तय समझौते प्रोटोकॉल को प्रभावी रूप से समाप्त किया है। इस प्रोटोकॉल के तहत अमरीका ने ईरानी तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का वादा किया था। हालांकि पिछले सप्ताह संघर्ष फिर से भड़कने के बाद तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 13 जुलाई सोमवार को ब्रेंट की कीमत 9% से अधिक बढ़ गई थी। इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में गुजरने वाले जहाजों पर 20% का टैक्स लगाने की योजना वापस लेने की घोषणा की, तब तेल की कीमतों में कुछ कमी देखी गई। ये प्रस्ताव तेहरान की उस योजना से प्रेरित है जिसके तहत वो इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलना चाहता था, जबकि अब तक ये मार्ग निःशुल्क था।
1: और अब अंत में चली जाती है स्थानीय मौसम का हाल। उत्तर पूर्व से पाए जा रहे बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और कभी कभी देश के पूर्व, उत्तर और सेंट्रल प्रांतों पर बारिश होगी। ऊंचाइयों पर कोहरे छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल दोपहर बाद को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 7:45 बजे सूरज उगेगा और शाम 5:46 पर सूरज ढल जाएगा।

तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम लुडोविक को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। समय शाम के 6:21 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार। लीजिए शोक समाचार सुनिए। नंबर 15 लाक्वाजे वाले दे प्रेत पोटलुई में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री अजय प्रीतम जगलाल जो लीले नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे कल सुबह 10 बजे उनकी मां श्रीमती किस्मतिया नीनुत के घर नंबर 15 लाक्वाजे वाले दे प्रेत पोटलुई से उठाकर सिपाही भोले की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। एसएसओ लेन मोताबा में 93 साल की 93 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती फुलबसिया रुतिया नायको पैदाइशी नाम जिरपिया और जो राधिक नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं।

0: उनके अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके घर एसएसएल लेन मोताबाद से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। इंग्लैंड में 76 साल के 76 इयर्स ओल्ड के श्री ईश्वर दत्त बुस्तुन, जो दत्त नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। वे पहले बुस्तुन लेन लाफलोगा रहते थे। उनकी अर्थी शुक्रवार को सुबह 10:15 बजे उनके घर इंग्लैंड से उठाकर इंग्लैंड की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन ऑन फ्राइडे एट 10:15। रेलवे रोड नोत्र दाम शुमेला में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुसमी काली, जो मैनी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके घर रेलवे रोड नोत्रदाम शुमेलागल से उठाकर बामोशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: बॉलीवुड के साथ चिल तो जरूर करेंगे, लेकिन और आई एम टू रेडियो मसी के साथ इस वक्त चिल करने का टाइम आ गया है, क्योंकि हमारे स्टूडियो के घर में एग्जैक्टली 6:28 हो चुके हैं। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम, स्वागत है इन द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर रफ्तार वाइब्स, ऑफ कोर्स इट्स योर फिल्मी राइड्स। तो चलिए जी, टू ऑल दोस हु आर स्टिल हिटिंग द रोड, ड्राइव केयरफुली, टू ऑल दोस जो घर पहुंच चुके हैं, हम तो बस इतना कहेंगे सिट बैक, रिलैक्स कीजिए, कुछ 10-15 मिनट अपने लिए निकालिए, और उसके बाद जो भी काम करना होगा घर पे, किचन में घुसना होगा या कुछ भी, दैन उसके बाद आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि सेल्फ लव इज सेल्फ केयर। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डेडिकेट टू ईच एंड एवरीवन जो साथ दे रहे हैं, एंड स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, आई हैव गॉट अ कैडू फॉर यू, यस आई हैव गॉट अ गिफ्ट, मतलब कि विद इन 5-10 मिनट्स आई एम गोइंग टू किक स्टार्ट अनदर गेम, जहां पे अगर आप पार्टिसिपेट करोगे यू कैन विन, यू कैन बी माई लकी विनर, यू कैन गो अवे वीव ticket to watch the concert live of Abhijit Bhattacharya in Mauritius.
1: RM2 Radio Mastery.

0: तो चलिए जी, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था कि वी आर गोइंग टू किक स्टार्ट द गेम, सो इट्स टाइम टू बिगिन द गेम. और बाकी जो लोग जीत नहीं पाए थे चार से पांच के बीच में, हमने कहा था ना कि दिल छोटा नहीं करते, हम बड़े दिलदार है, फिर से लेके आएंगे आप लोगों के लिए. ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव इन कॉन्सर्ट अभिजीत भट्टाचार्य इन मॉरिशस. तो चलिए फिलहाल के लिए प्ले विद एमबीसी एंड विन द टिकट. यू स्टैंड द चांस, जी हाँ, टू विन द टिकट टू द गोल्डन 90s एरा. तो जो है फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य live in concert in Mauritius. It's going to happen on a Saturday from 7:30 PM at SVICC. आपको हमें बस बताना है the date, किस date को होने वाला है ये concert. Yes, on which date this concert is going to take place at SVICC at Pai, शाम की 7:30 PM. तो चलिए जी, you can step in the world of the nostalgia and relive the unforgettable voice that really defined Bollywood golden era. आप enjoy कर पाएंगे कैसे evening of timeless melodies, legendary hits of pure musical magic. Tickets जो है 850 rupees से ही स्टार्ट होता है एंड दे आर अवेलेबल एट moticket.mu एंड रेजो उतायो. तो जैसे कि हम कहते हैं, इट्स एन ओकेजन नॉट टू मिस टू एक्सपीरियंस द अनफॉरगेटेबल कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस. सो रिजर्वेशन भी आप कर सकते हैं थ्रू योर हॉटलाइन 4669999 पर 4669999. सवाल बहुत ही आसान है, आप बस सही जवाब भेजे 54991294 पर 5499924. सेंडिंग मी द राइट आंसर विद फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ, देन ओनली आप एलिजिबल होंगे टू पार्टिसिपेट इन द गेम. यू जस्ट हैव टू टेल मी ऑन विच डेट द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य इज गोइंग टू टेक प्लेस इन मॉरिशस एट SVICC एट पाई शाम के 7:30 PM. 5499294. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स. बेस्ट ऑफ लक टू यू.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: OM2।
2: आइए सुनते हैं एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जनता को यह सूचित करना चाहता है कि कल गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सहनिरुद्ध जगन्नाथ साज हॉस्पिटल फ्लैक में सुबह 10 से दोपहर 4:30 बजे के बीच एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंटरवेंशन के दौरान बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। चूंकि इस मेंटेनेंस के दौरान डीजल जनरेटर से केवल सीमित बिजली उपलब्ध होगी तो इससे सामान्य हॉस्पिटल सेवाएं अवश्य प्रभावित होंगी, लेकिन रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी डिपार्टमेंट्स के लिए ये सेवाएं उस दौरान केवल इमरजेंसी के लिए उपलब्ध होंगी। बिजली की सप्लाई में कटौती से उत्पन्न कोई भी असुविधा के लिए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय क्षमा प्रार्थी है और आपके सहयोग की आशा करती है।
3: थैंक यू जी।

निकले ऑन ऑर टू रेडियो मस्ती टोल दोस्त वस्ती लट वर्क हेलो जी कुराज तो हम भी तो है ना साथ में देने के लिए और चलिए जी फिलहाल के लिए गेम तो जारी है एंड वी नीड टू अनाउंस द विनर राइट नाउ एंड सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे टोल दोस्त जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला एंड पार्टिसिपेट किया सही जवाब सभी लोगों ने दिया पूछा गया था एक सवाल अबाउट द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य वाज गोइंग टू हैपन इन मॉरिशस एट SVICCR पाए हमने पूछा था किस तारीख को होने वाला है ये कॉन्सर्ट इट्स गोइंग टू हैपन ऑन 25th ऑफ जुलाई 2020 Yes, the right answer. 25 July 2026. शाम के 7:30 बजे at SVICCR पर या और सही जवाब सभी लोगों ने दिया लेकिन आज पर रूल the game rule एक ही lucky winner हो सकता है and yes we have a lucky winner and she is Kritisha Chirkut from Ilu Pamplemousse. Congratulations to aaj ka lucky winner Kritisha Chirkut from Ilu Pamplemousse. Yes, you are winning a ticket to watch the concert of Abhijit Bhattacharya live in Mauritius. So congratulations to you, my darling. And someone is going to call you from the embassy to let you know how you're going to do to collect your ticket. So thank you so much for participating and keep on enjoying the show.

0: testing 1 2
1: yeah. कभी सोचा है
2: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
2: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
2: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
2: डोंट मिस इट।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इस टाइम फॉर गणेशा टू से गुड बाय टू यू. हाँ जी, और अपना ख्याल रखना. और आने वाली है पुनः हम आपका साथ देने के लिए इन योर इवनिंग लाउंज. तब तक के लिए कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक ऑलवेज ऑन आवर टू रेडियो मस्ती.

0: दारू पीने से लिवर खराब होता है और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी गड़े गड़े ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर है।

0: यू सी सर, द होल कंट्री ऑफ द सिस्टम ये है कि हम फिल्म में है नहीं, सिर्फ नाम है हमारा बच्चन।
1: टाइम चेक शाम के 7 बज रहे हैं।
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: Radio Musti.
2: North, South,
4: 103.5.
2: East, West,
4: 96.4.
2: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
4: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Double the Kahe.

0: आइए सुनते हैं एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जनता को यह सूचित करना चाहता है कि कल गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सर अनिरुद्ध जगन्नाथ साज हॉस्पिटल फ्लैक में सुबह 10 से दोपहर 4:30 बजे के बीच एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंटरवेंशन के दौरान बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। चूंकि इस मेंटेनेंस के दौरान डीजल जनरेटर से केवल सीमित बिजली उपलब्ध होगी तो इससे सामान्य हॉस्पिटल सेवाएं अवश्य प्रभावित होंगी, लेकिन रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी डिपार्टमेंट्स के लिए ये सेवाएं उस दौरान केवल इमरजेंसी के लिए उपलब्ध होंगी। बिजली की सप्लाई में कटौती से उत्पन्न कोई भी असुविधा के लिए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय क्षमा प्रार्थी है और आपके सहयोग की आशा करती है।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
2: Radio Masti.

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Masti.
3: 7:07 हो चुके हैं दोस्तों. नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. बुधवार का दिन यानी कि वेंसडे का 15 जुलाई आ गई भाई, यानी हफ्ते का वो दिन जहां आधा सफ़र पूरा हो चुका है और आधा अभी बाकी है. शायद आज किसी की मीटिंग लंबी चली होगी, किसी का प्रोजेक्ट आखिरकार पूरा हुआ होगा और किसी ने सोचा होगा अरे चलो ना आज का दिन ख़त्म हुआ, मुसीबत टली. पर हम आपको ये कहेंगे कि जो टेंशन है ना उसको सब कुछ निकाल दो, हमारे साथ चलो. मैं हूँ आपके साथ पूनम, इवनिंग लाउंज में आपका दिल से स्वागत करती हूँ. चलिए आज की शाम को थोड़ा सा हल्का बनाते हैं जिससे थोड़ी सी आपका मूड रिफ्रेश हो और आपका जो रात है बहुत ही सुंदर बीते. तो चलिए एंजॉय कीजिए ये आपके ब्यूटीफुल गाने. मैं हूँ आपके साथ पूनम.
1: इवनिंग लाउंज,
2: RM2,
0: रेडियो मस्ती.

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Masti.
3: क्या बात है, केके की आवाज़ में दिल क्यों ये मेरा शोर करे। भाई सही बात है, पूरे दिन की शोर शराबे से निकल के आप थोड़ा सा सुकून लीजिए अपने घर पे। अगर आप हमें सुन रहे हैं, ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, तो हम आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे, आपका वेलकम तो है, बट आपको इतना बोलेंगे आप स्ट्रेस मत लीजिएगा किसी भी चीज़ का, क्योंकि पूरा दिन आपने स्ट्रेस लिया है ना। आप कहाँ, कितना छोटा सा दिमाग है, छोटा सा प्यारा सा दिल है, उसके अंदर कितना कुछ समेट के रखें। अब इस समय जो है आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए, लंबी सी जो ड्राइव आप करके जा रहे हैं, बस आप चलते चलिए अपने आप को सेफ रखिए और इंजॉय कीजिए अपने गाने। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो हमें भेज सकते हैं 5499-1294 पर और बताएं कि क्या

ऐसा मूड है, बॉस ने क्या कहा, आपके परिवार को जब मिलेंगे देखेंगे, परिवार में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको मिलते ही आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आएगी उसको ज़रूर बताइएगा कि भाई कैसा लगता है आपको जब उनको मिलते ही हैं तो क्या आपको फीलिंग आती है। पर यही हम सुनने के लिए बैठे हैं, बेताब रहते हैं क्योंकि आपको भाई हमें एक्टिव रखना है क्योंकि कल का भी दिन शुरू हुआ है अभी, तो भाई अभी बहुत बड़ा टाइम है आपके पास, तो इन्जॉय कीजिए अपना ये प्यारा सा गाना।

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Masti. 7:29 हो चुके हैं दोस्तों, और इस समय कई घरों से आवाजें तो आ रही होंगी। करछी चला रहे होंगे, किचन में होंगे, बर्तन धो रहे होंगे, कोई खाना बना रहा होगा, कोई सर्व कर रहा होगा, और कोई साथ में जुड़ा होगा गानों के साथ भी, और कह रहे होंगे टेबल भाई लगा दो, सेट कर दो, पर गाने चलते रहने दो। तो थैंक यू सो मच जो भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। खुशबू का आनंद लीजिए, खाने का आनंद लीजिए, स्माइल करते हुए खाइए। पर हम आपको बोलेंगे, अगर आपको भी कोई गाना सुनना है तो हमें मैसेज कीजिए 5499-1294 पर। चलिए भाई, दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से मैसेजेस आए हैं। ललित जी जुड़े हुए हैं यूएसए से साथ और एंजॉय कर रहे हैं प्यारे से गानों को। थैंक यू सो मच अनीता जी फिकॉन फ्लाक से, और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली को विश कर रही हैं और कह रही हैं प्लीज़ एक गाना चलाइएगा जिनकी भी शादी है। और ये तो सीज़न चल रहा है भाई शादियों का, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई जिनकी भी शादी है इंजॉय कीजिएगा, सुंदर सुंदर बन के जाइएगा, अच्छे अच्छे कपड़े निकाल लीजिएगा, और अगर पुराने भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिपीट करो, दोबारा पहनो दोबारा पहनो, पर बस लगना बहुत स्मार्टी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मेकअप हो जाता है, थोड़ा सा आयरन हो जाता है, तो फिर क्या बात लगती है, पर्सनालिटी अपने आप निकल के बाहर आती है और चमकता है इंसान। अनुषा जी साथ दे रही हैं, और अपने दोस्त आज उनका पूनम अबलक जी का बर्थडे है। वाह वाह क्या बात है भाई, हम तो चाहेंगे कि उनका बर्थडे बहुत ही प्यारा सा गुजरे, और उनका बर्थडे उनके हस्बैंड डॉटर याशना हर्षा सन साहिल कुशाल एंड फ्रेंड्स अनुषा चाचा अनिल मालदिनी चाची मीला एंड बॉस ऋषि जो कि सुपरमार्केट में काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि उनको बहुत सारी विशेज और बहुत सारी प्रार्थनाएँ और बहुत ज़्यादा प्यार उनके लिए। भाई क्या बात है, थैंक यू सो मच उनके लिए। हम भी विश करते हैं यही कि हमेशा खुश रहें। उसके साथ में हमारे साथ एक और जुड़ चुकी हैं दोस्त। कौन जुड़ रहे हैं भाई? रेशमा जी जुड़े हुए हैं सितौंद्रे से, और हस्बैंड संजय जी जो आज उनका 60th बर्थडे है, और बेस्ट विशेस दे रहे हैं वाइफ की तरफ से, और कह रहे हैं कि भाई तुम हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो, हंसते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, तुम साथ साथ आमने सामने रहते हो तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ भाई घर के अंदर खुशियाँ हैं, वरना तो बड़ा बोरिंग सा हो जाता है। तो मैं समझ सकती हूँ हस्बैंड्स होते हैं थोड़ी सी भैया हमारी नोक झोंक तो होती रहती है। ऐसा एक मैसेज भी आया है, वो कह रही हैं ऋषि विदेशी जी कह रहे हैं मेरी एक प्यारी सी जानू है जिनका क्या कहते हैं आज वो वर्ल्ड कप का मैच तो देखेंगे पर थोड़ी सी मूडी है, इसलिए एक प्यारा सा गाना उनके लिए चला दीजिएगा। और उनके फ्रेंड हैं जिनका बर्थडे 22 जुलाई को होगा, तो हम तो कहेंगे भैया अभी तो बहुत टाइम है, उनके लिए तो चलाएंगे ही गाने, पर अभी तो हम आपकी गर्लफ्रेंड के लिए चलाएंगे, उन्हें बोलेंगे मूडी मत रहो भाई, प्यार से बात करो, इन्जॉय करो ये गाने आप सबके लिए।
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Masti.

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: Evening Lounge, Evening Lounge, RM2, Radio Masti. 7:48 हो चुके हैं दोस्तों. सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गाना. भाई इन्जॉय कीजिएगा. मुझे पता है कि हमारे ब्रेन में एक ऐसा बटन है, अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं तो आपको सिर्फ अपने ब्रेन को इतना कहना है, अरे टायर्डनेस को दूर करो, मैं तो बिल्कुल फ्रेश और रिफ्रेश होना चाहता हूं या होना चाहती हूं. तो बस आपका ब्रेन आपको वैसे ही एक्टिवेट कर देगा और आप देखिए जो पूरे दिन की थकान है ना एकदम से भाग जाएगी और आपको लगेगा कि अभी तो मैं बिल्कुल फुल एनर्जी से भर गया हूं या भर गई हूं. तो बस अगर आप भी थके हुए हैं तो ये जरूर ट्रिक अपनाइएगा और अपने ब्रेन को कहिए और सच में इंजॉय करते रहिए अपने गाने. तो चलिए भाई 2-3 मैसेजेस का साथ लेते हैं. इस समय हमारे साथ प्रीतम बीतो जी जो कि पीतो से हैं. 90s का एक गाना सुनाना चाहते हैं अपनी वाइफ को जो कि उनका नाम है वर्षा, और बोल रहे हैं कि उनके हाथों में ऐसा जादू है कि वो जब खाना बनाती है ना तो मेरा दिल करता है मैं खाता ही जाऊँ. आज उन्होंने फराता बनाया और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा. तो बस मैं तो थैंक यू बोलता हूँ, मुझे इतनी अच्छी वाइफ दी है तो मैं कहता हूँ प्लीज़ एक गाना उनके लिए प्लीज़ मेरी तरफ से चलाइएगा. हम बिल्कुल चलाने वाले हैं आपकी पसंद का गाना ही. और हम कहते हैं हमेशा आपकी जोड़ी ऐसी सलामत रहे, हमेशा खुश रहिए. और इस समय सीता गीता जी भोला राम जी साथ दे रहे हैं, उसके साथ में हमारे साथ डैरन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लुवेशा, आपादू फैमिली साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ ये गाने चलाते रहो, हमारा दिल भी बनता है और हमारा दिन भी बन जाता है. तो चलिए भाई ये दिन तो हमारा निकल गया बट अब हमने बनानी है रात और फिर आना है मॉर्निंग का जो समय उसको हमने करना है फुल ऐसे कि भाई जैसे हमारे को कोई ना तो टायर्डनेस है और हमारा बिल्कुल अच्छा सा दिन जाए और अच्छी सी रात हो. तो ये गाना आप सबके लिए और स्पेशली मैम आपके लिए.
1: Evening Lounge, Evening Lounge, RM2, Radio Masti.

0: Evening Lounge, Evening Lounge,
1: RM2,
0: Radio Masti.
2: 8:05 हो चुके हैं और फीफा वर्ल्ड कप का जो जोश है ना वो अलग ही लेवल पर जा रहा है। हो सकता है आपकी फेवरेट टीम बाहर हो गई हो, लेकिन अब किस टीम का खेल, किसका जुनून और किसका अंदाज आपको इम्प्रेस कर रहा है, अरे बताइए हमें भी। अब तो बस मजे लीजिए क्योंकि असली रोमांच अब शुरू होने वाला है। देखते हैं आखिर फाइनल तक कौन पहुंचता है और वर्ल्ड चैंपियन कौन बनता है। वही इंजॉय करना है गानों के साथ वर्ल्ड कप को भी, क्योंकि ये तो हमारा कहते हैं ना अभी आजकल का जुनून है, बस 19 तक रहेगा, उसके बाद सारों ने वापस आ जाना RM2 रेडियो मस्ती के साथ में। क्योंकि हमें पता है इस टाइम सारे जने सोच रहे होंगे थोड़ा से काम कर लेते हैं, पेंडिंग सब कर लेते हैं, उसके बाद 11 बजे होगा भाई हमारा वर्ल्ड कप का फिर से दोबारा से स्टार्ट, यही चलता रहेगा। पर हम आपको इतना बोलेंगे अगर आपने खाना खा लिया है तो अब थोड़ा सा वॉक कीजिएगा, 10-15 मिनट घर पर ही कर सकते हैं, घर से बाहर जा सकते हैं, फ्रेश ब्रीथ लीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा अपने गाने। ये गाना बहुत ही प्यारा सा गाना है, किशोर कुमार की आवाज़ में है, बट ये स्पेशल ललित जी के लिए है क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ के लिए प्लीज़ ये गाना जरूर चलाएगा। ये तो इस मूड के लिए नहीं है, इस टाइमिंग के लिए, पर फिर भी हम आपकी पसंद के गाने चलाते हैं, हमें लगता है कि भी आपकी पसंद का भी चलना चाहिए। चलो एंजॉय कीजिए ये गाना, आप ललित जी आपके लिए।
0: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज,
1: RM2
0: रेडियो मस्ती।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Evening Lounge, Evening Lounge,
1: RM2,
0: Radio Masti.
2: 8:17 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम इवनिंग लाउंज के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। भाई बहुत सारे मैसेजेस आए हैं बट दो मैसेजेस मेरे दिल को छूने वाले थे। एक प्यारा सा मैसेज आया है कीर्ति जी का और कह रही हैं प्लीज़ एक प्यारा सा रोमांटिक गाना लगा दीजिएगा मेरे पति आकाश के लिए, क्योंकि जब भी वो थोड़ा सा नाराज़ होता है मेरे दिल की धड़कने बंद होने लगती हैं। मैं उन्हें बता तो नहीं पाती पर मैं चाहती हूँ कि इस टाइम मैंने रेडियो ऑन कर रखा और मैंने कहा कि शायद पूनम जी को ही बोल देती हूँ ये बात कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, नाराज मत हुआ कीजिए। और वाइफ कीर्ति की तरफ से भी कीर्ति जी हम तो आपको इतना ही कहेंगे, वो नाराज कुछ नहीं होते हैं, हस्बैंड्स कहाँ नाराज होते हैं, बस हमेशा थोड़ा सा मुस्कुरा दो और उनको एक अच्छा सा खाना खिला दो और उनको बस बोलो कि आप हमारी जान हैं तो बस उनकी नाराजगी भाग जाएगी। उसके साथ में ही एक प्यारा सा मैसेज आया है बट उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा बट उन्होंने कहा रीना फुलवान जी के लिए कि भाई तुम्हारी जो दोस्ती है जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है मेरे लिए और तुम अपनी कभी भी जिंदगी में ये दोस्ती मत तोड़ना, बाकी मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। क्या बात है भाई, ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं तो हमारा दिल भी खुश होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का जो भी समय प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और हम आपको इतना ही बोलेंगे ये गाने आपके हैं, ये रेडियो चैनल आपका है, आप इंजॉय कीजिए। अगर आप

0: को भी कोई मैसेज करना है, अपने दिल की बात लिखनी है और कहनी है, तो आप कर सकते हैं 5499124 पर। एंजॉय कीजिए अपने ये गाने।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Masti.
0: कृति जी की तरफ से आकाशी के लिए।

आइए सुनते हैं एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जनता को यह सूचित करना चाहता है कि कल गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सर अनिरुद्ध जगन्नाथ साज हॉस्पिटल फ्लैक में सुबह 10 से दोपहर 4:30 बजे के बीच एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंटरवेंशन के दौरान बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। चूंकि इस मेंटेनेंस के दौरान डीजल जनरेटर से केवल सीमित बिजली उपलब्ध होगी तो इससे सामान्य हॉस्पिटल सेवाएं अवश्य प्रभावित होंगी, लेकिन रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी डिपार्टमेंट्स के लिए ये सेवाएं उस दौरान केवल इमरजेंसी के लिए उपलब्ध होंगी। बिजली की सप्लाई में कटौती से उत्पन्न कोई भी असुविधा के लिए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय क्षमा प्रार्थी है और आपके सहयोग की आशा करती है।

0: Evening Lounge, Evening Lounge,
1: RM2,
0: Radio Masti.
2: 8:36 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम इवनिंग लाउंज के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। यहां पर वही प्यारी सी रात चल रही है और इस टाइम जो गाने चलते हैं ना बहुत ही दिल को सुकून देने वाले होते हैं। थोड़ी सी मस्ती एनर्जी चाहिए भाई, क्योंकि आप सब ने देखना है अभी थोड़ी देर के बाद फीफा वर्ल्ड कप में एक प्यारा सा मैच, तो हम आपको बस सोने नहीं देना चाहते, हम आपको टायर्ड नहीं कराना चाहते, तो इसलिए हम आपको गाने वो चला के दे रहे हैं जिससे थोड़ी सी एनर्जी और बूस्ट हो जाए और थोड़े से आप अपने काम कर सके। चलिए 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं। आप इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय जी, जो मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरी वाइफ के पास टाइम नहीं है, कभी उसे कपड़े धोने हैं, कभी बर्तन धोने हैं, कभी खाना बनाना है और कभी कभी बच्चों के लिए ये काम करना है, वो काम करना है, तो उनको मैं बस बोलता हूँ कि थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, थोड़ी बातें कर लो, मैं चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा इतना सुख दुख में साथ दिया है और मैं चाहता हूँ कि उनके लिए आप एक ऐसा गाना चलाएं जिससे उन्हें एहसास हो कि मैं उन्हें किस नज़र से देखता हूँ, सच में वो इतनी अच्छी हैं कि शायद ही मैं किसी और इंसान को उस जगह पे रख सकूं। क्या बात है, थैंक यू सो मच ये प्यारा सा मैसेज शेयर करने के लिए। और हम भी आपके लिए एक ऐसा गाना चलाएंगे जो कि आपकी वाइफ खुश हो जाएंगी और कहेंगे अरे अरे मुझे भी सुनाओ, क्या मेरे लिए मैसेज किया। चलिए साथ में है राधा जी, जो कि कनाडा से साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही है ब्यूटीफुल प्रोग्राम को और कह रही हैं कि प्लीज़ मेरे लिए एक प्यारा सा गाना ज़रूर चलाइएगा भाई, हम चलाएंगे आपके लिए भी कहो ना प्यार के मूवी से। पर अभी हम आपको इतना बोलेंगे, इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है नताशा जी, एलिना, प्रियांशी, सुनीता एंड रश्मि जी, वो भी इंजॉय कर रही हैं। बस आप इंजॉय करते रहें, अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं अपने ही रेडियो चैनल पे 5499-1294 पर। हम आए आपके साथ रेडियो मस्ती के साथ।
0: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज,
1: RM2,
0: रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Masti.
3: 8:50 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम इवनिंग लाउंज के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। क्या बात है भाई, ये जो टाइम है ना बहुत ही अच्छा गुजरा आप सबके साथ, आपके मैसेजेस, आपके गानों की फरमाइश और आपके गाने की पसंद को भाई हैट्स ऑफ। और हम तो यही कहेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि ये शाम तो बस थोड़ी सी ढल गई, रात आ गई, पर फिर भी अब क्या करें, गानों का तो मज़ा लेना है। और अपना ख्याल रखिएगा, मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे कल सुबह 9 से 12 पर। इस समय जो लास्ट दो गाने चलेंगे, राजन रघुपत जी जो कि लंदन से साथ दे रहे हैं, रोशनी कथबोन से साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को, और उनके ब्यूटीफुल मैसेज के लिए थैंक यू सो मच। उर्वशी जी जो कि सुरीनाम से हैं और अपने हस्बैंड आर्सेन और बेटा एडन जो कि इस टाइम उनो प्ले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी नींद गायब हो गई है गानों के साथ और उनका भाई रात को मैच भी तो चलना है, इसलिए तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा सभी, बाय बाय, टेक केयर। आपको साथ मिलेगा इसके बाद विकास का, तो ये गाने आपके लिए।
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Masti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Play karo, smile karo. बॉलीवुड के साथ चल करो, दिल से बॉलीवुड, रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Musti.
1: Late Night Grooves.
0: RM2 Radio Musti.
2: A very good evening, ladies and gentlemen. स्वागत आप सभी का इस खूबसूरत बॉलीवुड नाइट शो में, जिसको कहते हैं लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर। रात जवान है, मूड मस्त है और गाने एक से बढ़कर एक तैयार हैं। तो बस आप ड्राइव कर रहे हो, काम कर रहे हो या बस रिलैक्स कर रहे हो, अगले तीन घंटे सिर्फ म्यूजिक, स्माइल्स और पॉजिटिव बातों के नाम। दिल को फ्री मोड पे रखिए और स्ट्रेस को थोड़ी देर के लिए छुट्टी दीजिए। लेट नाइट ग्रूव्स के साथ ये जर्नी टिल मिडनाइट।

0: मेरी मस्ती सुनते रहो।
1: दोस्तों, सबसे जरूरी अप्रूवल दुनिया का नहीं, खुद का होता है। जब आप खुद पर यकीन करना शुरू कर देते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। अपनी वैल्यू कभी किसी और के ओपिनियन से मत नापना। स्माइल कीजिए और चलिए अगले गाने की तरफ थोड़ा सा रुख कीजिए।

0: कहां बनने के लिए बड़ा नाम होना जरूरी नहीं, बस दिल बड़ा होना चाहिए। एक प्यारी सी बात, एक हेल्पिंग हैंड या एक सच्ची प्रार्थना किसी का दिन खूबसूरत बना सकती है। काइंडनेस कभी वेस्ट नहीं जाती, ये याद रखिए। और ये याद रखिए, हमारी जो एनर्जी है ना म्यूजिक के जरिए जो आप तक पहुंच रही है, ये भी बर्बाद नहीं हो सकती।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: नास्ती। भाई आज की दुनिया में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, है ना, क्लिक ऑफ बटन या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर देना, सब कुछ जल्दी से तैयार हो जाना। लेकिन अच्छी चीजों को वक्त लगता है, बीज भी एक दिन में पेड़ नहीं बनता, इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और पेशेंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए।
1: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट,
2: टक टक बॉलीवुड।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: इसमें रात के 10 बज रहे हैं।
4: FIFA World Cup 2026 is the second semi-final. एक तरफ इंग्लैंड के थ्री लाइंस की ताकत, दूसरी तरफ अर्जेंटीना, मेसी का स्क्वाड और उसका मैजिक। कौन पहुंचेगा इन द फाइनल टक्कर लेने के लिए स्पेन से? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, जीतने की प्रोबेबिलिटी किस टीम की कितनी, ये सब जानने के लिए ज्वाइन द RM2 टीम। हर गोल, हर मूव, हर एक्साइटमेंट और हर अपडेट आपको मिलेंगे सबसे पहले रेडियो मस्ती पर।

कल रात हमें यकीन है बहुत सारे लोगों ने, हजारों की संख्या में लोगों ने अपने अपने टीवी सेट पर, एमबीसी प्ले पर, स्पोर्ट्स 11 पर स्पेन का जलवा देखा, और आज भी हजारों लाखों की संख्या में आप अपने टीवी सेट के सामने होंगे। लेकिन जो लोग टीवी नहीं देख पा रहे हैं, उन लोगों के लिए हम रेडियो मस्ती पर लाए हैं एक स्पेशल प्रोग्राम। थोड़ी देर में हम आपको ले चलेंगे जगहों के यूथ सेंटर में, जहां पर हमारे स्पोर्ट्स गुरु अरविंद होंगे और उनके साथ और बहुत सारे हमारे रिसोर्स पर्सन होंगे। We're going to make you live live and direct l'ambiance of this second semi-final between England, the Free Lions, and Argentina. So, be prepared for a mesmerizing footballistic night. जहाँ पर मस्ती भी होगी, गाने भी होंगे और लॉबियंस भी हम आपको चकाएंगे। स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो मस्ती।

0: FIFA World Cup 2026 is the second semi-final. एक तरफ इंग्लैंड के थ्री लाइंस की ताकत, दूसरी तरफ अर्जेंटीना, मेसी का स्क्वाड और उसका मैजिक। कौन पहुंचेगा इन द फाइनल टक्कर लेने के लिए स्पेन से? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, जीतने की प्रोबेबिलिटी किस टीम की कितनी, ये सब जानने के लिए ज्वाइन द RM2 टीम। हर गोल, हर मूव, हर एक्साइटमेंट और हर अपडेट आपको मिलेंगे सबसे पहले रेडियो मस्ती पर। FIFA World Cup 2026 is the second semi-final.
1: Yes, second semi-final, जीने के लिए, जानने के लिए। चले हम मिलते हैं हमारे दोस्त अरविंद से। हेलो अरविंद।
2: हेलो संजय एंड वेलकम इन द वर्ल्ड कप टीम। कहते हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को बड़े बड़े मौकों में लाना पड़ता है। एंड आई वेलकम यू इन दिस वर्ल्ड कप टीम, हमारी रेडियो मस्ती टीम के साथ। इट हैड टू हैपन, क्योंकि ऐसे मौके हम हाथ से जाने नहीं देते। और जैसे आपको पता है कि अभी देश के कोने कोने में इट्स हैपनिंग बिग स्क्रीन। अगर आप लोग ये आवाज सुन पा रहे हैं, इट्स हैपनिंग हियर इन विलेज वाफा यूथ सेंटर में हम लोग पहुंचे हैं। और प्री मैच ऑब्वियस इट्स लाइक दी वाका वाका और शकीरा, और थोड़ी देर में दाई दाई भी शुरू होगा। सो इट्स लाइक फैमिली फन पार्टी यहाँ पर जो विलेजवाफा यूथ सेंटर में ऑर्गेनाइज किया गया है। धीरे धीरे लोग यहाँ पर आने लगे हैं, काफी गिफ्ट होंगे, काफी गेम्स होंगे, मैच, जायंट स्क्रीन। ये जायंट स्क्रीन में नहीं कहूंगा, लेकिन इसको सुपर जायंट स्क्रीन में कहूंगा। और इट्स ऑल कवर्ड, क्योंकि विलेजवाफा में जो यूथ सेंटर है वहां का जो जिमनेशियम है इट्स कवर्ड। मौसम एकदम ठीक, कोई बारिश नहीं, ठंड भी ज्यादा नहीं। सो अगर आप लोग इधर से गुजर रहे होंगे आज हम लोग हैं यहाँ पर आपको इस मैच के बारे में जानकारियां देने के लिए और यहाँ पर जो होगा उस पर जानकारियां देने के लिए। कमिंग टू द मैच, अभी थोड़ी देर बाद हमारे बाकी लोग इस पर जानकारियां देंगे। बट टू टेल यू कि अर्जेंटीना इंग्लैंड मुश्किल है कहना कौन सी वो टीम होगी जो स्पेन से जाकर टक्कर लेगी, क्योंकि कल जो हुआ फ्रांस के साथ, फ्रांस के मुर्गों को सहना पड़ा और स्पेन लाहोहा क्वालिफाइड फॉर दी फाइनल। अब लाहोहा ओले ओले गाते हुए इंतजार कर रहे हैं कौन आएगा उनके सामने इन कहां पर होगा द फाइनल, दैट विल बी इन
1: न्यूयॉर्क
2: टेक्सास टाइम, न्यूयॉर्क, हाँ न्यूयॉर्क वेटिंग। तो आज इंग्लैंड या अर्जेंटीना कहने के लिए मैं वॉज टॉकिंग अबाउट, यहाँ से लोगों से बात कर रहा था कि बहुत लोग इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग निराश है कि फ्रांस की टीम की हार हुई कल। व्हाटएवर, जो भी जीते जो भी हारे इट्स अ गेम। लेकिन हमारे यहाँ रेडियो मस्ती में इन MBC रेडियो एंड TV हम लोग यहाँ पर है टू गिव यू द लेटेस्ट, टू गिव यू द एम्बियंस। और ऐसे मौके चार साल बाद आते हैं, इसको हम हाथ से जाने नहीं देते। थैंक यू सो मच संजय फॉर बीइंग देयर। और हमारी पूरी रेडियो टीम जो आज तैनात है इस मैच के लिए, और नर्मदा को भी थैंक यू कहेंगे फॉर एक्सेप्टिंग टू पुट दिस इंस्टेंटली। और बहुत कुछ होगा, फाइनल में भी आएंगे अभी थोड़ी देर, विल बी टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स। मुझे पता है कि काफी तैयारियां हो चुकी हैं। सो लेट्स लीव दिस सेमीफाइनल रोड टू न्यूयॉर्क रेडियो मस्ती के साथ, ज्यादा डिटेल्स आपको थोड़ी देर बाद देंगे।
1: यस अरविंद, आप तो जानते ही होंगे कि स्पेन में एक सुपर सब है, एक सुपर सब है, जब भी वो आता है तो गोल करता है।
2: ओयो जबाल,
1: नहीं सुपर सब यानी कि जो देर से आता है, जबाल तो फुल मैच खेलता है।
2: मेरिनो
1: यस मेरिनो
2: मिकेल मेरिनो, हाँ भी कप्तान बेंच में कुछ खास नहीं, अभी आने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ओयो जबाल ने काम कर दिया था। और स्पेन ये दो साल पहले जिस टीम यूरोप चैंपियन बनी थी, आई से मिया कुल्पा, हम लोग भूल गए थे इस टीम को।
1: मैं नहीं भूला था
2: यूरोपियन चैंपियंस लीग में पाकिस्तान शहर में जो किया, We saw what Bayern Munich did in Bundesliga with players like Olise. The sector said we were hypnotized by the French superstars. Lekin Spain ne ye kar dikhaya ki World Cup mein match top khilaadiyon ke saath nahi jeeta gaya. It's a team that wins.
1: Maîtrise.
2: Or l'esprit d'équipe, jo yahi hua.
1: Maîtrise.
2: Yahan par abhi
1: पूरा का पूरा मैच फ्रेंच को अगर आप

0: छूने नहीं देंगे तो कैसे कॉल करेंगे, और यही काम स्पेंड किया।
1: और यहाँ पर मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि अंदर अभी मैच शुरू होगा थोड़ी देर बाद, बाहर यहाँ पर जहाँ पर यूथ सेंटर में जो बच्चे हैं वो लोग भी फुटबॉल खेलने लगे हैं और अलहाब यहाँ पर हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे हम बात करेंगे और बच्चे महिलाएं सब लोग आने लगी हैं। सो इफ यू आर स्टेइंग इन द रीजन ऑफ जुहापा आप लोग आ सकते हैं। और हमारे साथ अभी यहाँ पर इस चुनाव क्षेत्र नंबर 7 के सांसद हैं ऑनरेबल पायाग। ऑनरेबल पायाग एंड लॉम्बियंस एक पाउज लेकिन से ये एक वो कॉन्टिन्यूस होती नो ऑन डायरेक्ट ऑन रेडियो मस्ती।
2: Allô, namaste, bonsoir. Moi, invite tout. Vine passer un bon moment. Nous apportons à soir aujourd'hui et mercredi pour semi-finale et dimanche apportons hier pour semi-finale. Football va commencer 11h. Dimanche final. Football va commencer 11h, mais apportons hier nous prenons animation, nous prenons un cadeau pour tous les participants, nous prenons un spectacle, nous prenons un feu d'artifice. Et parking pas un problème car abordé dans parking piscine rivière du Renfort et nous pouvons garantir autres pour une jolie ambiance. Nous trouvons autres sur outils mercredi pour semi-finale et nous retrouvons autres dimanche sous finale.
1: Thank you honorable Payag. Or inke saath yahan par jise maine bataya it's not just a football affair, bacche log sab log aa chuke hain. अभी थोड़ी देर बाद हम आपको इस पर ज्यादा डिटेल्स देंगे, हमारे जो बाकी सहयोगी हैं वो भी काफी जानकारियां देंगे। सो इट्स हैपनिंग, लेट्स लीव दिस सेमीफाइनल हमारी टीम के साथ।
0: थैंक यू अरविंद, थैंक यू वेरी मच। So that was live from Youth Center, River Jumpa Youth Center, हमारे दोस्त अरविंद के साथ, जहाँ पर बहुत बहुत मस्ती हो रही है। सो जितने भी लोग इसे में हमें सुन रहे हैं direction River Jumpa Youth Center for the second semi-final of the World Cup 2026.

0: FIFA World Cup 2026 is the second semi-final. एक तरफ इंग्लैंड के थ्री लाइन्स की ताकत, दूसरी तरफ अर्जेंटीना, मेसी का स्क्वाड और उसका मैजिक। कौन पहुंचेगा इन द फाइनल टक्कर लेने के लिए स्पेन से? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, जीतने की प्रोबेबिलिटी किस टीम की कितनी, ये सब जानने के लिए ज्वाइन द RM2 टीम। हर गोल, हर मूव, हर एक्साइटमेंट और हर अपडेट आपको मिलेंगे सबसे पहले रेडियो मस्ती पर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 इज द सेकंड सेमीफाइनल।
1: सेकंड सेमीफाइनल को लेकर हमारे दोस्त अरविंद ने चंद बहुत ही जाने पहचाने लोगों से बात की हैं और उनकी राय जानना चाहा है। चलें हम देखते हैं। थोड़ी देर में हम आपको सुनाएंगे ये किस तरह से उन्होंने बात की हैं और ये सभी जो उनकी राय क्या है। विल बी मीटिंग वेरी सून आवर फ्रेंड्स।

0: FIFA World Cup 2026 is the second semi-final. एक तरफ इंग्लैंड के थ्री लाइन्स की ताकत, दूसरी तरफ अर्जेंटीना, मेसी का स्क्वाड और उसका
1: जबकि समय बहुत ही कम है, बस 10 मिनट बाकी हैं फॉर द लॉन्च ऑफ द सेकंड सेमीफाइनल। चले हम मिलते हैं हमारे एक और दोस्त से, विवेक जी नमस्कार।
2: नमस्कार
1: विवेक जी, बताएं आप

0: अच्छे अच्छे किए हैं अभी तक, अगर देखा जाए जो भी सेमीफाइनल हो, कल वाला भी आज वाला भी, जो चार बेस्ट टीम है तो वही आए हैं। और आज आई थिंक इंग्लैंड शुड मेक इट बिकॉज आई हॉप गोज विद इंग्लैंड, बट अर्जेंटीना विल बी टफ।
1: आपको लगता है कि द टीम स्पिरिट जो इंग्लैंड में है फॉर द टाइम बीइंग, हैरी केन, जूड बेलिंगम, ये सब आज काफी होंगे अगेंस्ट अर्जेंटीना?
0: मुझे लगता है जो टीम स्पिरिट डेवलप हुआ है अभी, खासकर जो लास्ट मैच में, मतलब डाउन स्कोर से ऊपर आके और जीतना, एंड इट वाज रियली मैजिकल। तो आई थिंक जो इंग्लैंड का टीम स्पिरिट है अभी बहुत स्ट्रांग है, खासकर जूड बेलिंगम इज प्लेइंग वेरी वेल एंड ही कैन रियली मेक द डिफरेंस।
1: हमने हमेशा देखा है जब व्हेन वी आर एक्सपेक्टेड टू मच फ्रॉम इंग्लैंड तभी वो सबसे खराब खेलता है, जबकि जब इंग्लैंड सोचते हैं कि ये टीम उतनी अच्छी नहीं है सो ज़रा दूर नहीं जाएगी तभी वो सबसे अच्छा खेलती हैं। सो आज जब प्रेशर बढ़ चुका है इंग्लैंड पर, जब एक्सपेक्टेशंस सभी लोग कह रहे हैं इट्स कमिंग होम इट्स कमिंग होम इट्स कमिंग होम, तभी ऐसी स्थिति में इंग्लैंड निराश कर देती है।
0: नहीं, ये तो मैच है, ये कुछ नहीं कह सकते। मैच के बाद जैसे वो MS धोनी पिक्चर में वो तो बोलते रहते थे ना, तो मचुआ के बाद पता चल जाएगा ना। तो हम ये कह रहे हैं अभी जो है इंग्लैंड का मोराल काफी, मतलब अप है, क्योंकि हम लोग ज्यादा क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, ब्रिटिश मीडिया। हम लोग अर्जेंटीना मीडिया थोड़ी पढ़ते हैं, क्योंकि वो लोग भी शायद बोल रहे होंगे कि हाँ वी आर गोइंग टू विन। तो दोनों साइड से है, बट इट्स गोइंग टू बी अ फेयर गेम, इक्वल गेम, एंड आई फील व्हिचएवर टीम दे विल हैव टू मेक द डिफरेंस इन द मिडफील्ड, एंड पर्कशन भी होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली जो मेक्सिको वाला मैच था पूरा, मतलब पीछे कंपोज था, आगे जा ही नहीं पा रहे थे, इट वॉज क्वाइट क्लोज। दिस टाइम दे हैव टू यूज एन ओपन गेम, एंड लेट्स सी, बट आई एम फॉर इंग्लैंड।
1: ओके,
0: नैरो मार्जिन, बट आई एम फॉर इंग्लैंड।
1: हाँ, ये तो जाहिर है कि मॉरिशस में ज़्यादातर जो फैंस होंगे अब, मोस्ट ऑफ अस विल बी बिहाइंड इंग्लैंड। हम भी ब्रिटिश इंग्लिश फुटबॉल को फॉलो करते हैं यहाँ पर ज़्यादातर लोग, सो ऑल फॉर इंग्लैंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपको विवेक जी साथ निभाने के लिए, और आशा करते हैं कि ड्यूरिंग मिड टाइम फिर से बात करने का मौका मिलेगा।
0: मोस्ट वेलकम।
1: ओके, नमस्कार।
0: नमस्कार, थैंक यू।

0: जी हाँ डियर लिसनर्स, आपको ले चलते हैं मिलने हमारे दोस्त अरविंद से. अरविंद, दिस स्टार्टिंग मिनट्स आर क्वाइट हॉट ऑन द फील्ड.
1: ऐतिहासिक मुकाबला है ये. हमने बताया था आप लोगों को कि ये इट्स नॉट ओनली फुटबॉल,
0: मच मच मोर देन फुटबॉल,
1: मच मोर देन दैट. जो लोग हिस्ट्री जानते हैं, दे नो अबाउट द फॉकलैंड आइलैंड्स वॉर. सो ये दो टीमें जब आमने सामने होती हैं, सो समथिंग स्पेशल हैपन. और आज हमने देखा शुरू से ही जो गर्म माहौल है इन दोनों के बीच,
0: जैसे कि युद्ध हो रहा है.
1: एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फॉकलैंड वॉर पॉइंट टू पॉइंट टू. हाँ, लेकिन आई कैन सी, अगर मैच देखें तो इंग्लैंड की टीम दे आर क्वाइट कूल, दे आर क्वाइट कूल. स्पेंस को लेफ्ट बैक में रखा गया, यूजुअली उसको बाद में भेजा जाता है, लेकिन इस बार उसके डिफेंसिव प्रोसेस और साथ साथ में द वे ही प्रोसीड, उसको लेकर शुरू से ही दबाव डाल रहे हैं. डेक्लन राइस, एंडरसन, दे आर कंट्रोलिंग द मिडफील्ड. मेसी चल रहा है,
0: He's waiting for his time.
1: So, ऐसे में इंग्लैंड की टीम ने वो माहौल तैयार किया है कि अर्जेंटीना को दे हैव टू थिंक बियॉन्ड द फुटबॉल दे प्ले. इट्स ए फुटबॉल जो कुछ कुछ यू नो सिंपल मोमेंट, सिंपल टैक्टिक्स में डिसाइड किया जा सकता है. We can see,
0: मुझे डर है कि इस मैच की समाप्ति से पहले बहुत सारे येलो कार्ड्स और रेड कार्ड भी मिल सकते हैं.
1: Expecting that. येलो कार्ड्स, रेड कार्ड होंगे. It's a tactical game. Let's see. It's a tactical game. इसमें जो टीम अपने अपने अपने स्तर को, अपने दिमाग को ठंडा रखेगा वही जीतेगा. एक वर्ल्ड कप और यहाँ पर कंट्रोल जरूरी होता.
0: जिस तरह से कल स्पेन ने मैच पर मेथ्रीज रखा, एक कंट्रोल.
1: हाँ, कंट्रोल. और दे हैव प्रोलिफिक स्ट्राइकर्स फ्रांस में, लेकिन दे कुड डू एनीथिंग बिकॉज स्पेन प्लेड एज ए टीम. यहाँ पर इंग्लैंड की टीम मुझे लगता है कि मंझी हुई टीम है. अर्जेंटीना में शुरू से ही वो फ्रस्ट्रेशन मुझे लगने लगता है. ये मैच कहां जाएगा, इट्स हार्ड टू से. लेट्स सी.
0: अभी लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, इन टर्म्स ऑफ पोजेशन, इंग्लैंड ज्यादा है. दे आर प्लेइंग विद मोर.
1: इंग्लैंड दे आर प्लेइंग बोथ फ्लैंक्स, राइट बैक, राइट लेफ्ट, इस तरह से. जबकि अर्जेंटीना अभी वो लोग

0: they are trying to proceed beach, say, like small passes, you know?
1: Yeah.
0: लेकिन सेकंड हाफ में अर्जेंटीना अपने उसके जो उसका जो मैनेजर है अर्जेंटीना का उसका दिमाग शैतानी दिमाग है. वो सब्स्टिट्यूशन जब करता है तो अर्जेंटीना की टीम एकदम बदल जाती है. सो यहां पर इंग्लैंड को शुरू में कुछ करना होगा, अदरवाइज दे एक्सपेक्ट अर्जेंटीना अपने सब्स्टिट्यूशन को करने के लिए जब अपने बाकी खिलाड़ियों को भेजेंगे अर्जेंटीना कैन बी लीथल. सो इंग्लैंड को इस मैच में शुरू से ही इनिशिएटिव लेना होगा एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग.
1: अब भी लग रहा है दैट आफ्टर द फ्लेयरिंग अप ऑफ द फर्स्ट फ्यू मिनट्स अब खेल थोड़ा सा थम गया है. दे आर यूजिंग देयर सम फ्वा. नहीं तो जैसे दिख रहा था पहले दो तीन मिनट्स ऐसा लग रहा था कि रदकाउ दूर नहीं है, दूर नहीं है.
0: संजय यहाँ पर जब हम भुवनेश्वर वहां पर में आए तो एक, एक एक दोस्त मिले यहाँ पर एंड उन्होंने एक गाना तैयार किया है.
1: अच्छा.
0: इन डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर द वर्ल्ड कप.
1: अच्छा.
0: उनसे हम बात करेंगे और हम आई विल ट्राई टू प्ले दैट सॉन्ग रेडियो मस्ती में. भैया से हम पूछेंगे ये गाना क्रिएट करने के पीछे
1: मौका मौका मौका इंग्लैंड की. नहीं नहीं ओके okay.
0: अच्छा चलिए
1: अब बोलिए बोलिए.
0: हाँ इनका नाम हम बता देते हैं.
1: हाँ बोलिए.
0: ऋषि भाई. ऋषि भाई. ऋषि भाई एक फिजिकल एजुकेटर है. फिजिकल एजुकेशन एजुकेटर एट हमसुंदा फायाग स्टेट सेकेंडरी स्कूल. और यहाँ पर ही इज नॉट जस्ट स्पोर्ट्स मैन लेकिन एक म्यूजिशियन भी है, गाना भी गाते हैं. इस गाने के पीछे व्हाट्स द इनिशिएटिव, कैसा कैसा रहा?
2: गुड इवनिंग एवरीवन. ये गाना मैंने बनाया वर्ल्ड कप के मौके पर. जैसे हर वर्ल्ड कप से पहले अलग अलग जगहों से, दुनिया के अलग अलग जगहों से फुटबॉल के ऊपर कुछ गाने आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मॉरिशस से भी हम एक गाना भेजें, एक गाना तैयार करें. और हालांकि मॉरिशस में बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, तो मैंने यहाँ के तीन भाषा चूज किया, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, और अलग से मैंने उसमें स्पेनिश लैंग्वेज ऐड किया है. और रिलीज किया मैंने कुछ हफ्ते पहले वर्ल्ड कप से, और लकीली ये गाना वायरल हो गया मॉरिशस में ही नहीं लेकिन इंडिया में, अर्जेंटीना में और काफी सारे देशों में. तो इसलिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ. यहाँ पे जो रिव्या जिनोपा में प्रोग्राम सेटअप किया है सेमीफाइनल्स के लिए, तो यहाँ पे बहुत खुशी हुई मुझे आकर कि यहाँ पे मुझे स्टेज पर बुलाकर मुझे एक प्राइज भी दिया गया है, हॉनर किया गया है. ऑनरेबल नितिन प्रयाग जी ने मुझे इनवाइट किया है यहाँ पे, तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं.
0: एंड होपफुली ये गाना हम भेजेंगे और रेडियो मस्ती पर चलाएंगे. बहुत धन्यवाद एंड कीप द गुड स्प्रेड.
2: थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.
0: तो संजय देखिए कि फुटबॉल केवल फुटबॉल खेलने वालों के लिए नहीं, आर्टिस्ट के लिए भी है. I heard that song. It's a very beautiful one. Angrezi, Hindi, Spanish, French. में I'll send you. कोशिश करेंगे इसको बजवाने के लिए. ये यहाँ पर हो रहा है. It's happening in the village Hapa.
1: Thank you, Arvind.
0: You're welcome.
3: हाँ शहर

18 मिनट खेले जा चुके हैं एंड वी कैन से इट्स अ वेरी फिजिकल मैच जो खेला जा रहा है बिटवीन इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना lots of faults on from both sides lekin dono team apna

0: रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: So 30 minutes of play and the score is still nil-nil between England and Argentina. Jitna tensions field par hai, utna hi tension outside the field par hai, jahan par dono jo coaches hain bahut hi tense hain. Ek taraf the coach of Argentina, Lionel Scaloni, jisne apne team ko uchai tak bahut uncha pahunchaya. So many success, so massive success, 2022 FIFA World Cup, Copa America, aur dusri or Thomas Tuchel, jisne England ki team mein ek nayi jaan phooki hai. So we have a free kick for England just outside the square. So अब की बार देखते हैं कि इस फ्री किक से, इस सेट पीस से हैरी केन क्या निकलता है, या तो जून अब जूड बेलिंगम क्या कर पाता है. So we're going to keep the mic and see क्या इससे कुछ होता है. For the first frank occasion for England.

एक के बाद एक सेट पीसेस फॉर इंग्लैंड, देखते हैं कि इस ऐसे कुछ कर पाते हैं या नहीं. सो अ वेरी वेरी फ्रूटफुल स्पेल फॉर इंग्लैंड डायरेक्टली. Dégagement for Argentina, but the England team comes back again. Argentina playing in counter-attack. Lionel Messi, yes. Foul. इस गेम में फुटबॉल कम और कुश्ती ज़्यादा है. येलो कार्ड.

0: रेडियो मस्ती।
1: सो अभी तक दो खिलाड़ियों को येलो कार्ड मिल चुके हैं, लियोजांड्रो मार्टिनेज फॉर अर्जेंटीना। सो एक एक येलो कार्ड दोनों टीमों के लिए, लेकिन गोल अभी तक कुछ नहीं बना है। वेरी वेरी फिजिकल मैच इन दिस सेकंड सेमीफाइनल।

से फर्स्ट हाफ का रेगुलर टाइम समाप्त हो चुका है और थ्री मिनट्स ऑफ एडेड टाइम स्टिल नील नील बिटवीन इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना.

0: FIFA World Cup 2026 is the second semi-final. एक तरफ इंग्लैंड के थ्री लाइन्स की ताकत, दूसरी तरफ अर्जेंटीना.
1: Yes, समय बहुत ही कम है सेकंड सेमीफाइनल ऑफ दिस वर्ल्ड कप 2026.
0: एक्सपर्ट्स हैं
1: और वी आर एट हाफ टाइम बिटवीन इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना. और हमारे मध्य में इस समय स्टूडियो में उपस्थित हैं स्पोर्ट्स फुटबॉल गुरु, फुटबॉल पंडित सौजू गौरीशंकर. सौजू जी कैसे बा?
2: अच्छा बा भाई, सबको की नमस्कार.
1: एक वो बात बोला, वर्ल्ड कप 2026 में सबसे जो डर्टीएस्ट फुटबॉल आज देखनी है.
2: उतना डर्टीएस्ट नहीं है, देखो कि लाफ्रांस का पराग्वे से खेले रहा था, और सबसे बड़ा डर्टीएस्ट मैच रहा. हाँ, ओकर में सबसे सरप्राइजिंग रहा कि पराग्वे उतना डर्टीएस्ट लोग के ओकर जो है कि कौतुजोन नहीं मिला रहा, सब लाफ्रांस लोग के मिला रहा. और आज उतना डर्टीएस्ट नहीं बा, मगर
1: खूनखार.
2: हाँ, अति फुल इंटेंसिटी बा, ढेर इंटेंसिटी,
1: लॉगाजमा फिजिक.
2: हाँ, और एगो गया दिन नया बाद एक बार लोग पिक पॉइंट के अनुसार बड़का जो है लोग के जाने के नेवे कर दी क्यों लोगे.
1: हाँ,
2: सकेला वो फुट कर दे के कौतूल मिल जाए, एगो जो निकल जाए.
1: अभी तक जो आश्चर्य की बात है कि ये जो पहला मित्र रहा सिर्फ दू गो कौतूल मिलल बा.
2: हाँ,
1: एगो लॉन्गनेटिया के और एगो अलोरोचिन के, लेकिन देख पाता फुट कितना दूस फुट लॉरोचिन की ओर से और 7 फुट लॉन्गनेटिया की ओर से.
2: हाँ, वो है उसका कि लाबित की जाना वो मस्त है मैच में, कि देखिए कौन के कर्जुन है, कौन आदमी के कौन टैकल कर्जुन है. मुकाबला की नीमन से कले बहबिले.
1: हाँ,
2: कहे कि हाउ टैकल कौन मेसी में होल वो कर्जुन में रहा.
1: हाँ,
2: और यहाँ दूसरा टैकल कौन जो अंगले में करना था ओकरो कर्जुन रहा. अभी ले बल्ब सा कि टचवुड लाबित पे लाबित अभी अपन उतना हमें डराते नहीं से कि लाबित से अगर फावे करे कि लाजाची के कई लाबितवा वो सुफल करे ला मैच अमेरिक में.
1: हाँ,
2: और हर हर घड़ी वो मेसी के टीम के लाबित रहा है ना, मेसी के जाना MLS में खेले लन सा.
1: हाँ,
2: और ये सब कर मैच वही लाबित करे रहा.
1: जहाँ तक फुटबॉल के सवाल बा, अभी तक एक भी ऑन टारगेट चेन्नई होल पाती.
2: हाँ, उतना एक्शन नहीं बा, किसी वर्ष 1000. हाँ, और देखबा कि अभी ले लोग काल के हमें सुना देखबा एगो मोमोडियम मासिक सकेला हो जाए यही मछुआ में.
1: हाँ,
2: सकेला कि एगो जो अंगले एगो फ्रॉम नोवेयर कपाव मैंने कहा जाने सकेला एगो वितेश डेजो में.
1: हाँ,
2: एगो गोल सकेला डाले और बाकी एगो मोमोमाजिक हमी के मेसी खूबे दिले बा फुटबॉल में. वही तो सकेला सब कर दे मछुआ में
1: अकेले करते हैं. और जहाँ तक अब जो सिगुन मितों में हो देखा था निशा किस तरह से तुम्हारा तो चल अपन नोट लेवा था.

0: लिखा था। सो अब कौन सी सोचा था, कौन सी हुई इसे कौन चीवा में
1: सकेरा सन तनी सुन आज इस्तमा आने अपन अपन टैक्टिक में कहे कि वो देख बागो वेरी प्रेसिंग रहल हाँ। एगो स्ट्रॉन्ग प्रेसिंग रहल लोग आगे फर्स्ट बोलब सा कि फर्स्ट प्रेसिंग ना अंगले लोग डाले थे सर दस की और देख बा कि लाची उतना अपन फुटबॉल ने डेवलप कर लें सा तब अमरीका तब देख बा तनी कोई अंगले लोग किले वाले से पाछे तो देख बा लोग लोगों के प्रेसिंग होगा हाँ। अभी एगो 50-50 मैच है
0: हाँ,
1: और सकेला कि अब अपन अपन जो है लोग बोली कि कुफ्रान कौन है लिमन से जाने के लिए है सब चीज में सकेला एगो गोल हुई।
0: हमने जानी रहा कि सेकंड हाफ में अर्जेंटीना बहुत खतरनाक हो जाता, खासकर जो नॉट्रेनिया स्कारोनी जो सांसमोल नीला पहला मितान देख के तब ओकर बाद कठिन हो जाता आरपीएस के
1: है डिफरेंस बा अंग्लेटर लर्निंग अंग्लेटर के बा में लिमन प्लेयर बा
0: हां
1: उतना उतना अभी परफॉर्मेंस नहीं बा तजी के अति लर्निंग के बा में दिख बता
0: हां
1: अभी कन अटेरो मार्टिनेज ले ली और दूसर अटैकिंग बा और लोग सकेन सा दूसर अति विटेस आने खेल में ब्लब की लर्निंग अर्जेंटीन को दस्ती पियों बा मैच में के लेके
0: जोन फुटबॉल कल देखनी जा हाँ। लिस्पाइन की जोली फुटबॉल जोन देखनी जा
1: हाँ।
0: हम तो बोलते हैं कि जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हो बा लिस्पाइन के सब मैच देखनी सब हाँ। क्योंकि ओकर फुटबॉल हमके जोली लगेला है मैट्रिज बा
1: बहुत मैट्रिज है ओकर फुटबॉल लड़का से
0: हाँ।
1: बारा तक सेम स्टाइल खेले
0: हाँ।
1: और बल्बा की लोग वेरी टेक्निकल प्लेयर
0: हाँ।
1: और लोग के फुटबॉल में पोजीशन फुटबॉल ज्यादा है
0: हाँ।
1: पोजीशन फुटबॉल ज्यादा
0: हाँ।
1: और लोग के पोजीशन मगर कल के मचुआ में देखनी सा कि एगो लेकिप डिसिप्लिने एगो ब्लॉक
0: हाँ।
1: ऐसे बल्ब सा
0: हाँ।
1: रहल हो बगल रहल जिस तरी से स्टार्स लोग रहल
0: हाँ।
1: 500-600 प्लेयर स्टार्स बन सा
0: हाँ।
1: ते लेकिप दे फ्रांस रहल
0: वो हाँ।
1: अपन लेकिप ने रहल और देखा कि ट्रांजिशन में ला फ्रांस खूबे माल खेलक
0: हाँ।
1: निमा से नहीं खेलक कहे गए ट्रांजिशन में कब लोग बुल पर दिए लन सा था और लोग नहीं गए लन सा हाली से प्रेस करे के
0: हाँ।
1: अतान कर लन सा कि लाद वैसे लोग की बुल दे मिला वैसे तो वो स्पेशलिस्ट आप बुल
0: रखे
1: के हाँ, हाँ। रखे में
0: हाँ।
1: तो लोग के ज्यादा फासिल हो गल मचवा गए हाँ।
0: तो हम के लोग था कि अंग्लेटर भी आए या अर्जेंटीना में आए लिस्पाइन से नए सेकंड सके
1: हाँ ये दूसर सिस्टम है सकेला कि फुटबॉल आज मॉडर्न फुटबॉल में
0: हाँ।
1: लोग ज्यादा लंफास डाले लन सा पोसेशन फुटबॉल देख बा कि पेप गार्डियोला प्रीमियर लीग ओकर लेकिप औसे खेले ला
0: हाँ।
1: कहा कि दस्ती पास बा और ट्रियांग में खेले के एंट्री ले ली खेले लन सा देख बा कि हाली से एगो मूवमेंट कैसे लिस्पास में होता एगो जो है हाली से लिस्पास में जाए एंटेली में पास हो जाला तो देख बा एगो गोल तो लोग ऐसा फुटबॉल और पेप वही तक कमौसे करे बार्सिलोन में और योहान क्रुइफ और लोग कमौसे करे सा हो चिकी टाका प्लेयर कैसे बोले सा खेल में
0: हाँ।
1: चिपास चिपास ट्रियांग ये फुटबॉल आज मतलब सा कि ये ज्यादा निमन फुटबॉल है।
0: अच्छा सो हमने के स्टूडियो में आयला भाई संजू बहुत बहुत अच्छा लगल और अभी आप टीवी पर हुआ लेकिन फिर भी थोड़ा समय निकल के आयला हमेशा की तरह यहाँ पर अपन सेवा करेला अपन योगदान देवेला सो आज हमें बहुत खुशी होनी जा और आशा करी जा कि आने वाले दिनों में भी आप ऐसे ही इस स्टूडियो को अपनी उपस्थिति से और अपने जो एक्सपीरियंस बात हो और से सभी जो जो सुनने वाले हैं जो श्रोता हैं उन लोग के कृतार्थ करवा
1: धन्यवाद भाई साहब
0: फिर से मिलत जा नमस्कार
1: नमस्कार
2: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: चलिए एक बार फिर आपके लिए चलते हैं रिवर जुगाड़ पाव यूथ सेंटर, वहाँ पर मिलते हैं हमारे दोस्त अरविंद से। हेलो अरविंद।
1: यस संजय, यस संजय, यहाँ पर फुटबॉल तो है ही, चल रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये है कि हाफ टाइम में बच्चों के लिए देहात फुटबॉल गेम्स, यू नो व्हाट क्या कहते हैं, पिले पिले, सुना है?
0: हाँ,
1: क्या कहते हैं पिले, पिले प्लेयर
0: प्लेयर।
1: When you tell them, उन लोगों को कहेंगे कि अरे न्यूज़ है पिले, क्या होता है वो बॉल जिगल करना, नहीं?
0: हाँ,
1: यू नो व्हाट, यहाँ पर दो खिलाड़ी आए हुए थे, वन फ्रॉम एसपीएल दिल्ली, नौजवान रिवेज वहां पर का है रोहन, और उसका भाई जो खेलता है पॉपुलर मुसैसी। जब बॉल पैर के साथ ये जिंगल करने लगे, मुझे रोकना पड़ा उनको, 50, 60, 70, 80, 90, so this is the obvious that is going on.
0: यानी कि गिनती समाप्त, गिनती समाप्त हो गई, लेकिन पहले का मतलब गिनती समाप्त हो गई।
1: हाँ, गिनती समाप्त हो गई, उनको रोकना पड़ा, सेकंड हाफ शुरू हो गया। इसलिए जब आपने मुझे फोन किया तो मैंने कहा बाद में बात करेंगे, बट दिस इज फन हैपनिंग। अब देखिए यहाँ पर बच्चे लोग हैं जो खेल रहे हैं, एक किस से बात करते हैं, कौन सा पहल?
2: निलेश फायद।
1: निलेश, किले की टू सपोर्ट?
2: पोर्चुगल।
1: पोर्चुगल,
2: ब्राजील और जॉर्जिन। पोर्चुगल, ब्राजील और जॉर्जिन।
1: जॉर्जिन क्या बोलेंगे?
2: जॉर्जिन।
1: और जॉर्जिन का फैंस, यहाँ पर बारिश भी होने लगी है तो जॉर्जिन की ओर से गोल तो नहीं बना, देखते हैं आगे क्या होगा। और द किड्स एंजॉयिंग मैच देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों के लिए चाय, समोसे, बिस्किट, बारिश हो रहे बाहर, बट इट्स नॉट ए प्रॉब्लम क्योंकि ये जो चैट स्क्रीन है वो जवाफा यूथ सेंटर के अंदर लगाया गया है, तो लोग आराम से बैठकर फुटबॉल मैच देख रहे हैं। I can see लगभग 400-500 लोग होंगे यहाँ पर, फील द एम्बियंस। मुझे लगता है संजय, कमिंग बैक टू द फुटबॉल, आई थिंक ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, आप क्या कहते हैं?
0: मैं तो चाहता हूँ कि ये मैच रेगुलर टाइम में समाप्त हो जाए, क्योंकि क्योंकि जिस तरह का फुटबॉल देखने को मिल रहा है, नॉट दैट ब्यूटीफुल फुटबॉल जो कल हमने देखा।
1: एग्जैक्टली, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है, इट सीम्स लाइक द प्लेयर्स आर गेटिंग मोर एक्साइटेड।
0: अभी
1: डू वी हैव अ गोल, वी हैव अ गोल, लेट्स चेक दिस, वी हैव अ गोल, वी हैव अ गोल, Oh, no. Is it?

We are playing the 54th season. England is in the Matagola. David Beckham is happy. This is the game. Offside check. No, it's not an offside. Let's see, Declan Rice again. On the right. Cross. Anthony Gordon. What a beautiful game of blues. The number 18 England Cup. It's England 1, Argentina 0. Yes, Hilary. It's called Barcelona de Santia from the top of United. He is phenomenal. Our England team 1-0 se aage. और हम जब जानते हैं कि इंग्लैंड की डिफेंस जब दरवाजा बंद करता है, अभी थोड़ी देर बाद बर्न को भेजा जाएगा. इंग्लैंड ऑन द राइट फुट एंड एज यू राइटली सेड संजय, लेट्स होप ये मैच 90 मिनट्स में पूरा हो जाए. इट्स गोइंग टू बी हॉट.

तो ये मैच और भी ज्यादा खूनखार हो जाएगा। अब मेसी और उनके दोस्त लुटू पुलटू खेलेंगे। सो गोल स्कोर्ड बाय England in the start of this second half. So we can expect a very, very strong reaction from Argentina.

0: अपने हाफ में हैं, दे आर डिफेंडिंग, और जैसे समय बीतता जाएगा तैसे द प्रेशर विल माउंट ऑन दिस इंग्लिश टीम. क्या वे अपने इस एक गोल के लीड को बचा पाएंगे, या तो इंग्लैंड प्रोसीडिंग इन काउंटर अटैक कैन ऐड अनदर गोल, ये हम देखेंगे. So after a lockdown match in the second half, जो बहुत ही खूनखार था, बहुत ही physical था, England was able to score against Argentina. So यहाँ पर एक change है on the so Gonzalez को भेजा जा रहा है. So more of attacking power on the Argentinian side. देखते हैं कि इससे क्या होता है. How far Argentina will be able to bounce back in this match. 64 minutes played. Yeah, 64 minutes played. Okay. England 1, Argentina 0. La revanche of England. Are we heading towards the final of Spain against England? Is it coming home? So we've got 24 minutes England ko isko sambhalna hoga, lekin it's another occasion for Argentina. But England is able to defend. Yes, it is able to defend. Dekhte hain. Stay tuned on Radio Masti for more of updates concerning this match.
1: First with the Stones header, which was very good, then Rice's clearance, which wasn't quite so solid.

एक के बाद एक प्रहार पर प्रहार अटैक फ्रॉम द अर्जेंटीनियन साइड whether England will be able to sustain another 20 minutes, 25 minutes. Whether Pickford will be able to keep its cage unviolated.

0: हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ब्रेक,
1: तुम्ही से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना।
0: इसको कह सकते हैं दैट टुडे इंग्लैंड इज प्लेइंग विद इट्स ट्रिप, जैसे कहते हैं द एक्सप्रेशन टू बी एबल टू बी प्लेइंग विद इट्स ट्रिप। All the players are giving 200% of their energy, of their effort, of their willpower. Kya, will they be able to sustain another 25 minutes?

0: चले आपको फिर से ले चलते हैं जगहों पर। युव संते मिलते हैं अरविंद से। हेलो अरविंद। यस अरविंद। यस
1: यस। नहीं अभी एक खतरनाक एक्शन था मैं देखने गया था। सो जैसे मैंने बताया कि जगहों पर यूथ सेंटर में ये जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है एक जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स और रिवे चुगांपा विलेज काउंसिल और यहाँ के जो सांसद लोग हैं हमारे साथ हैं। मिसिस दिशा भाया जो विलेज काउंसिलर है अभी थोड़ा उदास है क्योंकि अर्जेंटीना का शर्ट पहनकर आई है बट शी इज वेरी बिजी इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिशा जी लगता है कि आज अर्जेंटीना को जाना होगा?
2: नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा। लगता है कि कुछ ही देर में मेसी
1: को करेगा।
2: हाँ करेगा बिल्कुल। और जब तक मैच चलेगा तो हमें
1: और ऑर्गेनाइजेशन इट हैज बीन वंडरफुल कल।
2: यस वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन डन बाय द एमपी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड सेंटर एंड also the crowd is very happy the condition Gatupima hai jite hai samosa hai baad mein jab match khatam ho jayega gift hoga to bacche log aur jo mahila bhi hai wo bhi yahan pe hain aur bahut hi peacefully everything is going on
1: and what the final invite everyone
2: yes everyone will be very happy about the final because it's going to be on the 19th and we are inviting everyone to come with their family and hopefully Argentina will win the final and win the World Cup again.
1: All right. So Disha is very busy with the preparation, very hopeful. Thank you so much Disha ji. और जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि जगहों पर में फैमिली एम्बियंस एवरीवन इज हैप्पी। इनके पति जो है इंग्लैंड के फैंस हैं, ये अर्जेंटीना के फैंस हैं, इनके बच्चे ब्राजील के फैंस हैं, दूसरा बच्चा फ्रांस की टीम को सपोर्ट कर रहा था। बट दे ऑल ही एंजॉयिंग दैट व्हाट वी वांट द फैमिली एम्बियंस मॉरिशस भर में और यही हम लाना चाहते हैं इन रेडियो मस्ती and it's going on well. Sanjay, do you think Argentina equalize karega?
0: Hum to chahte hain ki jaisa hai waisa hi rahe for the time being.
1: Waisa hi rahe. Yeah. My personal experience, England ki team ne jo defensive obus dikhaya hai abhi tak, Mexico ko rokna in aaste ka, और आज तरह से
0: आज पिकफोर्ड जितने सेव किया है पिछले 15 मिनटों में जैसे कि कुछ तो हैं जो
1: he's playing the match of his lifetime.
0: Yeah, indeed. इतने सारे सेव्स
1: उधर।
0: हाँ
1: उधर प्लेयर्स जो जिनको हम नहीं जानते थे स्पेंस द डिफेंडर एवरीवन इज प्लेइंग
0: Oh my God! Ooh!
1: बच गया.
0: इसको कहते हैं.
1: Anyway,
0: they are playing with their trip.
1: Trip, exactement. Très bien dit. Let's see. अभी कितने? 20 मिनट बचे हैं?
0: हाँ, 20 मिनट.
1: 20 मिनट. Intense 20 minutes. Argentina will throw everything out. They got the guns. They've got the gun, लेकिन इंग्लैंड के पास पैट्रियट है, यू नो पैट्रियट द यूएस आर्मी दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द मिसाइल।
0: एक बात जो हमने सऊदी से कही वो ये है कि जो भी आज इस मैच जो भी जीतने वाला जीतेगा रविवार को स्पेन के खिलाफ वो हारेगा।
1: मुझे भी लगता है स्पेन लुक्स अनदर टीम
0: अनदर लेवल
1: नो प्रेशर आराम से खेल रहे हैं।
0: दैट्स ब्यूटीफुल।
1: मैच में वी कैन सी इंग्लैंड अंडर प्रेशर वी कैन सी अर्जेंटीना अंडर प्रेशर यस्टरडे आराम से स्पेन नो पेन स्पेन आराम से जी गया,
0: आराम से। सो फुटबॉल शांपाए जिसे कहते हैं,
1: हाँ, तो जिसको रनर अप बनना है आज जीत कर जाओ स्पेन के सामने। फुटबॉल इज प्लेड इन अनदर लेवल। पिछली बार 2024 में स्पेन डिफीटेड इंग्लैंड इन द पेनाल्टी, हाँ, और फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। इंग्लैंड इज प्लेइंग वेल, let's see,
0: 79 minutes of regular time played, it's still 1-0 for England.
1: England 1-0 से आगे, और अर्जेंटीना की टीम ने साबित कर दिखाया है कुछ मैचों में कि they are late show करते हैं ये लोग।
0: अभी हम देखेंगे the जादू, the magic of Scaloni, the coach, अर्जेंटीना coach,
1: हाँ, उसके दिमाग, शैतानी दिमाग है उसका, आई टोल्ड यू दिस, लेकिन टोमास टुखेल भी कुछ करेगा अभी। लेट्स लुक एट द सब्स्टिट्यूशन,
0: कुछ नहीं किया अभी तक कुछ नहीं किया।
1: सब्स्टिट्यूशन विल विन द मैच, दिस मैनेजर अब यहाँ पर काम आएंगे, द वे दे कंट्रोल द 10 मिनट्स, द वे दे सब्स्टिट्यूट, ये दिमागी खेल ये काम आएगा अभी। प्लेयर्स आर टायर्ड, प्लेयर्स आर टायर्ड, नए खिलाड़ियों को भेजना होगा सो दैट दे विन द मैच। अर्जेंटीना ने कई बार साबित किया है दैट दे कैन डू इट, इंग्लैंड ने कई बार साबित किया है दैट कैन डिफेंड इट। लेट्स वेट एंड वॉच।
0: ओह माय गॉड, आज तो कुछ है, आज तो कुछ है जो इंग्लैंड को सेव कर रहा है।
1: मुझे घर जल्दी आना है संजय।
0: God saves a king.
1: God save the king. Let's see. But it's great of you. Thank you for all those listeners जो हमें सुन रहे हैं। और उनको ये semi-final of you भेज रहे हैं। The final will be over there.
0: Martinez on the field. Very good player, Martinez.
1: Lutaro. चलते हैं, देखते हैं क्या होगा।
0: Okay.
3: कभी spicy, कभी sweet. Music lovers की heartbeat.
4: Tak Bollywood.

0: Enzo Fernandez. Argentina say blow the final whistle. The referee hasn't done it. We play on in Atlanta. With Pickford, one last long ball. Doesn't get any more dramatic than this. World Cup semi-final, Dan Byrne coming in for it. Martinez hasn't got it. He's got a free kick. And that's all that Argentina need.
1: Everybody off the Argentina bench, everybody waving their hands in the air.
0: Scaloni trying to make sure nothing untoward happens. Dugout behaviour under scrutiny like everything else. There he is, the man who rose and planted in a header. Yet another Messi assist. We're into the 12th added minute and Argentina, the world champions, are going to the 2026 final. Messi inspired the comeback. England scored first, as they did in 2018 when they lost to Croatia 2-1. Enzo Fernandez equalised here. A lovely England goal from Anthony Gordon. But Enzo Fernandez hammered in the equaliser. And then as we moved into a long period of added time, Lautaro Martinez had the magic moment that mattered. And England fall short. Again, they'll play again for the bronze medal. But Argentina will play Spain in New York, New Jersey on Sunday. And the great man has another great game.
2: RM2.
3: Radio Musty.
2: Feel the Musty. Feel the Musty.
4: जी हाँ, दोस्तों आपको ले चलते एक बार फिर मिलने हमारे दोस्त अरविंद से. हेलो अरविंद.
5: यस संजय, सो एक्चुअली इट हैपेंड, निर्धारित समय में मैच समाप्त हुआ, बट इट वेंट द अदर वे.
4: हाँ, अदर वे.
5: अर्जेंटीना की टीम ने पासा पलटा एंड व्हाट इंग्लैंड की टीम, दे वर डिवास्टेटेड. जैसा लग रहा है कि इस डिसरेपिटिटा अर्जेंटीना की टीम ने न केवल इस बार, कई बार ऐसा करता करते गए. इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हाउ इट हैपन, लेकिन अर्जेंटीना की टीम, देव गॉट प्लेयर्स हु कैन मेक द डिफरेंस एंड दे मेड द डिफरेंस. आज अर्जेंटीना इज द फाइनल, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियन, डिजर्व चैंपियन. स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, लेट्स वेट इन न्यूयॉर्क. Rivière du Renforcé, it was a wonderful ambiance. Thank you so much for everyone. We'll catch you very soon for the final.
4: Okay, Erwin, thank you for the live from
5: Rivière du Renforcé. All right, bye.
4: So that was live from Rivière du Renforcé Youth Center, jahan par Arvind was live for this second semi-final. So final score, regular time, England 1, Argentina 2. अब बस रह गया है द फाइनल, दैट विल बी ऑन संडे. एंड अगेन विल बी टुगेदर विद यू संडे को द ग्रैंड फाइनल बिटवीन स्पेन एंड अर्जेंटीना.